सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48:50 हुए हैं। हम उपस्थित हैं अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: विरासत का अर्थ है प्रत्येक प्रकार की वह संपत्ति या परंपरा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है या प्राप्त होती है। विरासत में केवल भौतिक ही नहीं बल्कि इसमें हमारे समस्त सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक एवं पारिवारिक मूल्यों का समावेश होता है। विरासत का मतलब है कि हमें अपने पूर्वजों और अपने अतीत से क्या मिला है। इसमें हमें अपने पूर्वजों से मिलता है उनकी संस्कृति, उनके ज्ञान, उनके अनुभव, उनके रीति रिवाज। विरासत हमें हमारे वर्तमान समय को पिछले समय के संस्कृतियों के बीच संबंध स्थापित करने में सेतु का काम करता है। हमें अपने निजी और सामाजिक धार्मिक मूल्यों को समझने के लिए प्रेरित करता है, साथ ही उनका अनुसरण करने की भी प्रेरणा देता है। हमारी विरासत विविधताओं से परिपूर्ण है और हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। यह हमारा वह अतीत है जिसके साथ हम वर्तमान में रहते हैं और भविष्य की पीढ़ियों को सौंपते हैं। विरासत हमारी संस्कृति का आधार स्तंभ है। किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में विरासत की अहम भूमिका होती है। विरासत हमारे मूल्यों की प्राथमिकताओं की पहचान है जो हमें खुद को परिभाषित करने की शक्ति देती है। हमारे पूर्वजों ने बहुत सी बातें अपने पुरखों से सीखी और समय के साथ इसमें अपने अनुभवों से वृद्धि की। फिर हमने भी अपने पूर्वजों से बहुत कुछ सीखा जो आज हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें सभी मूल्य पूजनीय माने जाते हैं, संरक्षित किए जाते हैं, जिनके प्रति हम श्रद्धा भाव रखते हैं और हम अपने आने वाली पीढ़ियां सदैव गौरवान्वित महसूस करती हैं। संस्कृति परिवर्तनशील हो सकती है परंतु हमारी विरासत नहीं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो किसी निश्चित संस्कृति समूह या समुदाय से संबंध रखते हों, उनके सांस्कृतिक गुणों को भले ही अपना लें, लेकिन हमारा जुड़ाव हमारी सांस्कृतिक विरासत की जड़ों से सदैव बंधा रहता है। हमारी सांस्कृतिक विरासत हमें श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए विचार, आदर्श और मूल्य प्रदान करती हैं। विरासत संपूर्ण समाज में अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र और राष्ट्रीय पहचान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही हमें अपनी व्यक्तित्व की पहचान का भी बेहतर बोध कराती है। हमारे समस्त रीति रिवाज, त्योहार, हमारी भाषाएं, रहन सहन, यह सब हमारे सजीव विरासत का हिस्सा है। यह केवल अतीत का अवशेष नहीं बल्कि जीवंत है और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने बीते हुए कल में थे। हमारा विरासत हमें अतीत को देखने समझने के लिए एक दर्पण की तरह है जिसे हम पूर्वजों ने सदियों से संरक्षित किया है और वर्तमान में इसे अपने मूल स्वरूप में रखना हम सबका उत्तरदायित्व तो बनता है, क्योंकि विरासत वह अनमोल धरोहर है जिसे हम अपनी युवा पीढ़ी को सौंपते हैं जो देश के भविष्य है। विरासत को बनाने में बहुत समय लगता है क्योंकि यह एक समुदाय या परिवार की कई पीढ़ियों द्वारा की गई लगातार मेहनत से बनती है, लेकिन अगर संरक्षित नहीं की गई तो इसकी दीवारें ढह भी सकती हैं। अपनी विरासत को सम्मान देना, उसे सुरक्षित रखना प्रत्येक व्यक्ति का पहला कर्तव्य होना चाहिए। इसके लिए

0: युवा पीढ़ी में समस्त विरासत के प्रति आदर की भावना जगाना हमारे बुजुर्गों की भी जिम्मेदारी है। तभी हम अपने समृद्ध विरासत को बचा पाएंगे। अपने विरासत के प्रति समस्त परिवार की आस्था की भावना, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की निजी आस्था की भावना से जुड़ी होती है। आध्यात्मिक आस्था की विरासत परिवार के समस्त युवा पीढ़ी को यह संदेश देती है कि आस्था की विरासत से ईश्वर का संबंध हमारे पारिवारिक मूल्यों में सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे आध्यात्मिक विरासत हमें ईश्वर पर विश्वास करना सिखाता है और यह हमारे जीवन में दिनचर्या का हिस्सा बन हमारा पथ प्रदर्शक बन जाता है। इसलिए अपनी समस्त विरासत की विविधताओं का आनंद लें, इसका सम्मान करें और इसे संरक्षित रखें, क्योंकि पीढ़ियों का इतिहास है, इसी से जग में हमारी पहचान है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। अब कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत सुनिए गुलाब की खेती विषय पर श्रीनिवास सहाय से वार्ता।
2: किसान भाइयों नमस्कार। गुलाब को फूलों का राजा भी आप कह सकते हैं। अनेक गुण इसमें होते हैं और अनेक चीज़ें इससे तैयार भी की जाती है। गुलाब के फूलों का प्रयोग हमारे यहाँ सौंदर्य प्रदान करने के अतिरिक्त लक्ष्मी पूजन, मालाएं बनाना, गुलदस्ते बनाना, इत्र बनाना, गुलाब जल बनाना और गुलकंद बनाने आदि में प्रयोग होता है। आप गुलाब की खेती कर सकते हैं व्यावसायिक रूप में। गमले में भी आप गुलाब लगाते हैं, घर के आंगन में गुलाब लगाते हैं, तो गुलाब लगाने के लिए ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पर धूप प्रायः पूरे दिन रहती हो। गुलाब के लिए वैसे स्थान का कभी भी चयन नहीं करें जो छाया के पास हो या घर के आगे जो दरवाजे या आंगन जिसे कहते हैं वहाँ यदि आप लगा रहे हैं तो वहाँ भी ये सुनिश्चित कर लें कि धूप पूरी आती हो, तभी गुलाब के पौधे का विकास ठीक से होता है और फूल भी अच्छे लगते हैं। इसकी खेती करने का अभी समय है, अक्टूबर महीने में इसकी रोपाई आप खेत में, गमले में, जहाँ भी करना चाहें कर सकते हैं। ध्यान ये देना है कि इसके लिए दोमट बलुआर मिट्टी या मटियार दोमट मिट्टी जिसमें कि कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा हों उसमें इसकी खेती आप कर सकते हैं। फिर से हम एक बार कहेंगे कि ध्यान यहीं रखें कि जहाँ पर पूरे दिन धूप अच्छी होती हो वहीं पर आप गुलाब के पौधे लगाएं। इसके लिए कुछ उन्नत किस्में भी हैं जिसमें सोनिया है, स्वीट हर्ट है, सुपर स्टार है, सांद्रा है, हैप्पीनेस है, गोल्ड मेडल है, मनीपॉल है, बेंजामिन पॉल है, अमेरिकन होम, ग्लैडिएटर, किस ऑफ फायर, क्रिम्सन गैलरी, फर्स्ट रेड, ग्रैंड गाला इत्यादि किस्में हैं गुलाब की। कोई भी किस्म आपको मिल जाए उसे आप अपने अनुसार लगा सकते हैं और उसकी व्यवस्था भी आप समय समय पर देखते रहें। आप रोपाई करने के लिए पहले तो गड्ढे बना लें जो कि 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर आप बनावें, और बड़े जो पौधे लगाएंगे या बड़े आकार वाले जो पौधे लगाएंगे उनके लिए 60 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर आप गड्ढे तैयार करें। गड्ढों में आप गोबर की खाद और कुछ कीड़ों को नियंत्रित करने वाले पदार्थ जैसे नीम की खल्ली है, करंज की खल्ली है, उन्हें मिला लें, और यदि आवश्यक हो, यदि फंगस की समस्या है तो ट्राइकोडर्मा बीडीडी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद गुलाब के पौधे को लगा सकते हैं। गुलाब के जब आप पौधे लगाते हैं तो खाद तथा उर्वरक देने की ज़रूरत होती है जो कि सड़ी हुई गोबर की खाद 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से यदि आप देते हैं तो कुछ पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाती है। फिर नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम एवं पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। व्यावसायिक स्तर पर जब खेती आप करते हैं तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि उर्वरक खाद समय पर दें और सिंचाई भी समय पर करते रहें।

0: यदि आप गमले में पौधे लगाते हैं तो उस समय सिंचाई करने में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ज़्यादा सिंचाई नहीं करें, क्योंकि गमले में यदि पानी लग गया तो पौधा आपका सूख जाएगा। इस तरह से व्यवस्था करें कि पानी आप हल्का डालें, नमी हमेशा बनी रहे।
1: गुलाब की खेती इस विषय पर श्रीनिवास सहाय से वार्ता भी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि चर्चा अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर जाने की अनुमति दी, क्योंकि गंगा का वेग बहुत तीव्र था जिसे पृथ्वी सहन नहीं कर सकती थी। भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर उनके वेग को शांत किया।

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के अद्भुत स्वरूप का वर्णन किया गया है। उनकी जटाओं में गंगा का वास है, माथे पर चंद्रमा है और गले में विषधर सर्प लिपटे रहते हैं। ये रूप दर्शाता है कि प्रकृति के हर हिस्से, जल, जीव और ब्रह्मांड में उनका वास है।

इंसान को अपनी बोली में मिठास रखनी चाहिए ताकि मन का अहंकार मिट सके और दूसरों को शांति प्राप्त हो।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, श्रोता अब आइए सुनते हैं रामचरित मानस पाठ, मुख्य सर महेंद्र कपूर का है।

श्री राम और उनके तीनों अनुजों का विवाह संस्कार संपन्न हो चुका है और अब वधुओं की विदाई की वेला निकट आ चली है। प्रतिदिन अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, किंतु जनक जी के स्नेह भरे आग्रह पर उन्हें रुक जाना पड़ता है। बारातियों का आदर सत्कार पूर्ववत जारी है। कई दिन बीत जाने के बाद विदा की घड़ी आ ही पहुंची। महर्षि विश्वामित्र तथा वधुकुल के पुरोहित शतानंद ने राजा जनक को समझाया, आप स्नेहवश उन्हें विदा नहीं करना चाहते, परंतु विदा तो देनी ही है। जब रनिवास में यह समाचार पहुंचा तो सभी लोग इस प्रकार उदास हो गए जैसे संध्या होने पर कमल मुरझा जाते हैं। अनगिनत बैलों पर लादकर बारातियों के लिए मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री भेजी गई। साथ ही 1 लाख घोड़े, 25,000 सजे सजाए रथ, 10,000 हाथी तथा गाड़ियों में भर भर कर उपहार स्वरूप वस्त्र आभूषण। उधर रनिवास में सीता समेत अन्य वधुओं की विदाई का करुण, अत्यंत मार्मिक तथा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ, मुख्य स्वर महेंद्र कपूर का था। अब कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत सुनिए डॉक्टर रामचंद्र कुमार से भेंट वार्ता। विषय है जल जनित रोगों का उपचार। भेंट करता है चंद्रमणि भारती।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है जल जनित रोगों का उपचार, और आज हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर डॉक्टर रामचंद्र कुमार, जो कि नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पटना के मेडिसिन विभाग में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जल जनित रोग कौन कौन से होते हैं।
2: सबसे पहले श्रोताओं को मेरा प्रणाम। जैसे जल जनित रोग में सबसे ज़्यादा अभी पीलिया, टाइफाइड, डायरिया, मतलब एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस सब आता है, जो कि जैसे अभी जैसे कि हम लोग गंदा पानी पीने से गांव घर में कोलरा की बीमारी हो जाती है। तो मतलब पानी को हमेशा स्वच्छ पीना है। जैसे अभी हम लोग जो बाहर में फुचका खा लेते हैं
1: जी,
2: या फिर ये सब, तो उससे टाइफाइड की बीमारी भी होती है। तो मतलब हमेशा स्वच्छ पानी का पीना चाहिए आदमी को। स्वच्छ पानी पीने से जो मिनरल्स होते हैं और सब भी, जो बैक्टीरिया वैक्टीरिया नहीं होता है। चापाकल का पानी पिए, उसमें आयरन वायरन की मात्रा भी अच्छी होती है। अगर आप शहर में रहते हैं तो आड़ू का पानी पिए।
1: जी
2: और टाइफाइड, जैसे कि टाइफाइड सब जो है फूड एंड वाटर बोन डिजीज है। अगर कोई जॉन्डिस है तो मतलब गंदा पानी गंदा खाने से होता है। तो आदमी को चाहिए कि घर में बना हुआ खाना खाइए, ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाइए, जैसे फास्ट फूड ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि अब किसी को जॉन्डिस का लक्षण आ रहा, जॉन्डिस मतलब बोले तो आँख का पीला होना, थकावट होना, खाना का नहीं पचना, उल्टी जैसा लगना, अगर ये सब लक्षण आए तो सबसे पहले आदमी को अपने आप को रेस्ट देना चाहिए, आराम देना चाहिए। दूसरी बात, तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, अपना जांच कराना चाहिए।
1: जी
2: आदमी में जैसे पेशाब का पीला होना हमेशा जॉन्डिस नहीं होता है, क्योंकि हम कभी कभी पानी कम पीते हैं तो उसके वजह से ही ज़्यादातर लोगों में पेशाब का पीलापन होता है। लेकिन अगर हमको पेशाब 1 से 2 दिन पीला हो रहा है और हमको, तो हम उसको पहले हम देखेंगे कि पानी खूब पिए। अगर पानी पीने के बावजूद अगर हमको पेशाब पीला हो रहा है, थकान लग रहा है, तो हमें तुरंत ही
1: संपर्क
2: चिकित्सक से
1: करना
2: मिलना चाहिए।
1: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी होता है क्या कि जॉन्डिस जब ज़्यादा ही बढ़ जाता है पीलिया रोग, तो वो हेपेटाइटिस में भी परिवर्तित हो जाता है, कुछ ऐसा भी है क्या?
2: देखिए एक्चुअली में जॉन्डिस हेपेटाइटिस है ही है। हेपेटाइटिस में भी ढेर सारे तरह के वैरायटी होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। तो हेपेटाइटिस ए जो होता है वो जॉन्डिस होता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में जॉन्डिस बोलते हैं।
1: जी
2: जैसे जॉन्डिस क्या है, ये वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है। ये जो हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण से जो होता है उसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। ये स्वतः सेल्फ लिमिटेड है, मतलब अगर आप आराम करते हैं, शरीर को आराम देते हैं, तेल और मसाला
1: मसाले
2: वाला चीज नहीं खाइए, थोड़ा ग्लूकोज का सेवन करें। ग्लूकोज मतलब लीवर, ये जॉन्डिस जो मूलतः बीमारी लीवर का है, लीवर क्या करता है, हमारा ग्लूकोज बनाता है। जब हम बीमारी से ग्रसित होते हैं जॉन्डिस से, तो लीवर में थोड़ा ग्लूकोज नियोजनेशन मतलब ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया कम हो जाता है। इसलिए उसको लीवर को कंपनसेट करने के लिए, ग्लूकोज नियोजनेसिस कराने के लिए हम लोग ग्लूकोज को देते हैं पेशेंट को। बाकी अगर ज़्यादा है तो फिर हम लोग उसके लिए जांच कराते हैं, हेपेटाइटिस ए के वजह से है कि बी के वजह से या सी के वजह से है। मोस्ट कॉमनली ये 3 चीज होते हैं। आप हेपेटाइटिस बी के बारे में पूछना चाह रहे थे, हेपेटाइटिस बी का अब इलाज है, हम लोग इलाज कर रहे हैं, पेशेंट ठीक हो रहा है, बशर्ते कि आप समय पे दवाई ले और पूरा कोर्स करें।
1: जी, संक्षिप्त रूप से डॉक्टर साहब टाइफाइड और डायरिया के उपचारों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को
2: डायरिया
1: बताएंगे।
2: के लिए सबसे पहले अगर किसी को पतला पैखाना हो या मारयुक्त लेटरिंग हो, उल्टी दस्त हो, तो आदमी को सबसे पहले चाहिए कि घर में अगर कुछ नहीं है तो नमक चीनी पानी का घोल बना के पीना चाहिए। उसमें क्या होता है, नमक में आपको सोडियम मिल गया, ग्लूकोज मिल गया चीनी में, है ना। तो फिर लोकल में तो आप यही कर सकते हैं, या फिर ORS का पैकेट जो होता है वो पीना चाहिए। उसके बाद आप ORS का बनाने का भी विधि होता है, जैसे कि 1 पैकेट ORS को 1 लीटर पानी में घोल के बनाना चाहिए, ना ही कम नहीं ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा पानी लेते हैं तो वो डाइल्यूटेड हो गया, और कम पानी लिए 1 लीटर से तो मतलब कंसंट्रेटेड हो गया, मतलब उसमें ज़्यादा मात्रा में मतलब सोडियम पोटासियम की मात्रा आ जाता है,
1: लवण की मात्रा
2: लवण
1: ज़्यादा हो
2: की मात्रा
1: जाएगी।
2: ज़्यादा हो जाए तो वो दोनों ही चीज़ बेनिफिट्स नहीं है,
1: जी
2: मतलब
1: जी जी
2: हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ORS पीजिए, पानी पीजिए, और ज़्यादा उल्टी दस्त हो

0: तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाइए सर।
1: अच्छा
0: टाइफाइड में तो मूलतः सर में दर्द होता है, हेडेक होता है, बुखार आता है, उसके बाद पेट दर्द होता है। इस तरह की समस्या आए तो पारासीटामोल घर पे ले सकते हैं। पारासीटामोल जो है कि मतलब दर्द की दवाइयों में सबसे सेफ माना जाता है। अगर आप किसी भी तरह के बुखार में पीड़ित हैं तो पारासीटामोल ले सकते हैं। तो आप घर में पारासीटामोल रखिए, आपको अगर इमरजेंसी में बुखार आ गया, सरदर्द हो रहा, तो पारासीटामोल खाइए और नज़दीकी अस्पताल में जाके जांच कराइए, क्योंकि अभी सरकारी सुविधा सारा उपलब्ध है। तो कभी भी कोई भी इस तरह की समस्या, बुखार से या पेट से जुड़ी समस्या, तो आप तुरंत में कोई दवाई ले सकते हैं घर पे, लेकिन उसके बाद आपको सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कराना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए और इतनी अच्छी जानकारियों को हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा किया, आपका बहुत बहुत आभार।
0: जी, धन्यवाद।
2: जल जनित रोगों का उपचार, इस विषय पर डॉक्टर रामचंद्र कुमार से भेंट वार्ता भी आप सुन रहे थे। भेंट करता थे चंद्रमणि भारती। इसके साथ ही कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

प्रातः 7:05 पर कार्यक्रम हालचाल में हम आपको बताएंगे इतिहास में आज के दिन का महत्व और भारत की मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर के बारे में, और प्रातः 7:15 पर प्रांतीय भाषाओं पर आधारित प्रादेशिक लोक संगीत आप सुनेंगे। गायक कलाकार होंगे शंकर यादव और साथी।

प्रातः 7:25 पर कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा चंदन कुमार का तबला वादन और 10:45 पर कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत अनुप कुमार की आवाज़ में कुछ गीत।

बिहार का लोक संगीत ये कार्यक्रम प्रतिदिन आप सुनते हैं दोपहर 12 बजे। इस कार्यक्रम में आज कुछ भोजपुरी लोकगीत गायक कलाकार होंगे रीना सिन्हा और सुभाष सिंह। और दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम सुरों का सफर का प्रसारण होगा। शाम 5:30 पर भोजपुरी कार्यक्रम आरती आप सुनेंगे और रात 8:30 पर कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत अनूप कुमार की आवाज में कुछ गीत। रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

रात 10 बजे सोमवार सरीय संगीत सभा और रात 10:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: श्रोताओं, ये थे आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ पलों में संस्कृत और हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की।

0: संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारिपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुरवे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5 से 9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, हम हाजिर हैं कार्यक्रम हालचाल के साथ। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे इतिहास में आज के दिन का महत्व और भारत की मशहूर और दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर के बारे में। सबसे पहले जानिए भारत में आज के दिन का क्या महत्व है। श्रोताओ, आज एक

दिन है 1 जून भारतीय और विश्व इतिहास में अपनी एक ख़ास जगह रखता है। आज विश्व दुग्ध दिवस है। ये दूध के पोषण और वैश्विक महत्व को उजागर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया है और आज अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस भी है। ये दिवस बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए दुनिया भर के कई देशों में मनाया जाता है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख घटनाओं का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं। आज ही के दिन 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया। 1930 में भारत की पहली डीलवक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन ने बॉम्बे, जो अब मुंबई है, बॉम्बे और पुणे के बीच पहली बार यात्रा पूरी की। साल 2001 में नेपाल के शाही परिवार के दरबार में एक भीषण नरसंहार हुआ, जिसमें राजा रानी समेत शाही परिवार के 9 सदस्यों की मौत हो गई। साल 2010 में न्यायमूर्ति एस एच कपाड़िया ने भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वहीं आज कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्म की बात करें तो 1842 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो भारतीय सिविल सेवा के ICS में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे, उनका जन्म हुआ। 1929 में नरगिस दत्त, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता थी, उनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ। 1950 में अशोक कुमार, पूर्व भारतीय पेशेवर हॉकी खिलाड़ी और दिग्गज ध्यानचंद्र के बेटे थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ। तो ये थे इतिहास में आज के दिन का महत्व। कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे भारत की मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर के बारे में, लेकिन उससे पहले सुनते हैं यहूदी फिल्म का ये।

ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में। बोल हैं शैलेंद्र के और संगीत शंकर जयकिशन का।

श्रोताओं, भारत की मशहूर और दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर का रविवार शाम को निधन हो गया। उन्होंने 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरे देश और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक जगत तक के दिग्गज उनके निधन पर शोक जता रहे हैं। सुमन कल्याणपुर ने नाना करते प्यार, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे और तुमने पुकारा जैसे कई सुपरहिट गानों को अपनी आवाज़ दी थी। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को अविभाजित भारत, जो अब बांग्लादेश में है, उसके भवानीपुर में हुआ था। अपने करियर में उन्होंने 800 से अधिक फिल्मी गाने गाए। सुमन ने हिंदी, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, मैथिली के अलावा कई भाषाओं में भी फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड किए। संगीत की दुनिया में उनका ये योगदान देश के सर्वोच्च सम्मानों का हकदार है। उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की गायस गीत के साथ ही कार्यक्रम हालचाल अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, अब आइए सुनते हैं प्रांतीय भाषाओं पर आधारित प्रादेशिक लोक संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शंकर यादव और साथियों की आवाज़ों में लोकगीत। सबसे पहले सुनिए बुरबी।

अरे गोरिया पान चबा के घूमे लू बजरिया, अरे गोरिया पान चबा के घूमे लू बजरिया, नजरिया हमारी तोहरा।

खिलल गुलाब नियर बा गोरी, खिलल गुलाब नियर बा गोरी, अरे तोरे ओठ के हसिया, अरे तोरे ओठ के हसिया, जियरा पागल होला, जियरा पागल होला, अरे जियरा पागल होला, लचके जब कमरी

चिकन चिकन पहिया गोरी चिकन चिकन पहिया और

पूरन मासी चंदा लगे सुघर सलोनी दहिया, सुघर सलोनी दहिया अछतिया बेधे तोरे, छतिया बेधे तोरे कजरा के कचरिया, नजरिया तोरी हमरा से लड़ी।

लड़ी नजरिया तोहरा से लड़ी, नजरिया तोहरा से लड़ी, छतिया बेधे तोहरे, छतिया बेधे तोहरे, कचरा के

संकरिया तो प्यास बुझा दा हमें पिया के पनिया, अरे हमें पिया के पनिया। आखिर बरसी बदरा, आखिर बरसी बदरा, आखिर बरसी बदरा, देखा अब फुहरिया नजरिया हमारी।

0: शंकर यादव और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे पूर्वी, अब लीजिए सुनिए दादरा।
1: पतिधर छाती नयन भर सुरतिया, नयन भर

अभी आप सुन रहे थे शंकर यादव और साथियों की आवाज़ों में कुछ लोकगीत। इसके साथ ही प्रांतीय भाषाओं पर आधारित प्रादेशिक लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए चंदन कुमार का तबला वादन, ताल रूपक।

0: शुदा अभी आप सुन रहे थे चंदन कुमार का तबला वादन ताल रूपक। इसके साथ ही कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब यहीं समाप्त हुआ।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर 18.21 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8 बजने ही वाले हैं। अब समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार,

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री

0: और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओम मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमा भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमा के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री

0: किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया किस टाइम की जो एज के हिसाब से है।
0: वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
3: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए

0: सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला, उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला, उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में पांचवां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच दो गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार IPL चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर IPL खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने और ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे पर की जाएगी, जिसमें हिफाजत और राबते भी शामिल हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल शाम नई दिल्ली में मेहमान शख्सियत से मुलाकात की थी। सदर ओमिन ओंगलोंग ने म्यांमार भारत तिजारत फोरम से भी खिताब किया। म्यांमार के सदर भारत के 5 रोजा दौरे पर हफ्ते के रोज बिहार के शहर गया पहुंचे थे। उनके हमरा एक आला सतह का वफद भी है, जिसमें बहुत से काबीना वजरा, सीनियर अफसरान और सरकर्दा ताजिर शामिल हैं। जनाब ओमिन का सदर की हैसियत से भारत का ये पहला दौरा है। वो तिजारत और सनत की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत करेंगे और बहुत सी जगहों का दौरा करने के लिए कल मुंबई जाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: म्यांमार के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वो कौमी राजधानी में राय पिथौरा सकाफती मरकज में लाइट एंड लोटस एक जागे हुए शख्स की बाकियात की नुमाइश से भी महजूज होंगे। इस नुमाइश में गौतम बुद्ध से वाबस्ता मुकदस पिपरावा बाकियात और नादिर अशिया को नुमाया किया जा रहा है। म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम एक्ट ईस्ट और महासागर पॉलिसियों में शामिल है। उम्मीद है कि सदर ऊ मिन के भारत के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। न्यूज डेस्क से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट के लिए चुनाव होंगे। साबिक वजीर आजम और जेडीएस के रहनुमा एचडी देवेगौड़ा, मरकजी वुजरा और बीजेपी रहनुमा जॉर्ज कुरियन नीज रवनीत सिंह, राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे उन अरकान में शामिल हैं जिनके ओहदे की मुद्दत इस माह खत्म हो रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए भी नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। ये सीटें महाराष्ट्र के नायब वजीर आला सुनेत्र अजीत पवार और तमिलनाडु से AIADMK मेंबर पार्लियामेंट CV शनमुगम के हाल ही में रियासती असेंबली में मुंतखब हो जाने की वजह से खाली हो गई थी। ओडिशा के BJD मेंबर पार्लियामेंट देवाशीष सामंतरे ने भी इस्तीफा दिया था। इन इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। पोलिंग इस माह की 18 तारीख को होगी और वोटों की गिनती उसी रोज की जाएगी। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेंगे। 1 महीना तवील ये मुहिम 30 जून तक जारी रहेगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस मुहिम का मकसद सरई जमीन का तहफ्फुज और किसानों में साइंसी तर्ज की ज़राअत के बारे में बेदारी पैदा करना है। इस मुहिम में ज़राअत से मुतालिक यूनिवर्सिटीज, ज़रई तहकीक की भारतीय काउंसिल, कृषि विज्ञान केंद्र और अवामी नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। किसानों को मिट्टी की जांच, कुदरती ज़राअत, कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल और पानी की बचत के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें नकली कीमियावी खादों, बीजों और जरासीम कुश दवाओं की शिनाख्त भी बताई जाएगी। मुहिम के दौरान PM किसान सम्मान निधि, फसल बीमा स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी स्कीमों, नीज, खेतों में मशीनों से कामकाज किए जाने के फायदे से भी किसानों को वाकिफ कराया जाएगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
0: मगरबी बंगाल के वजीरा शुभेंदु अधिकारी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। वजीरों की इस काउंसिल में 35 नए वजीर शामिल किए जाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब लोक भवन में दिन के 11 बजे मुनाकद होगी। शुभेंदु अधिकारी ने बुनियादी तौर पर 5 काबीना वजीरों के साथ 9 मई को हलफ लिया था। इस तौसी के बाद रियासती काबीना के वजीरों की तादाद 41 हो जाएगी, जो 294 रुकनी मगरबी बंगाल असेंबली का आईनी उसूल के तहत 15% है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस आज नई दिल्ली में 2रे भारत ऑस्ट्रेलिया दिफाई वुजराए डायलॉग की मुश्तरक तौर पर सदारत करेंगे। वजारत दिफा ने बताया कि इस डायलॉग के दौरान बातचीत में दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक तआवुन को मुस्तहकम बनाने, फौजी इंटर ऑपरेबिलिटी और मुश्तरक तरक्की और मौकों की मुश्तरक पैदावार समेत सनती इश्तराक पर खास तवज्जो दी जाएगी। तवक्को है कि इस मीटिंग से दोतरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे, स्ट्रेटेजिक एतमाद और बाहमी तआवुन में इजाफा होगा, भारत बहरुलकाहिल खत्ते में इस्तेकाम और सिक्योरिटी को फरोग हासिल होगा और दिफा और सिक्योरिटी मामलात में

0: के नए मौकों को उजागर किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मिसाली क़यादत में गुज़श्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रुनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलुओं का आगाज़ और नफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इकदामात पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम किसानों की फलाह व बहबूद के लिए किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 12 साल में किसानों की बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफा करने के लिए मुतअद्दिद पहल कदमियों का आगाज किया है। इन इकदामात में सबसे नुमाया पीएम किसान स्कीम का आगाज रहा है, जो मुल्क में फलाह बहबूद से मुतालिक सबसे बड़ी पहलों में से एक है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद सूदमंद है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
0: फसल बीमा योजना से तकरीबन 23 करोड़ किसानों 1,92,000 करोड़ रुपए मालियत के बीमा दावों से मुस्तफीद हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के छोटे और आशिर बरादर किसानों को 3,000 रुपए की यकीनी माहाना पेंशन मिल रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के एक रिहायशी ने कहा कि मजकूरा स्कीम से किसानों को रोजगार में मदद मिलेगी।
2: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से,
0: कम से कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है, क्योंकि हुकूमत ने MSP को पैदावार से मुतालिक अखराजात का 1.5 गुना कर दिया है। आकाशवाणी न्यूज से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। मशहूर मारूफ गुलकारा सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई में उनकी रिहायशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 89 बरस की थी। उन्हें 1950 से 1970 की दहाई के दरमियान, जिसे फिल्म मौसीकी का सुनहरा दौर कहा जाता है, हिंदी, मराठी और बहुत सी दीगर भारतीय जबानों में उनकी गुलुकारी के सबब जाना जाता है। सुमन कल्याणपुर के बारे में कुछ तफसील।
3: सुमन कल्याणपुर 28 जनवरी 1937 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पैदा हुई थीं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में पहली बार 1950 की दहाई के वस्त में गाना गाया था। उनकी आवाज लता मंगेशकर की आवाज से काफी मिलती जुलती थी। उन्होंने अपनी बेहद खूबसूरत आवाज में, दिल को छू लेने के अंदाज में तारीख साज मौसीकारों, गुलुकारों, खासतौर पर मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गाने गाए। उनके मकबूल तरीन गानों में से कुछ गाने ये हैं।

महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और सुनेत्र पवार, नीज मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मौसीकी के मैदान में उनके तआवुन को उजागर किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया, रिलीफ कमिश्नर दफ्तर और मुतालिका महकमों को हिदायत दी है कि वो रियासत के कई अजला में तूफान, बारिश और इंतहाई खराब मौसमी हालात पर मुसलसल नजर रखे, किसी भी हादसे की सूरत में फौरी इकदाम को यकीनी बनाए। कल राजधानी लखनऊ समेत कई अजला में मौसम में तब्दीली आई, जिससे लोगों को शदीद गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसमियात महकमे ने रियासत के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसराइली फौज ने जुनूबी लबनान में दिफाई एतबार से अहम ब्यूफोर्ट कासल इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। इसराइल की दिफाई फौजों ने बताया कि ब्यूफोर्ट रिज और वादी अल सलूकी में फौजी दाखिल हुए और इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें यह कहा गया है कि ईरान के साथ उनके मुजवजा माहदे में न्यूक्लियाई मामलात का जिक्र नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने बताया कि इस माहदे में वाजे किया गया है कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करना

की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज होगी अधिसूचना जारी। 18 जून को होगा मतदान। देश भर में उर्वरकों को संतुलित और उचित बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान आज से हो रहा है शुरू। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 30 आवश्यक दवाओं का मूल्य निर्धारित किया, इनमें मधुमेह और हृदय रोग सहित कई दवाएं शामिल। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सारण, सिवान और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि 11 जून नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। इन सीटों पर चुनाव 18 जून को कराया जाएगा। इसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी। गौरतलब है कि डॉ. कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। इधर आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव भी 18 जून को कराए जाने की घोषणा की है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी विधान परिषद चुनाव में एनडीए सभी 10 सीटों पर विजय हासिल करेगा।
1: उम्मीदवारों को लेकर जो है शीर्ष नेतृत्व में चर्चा हो रही है, उम्मीदवार तय मंथन किया जा रहा है, जल्द ही हम लोग सार्वजनिक करेंगे। जिस तरह हम लोगों ने 5 सीट राज्यसभा का चुनाव जीते थे, उसी तरह 10 सीट जो है विधान परिषद का चुनाव जीतेंगे।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से कृषि बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों को संतुलित और उचित बढ़ावा देने के लिए एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा।

0: मानव गोयल आकाशवाणी।
1: इधर पूरे प्रदेश में भी आज से खेत बचाओ अभियान की शुरुआत हो रही है। इस दौरान किसानों को कम खाद और हरित खाद के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। वंचित किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ दिलाया जाएगा। अभियान की शुरुआत पटना स्थित कृषि भवन से कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेले के दौरान कांवरिया पथ पर सुरक्षा और सुविधा का व्यापक इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री भागलपुर समाहरणालय के सभागार में श्रावणी मेले की तैयारी और अन्य योजना की समीक्षा बैठक में कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर में 203 करोड़ रुपए की लागत वाली 84 विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने विक्रमशिला पुल और गंगा पथ परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही विक्रमशिला सेतु पर आवागमन शुरू कर दिया जाएगा।
2: नवंबर को मैं स्वयं आऊंगा और स्कूल को फिर से चालू करूंगा। अभी टेम्पररी चालू हो और दूसरा, जब तक ये पुल चालू नहीं हो तो प्राइवेट गाड़ी हो या आम लोग हो, उसको मुफ्त में इस तरफ से इस तरफ ले जाने की सारी व्यवस्था सरकार की।
1: राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA ने आम लोगों को राहत देते हुए 30 आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमतें निर्धारित कर दी हैं। इन दवाओं में विटामिन D3, कैल्शियम, मधुमेह और हृदय रोग के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के साथ साथ अंग प्रत्यारोपण के बाद दी जाने वाली महत्वपूर्ण दवाएं भी शामिल हैं। प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश के अनुसार निर्धारित कीमतों में वस्तु और सेवा कर यानी GST शामिल नहीं है। NPPA ने स्पष्ट किया है कि दवाओं की कीमत में GST तभी जोड़ा जा सकता है जब संबंधित कर का भुगतान सरकार को किया जा चुका हो या उसका भुगतान देय हो। सरकार का कहना है कि आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मरीजों को उचित दर पर दवाएं उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती बनाना है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सेवानिवृत्ति की निकटता वाले 275 पुलिस कर्मियों का ऐच्छिक तबादला किया है। इन पुलिस कर्मियों में 5 इंस्पेक्टर, 176 SI, 42 ASI, 54 हवलदार और 6 सिपाही शामिल हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक के अनुसार सेवानिवृत्ति में 2 साल से कम अवधि वाले कर्मियों को गृह जिला और ऐच्छिक स्थानांतरण संबंधी आवेदनों पर विचार किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बक्सर में महाराणा प्रताप जयंती पर समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री सिंह ने युवाओं से महाराणा प्रताप के जीवन से सीख लेने की अपील की। इस अवसर पर विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, विधायक आनंद मिश्रा, संतोष निराला और राहुल सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले सहित उत्तर पूर्वी भागों के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है।
4: दिनांक 1 जून उत्तर पूर्व भाग के जिलों के एक या दो स्थानों में तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और मेघ गर्जन वज्रपात की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि

0: वृद्धि होने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
1: इधर राज्य के कुछ हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 37.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा है कि वो अपनी सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने बताया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में गया जी के शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक प्राप्त कर कॉमन रैंक लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। शुभम गया जी के नारदगंज ब्रह्मणी घाट के निवासी हैं। उन्होंने जेई मेंस के दोनों सत्रों में 100% प्राप्त किए थे। इस परीक्षा में 56,880 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। दूसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली जोन के कबीर छिल्लर हैं। वहीं जतिन चाहर 319 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। औरंगाबाद जिला परिषद की सदस्य नीतू सिंह को 3 जून को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान उन्हें अपने क्षेत्र में किए गए प्रभावी कार्यों और ग्रामीण विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आगामी 5 जून को पटना चिड़ियाघर द्वारा बच्चों के लिए चित्रकला और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार बच्चे अपने घर से ही प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रतिभागियों को पर्यावरण विषय पर चित्र या पोस्टर बनाकर ऑनलाइन पोर्टल patnazoodigital@gmail.com पर अपलोड करना होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक छात्र निर्धारित तिथि तक अपने चित्र और पोस्टर ऑनलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। पटना चिड़ियाघर ने अधिक से अधिक बच्चों से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अपील की है, ताकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश व्यापक स्तर तक पहुंच सके। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस ने रामनगर थाना क्षेत्र के 3 दुकानों से भारी मात्रा में लॉटरी और कैश के साथ 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र में सोन नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि नदी में अवैध बालू उठाव के कारण बने गहरे गड्ढे में डूबने से ये हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी दीदारगंज घाट पर गंगा नदी में नहाने के दौरान डूबने से 1 बच्चे की मौत हो गई। दिल्ली के साकेत के सेदुला जवाब इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरने से बिहार के 2 अभियंताओं की मौत हो गई। इनमें 1 अभियंता नवादा के और दूसरा मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहतास के पीयूष राज ने रिले रेस में कांस्य पदक प्राप्त किया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाले बिहार के पहले एथलीट बने हैं। भारतीय पुरुष टीम में पीयूष राज के साथ सैयद कबीर, रंजीत कुमार एस, मोहम्मद अशफाक मौजूद थे। इन्हें सभी ने 4x400 मीटर रिले टीम में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये उपलब्धि हासिल की। कटिहार में आयोजित बिहार राज्य अंडर-13 शतरंज प्रतियोगिता में सारण की मोहनी पंडित और पटना के देवांश केसरी चैंपियन हुए। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियन बना है। गुजरात टाइटंस पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर

155 रन बनाए, जिसके जवाब में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने 18 ओवर में लक्ष्य को प्राप्त किया। इधर राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चयन किया गया। उन्होंने सबसे अधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान का शीर्षक है, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जरदालू आम और सत्तू की प्रशंसा की। अखबार लिखता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को आज भेजा जाएगा जरदालू आम। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीबीएसई ने स्वीकारी ऑनलाइन मूल्यांकन पोर्टल में सुरक्षा खामी। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, बिहार की पहली एरो सिटी होगा हरिहरनाथपुर, 11 टाउनशिप में 5 लाख को रोजगार मिलेगा। प्रभात खबर ने टेंडर घोटाले और

प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान का शीर्षक है, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जरदालू आम और सत्तू की प्रशंसा की। अखबार लिखता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को आज भेजा जाएगा जरदालू आम। दैनिक जागरण की सुर्खी है, CBSE ने स्वीकारी ऑनलाइन मूल्यांकन पोर्टल में सुरक्षा खामी। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, बिहार की पहली एरो सिटी होगा हरिहरनाथपुर, 11 टाउनशिप में 5 लाख को रोजगार मिलेगा। प्रभात खबर ने टेंडर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार ठेकेदार ऋषुश्री से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बढ़े बिलों से फिक्स होता था 10% कमीशन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज होगी अधिसूचना जारी, 18 जून को होगा मतदान। देश भर में उर्वरकों को संतुलित और उचित बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान आज से हो रहा है शुरू। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 30 आवश्यक दवाओं का मूल्य निर्धारित किया, इनमें मधुमेह और हृदय रोग सहित कई दवाएं शामिल। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सारण, सिवान और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

0: सामईन अभी आप कैसरुल जाफरी की लिखी ये गजल सुन रहे थे पंकज उदास और मनोहर उदास की आवाज में। आज आलमी यौम वालिदैन है। आज आलमी यौम वालिदैन जो अवामी अक्वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली ने इसे 2012 में एक करारदार के जरिया शुरू किया था, बाकायदा इसे आलमी सतह पर लाने के लिए और इसे मनाने का फैसला किया था ताकि लोगों को ये मालूम हो सके कि ख़ानदानी इकाई बच्चों के नशोनुमा और तहफ़्फ़ुज़ कितनी अहम है। इसलिए हर साल 1 जून यानी दुनिया भर में इसे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद बच्चों की परवरिश, इनकी ज़िंदगी संवारने के लिए वालिदैन की बेलौस मोहब्बत और इनके अनथक मेहनत और लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना है। वालिदैन के इस कायनात में खुदा ने जिसे सबसे बड़ी तोहफा माना है, जिसे सबसे ज़्यादा अनमोल नेमत जानते हैं, माँ की गोद जो बच्चों की पहली बरसगाह है जहाँ से वो ज़िंदगी के बुनियादी अखलाक और आदाब सीखते हैं। दूसरी जानिब बाप की हैसियत एक घने साए की तरह होती है जो औलाद के बेहतर मुस्तकबिल और तमाम बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कड़ी धूप में पसीना बहाता है। वालिदैन की मोहब्बत इस दुनिया में वाहिद और बेलौस और खालिस मोहब्बत है जो किसी गर्ज के बग़ैर होती है। वो अपनी ज़ात की परवाह किए बग़ैर और अपनी औलाद को हर खुशी और सहूलत फ्राहम करते हैं। वालिदैन का अवामी दिन हमें ये याद दिलाता है कि हम रोज़मर्रा की मसरूफियत में अपने माँ बाप को ना भूलें। इस दिन हमें एक अहद लेना चाहिए कि हम अपने वालदैन की खिदमत में अपना सबसे बड़ा फ़र्ज समझेंगे, इनका हमेशा एहतराम करेंगे और इनसे नर्म लहजे में बात करेंगे और इनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। याद रखिए, वालदैन दुनिया की वो अजीम शख्सियत हैं, अजीम हैसियत हैं और हस्तियां हैं जिनकी खदमात और कुर्बानियों का बदला चुकाना नामुमकिन है। आलमी यौम वालदैन हमें ये मौका फ्राहम करता है कि हम इनका शुक्रिया अदा करें और इन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो हमारे लिए कितनी कीमती हैं। एक दो शेर मुलाजा हों कि माँ तेरी अजमतों पर खुद को निसार कर दूँ, माँ तेरी अजमतों को पर ख़ुद को निसार कर दूँ, मैं तेरे नाम अपने लैलो निहार कर दूँ। अपनी सांसों में भी वो दुआ की सूरत, अपनी सांसों में है वो दुआ की सूरत, घर से निकलूँ तो हिफाजत खुद साथ चलती है। तो ये थी आज की बात। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम की जानिब और सुनते हैं आज का रेडियो मुशायरा महफिल सुखन, जिसमें शामिल होने वाले शायर हैं सैयद परवेज़ आलम और तबस्सुम फरहाना, निजामत कर रहे हैं मोहम्मद आलम।
1: सामीन आदाब, आज के महफिल सुखन में हमारे जो शोराए कराम मधु हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, उनमें जनाब सैयद परवेज़ आलम जो सलाम से तशरीफ़ लाए हैं और मोहतरमा तबस्सुम फरहाना और आपसे मुखातब हैं ये हकीक खाकसार मोहम्मद आलम। तो सबसे पहले हम अपने शुराए कराम का स्टूडियो में खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं और इस शेर के साथ महफिल सुखन को आगे बढ़ाते हैं कि तुम आ गए हो तो कुछ चांद सी बातें हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांद सी बातें हों, ज़मीं पे चांद कहाँ रोज़ रोज़ उतरता है। तो इसी शेर के साथ हम दावत सुखन देते हैं मोहतरमा तबस्सुम फरहाना को कि आप अपने कलाम से नवाजें।
2: शुक्रिया बहुत बहुत। गज़ल का मतला पेश करती हूँ।
3: इरशाद।
2: हम चाह कर भी आप से नफरत न कर सके।
3: वाह वाह।

0: वाह
1: सके,
0: वाह, क्या कहना है।
1: हम चाह कर भी आपस न फिरती न कर सके,
0: वाह
1: सब जुल्म जार हम बखुशी झेलते रहे।

0: किसी से शिकवा शिकायत न कर
1: वाह
0: सके।
1: वाह वाह, क्या कहने।
0: हम चाहे कर भी आपसे नफरत न कर सके।
1: बहुत खूब,
0: शुक्रिया भाई।
2: वाह,
1: बहुत खूब।

0: छत न कर सके, हम चाह कर भी आप से नफरत न कर सके।
1: बहुत खूब
0: ये शेर देखें,
1: इनायत
0: इरशाद।
1: इरशाद इरशाद
0: फनकारे बे नयाज हैं हम सीधे सादे लोग,

0: जो खुद ही अपनी जाति की इज्जत न कर
1: वाह
0: सके।
1: वाह
0: हम चाहे कर भी आप से नफरत न कर सके।
1: वाह,
0: मक्ता
1: बहुत खूब
0: पेश करती हूँ।
1: इनायत।
0: फरहाना हक पसंद तो सूली पे चढ़ गए,
1: फरहाना हक पसंद तो सूली पे चढ़ गए।
0: फरहाना

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: फिला किसे आगे भी जहां देख रही हूं,
0: अफलाक से आगे भी जहां देख रही हूं।
1: अफलाक

0: ही
1: सही
0: हूँ,
1: है, सही है, बहुत
0: ये
1: सही,
0: शहर देखें,
1: इनायत।
0: सन्नाटा है आवाज मगर गूंज रही है।
1: वाह, सन्नाटा है आवाज मगर गूंज

0: और मरता है
1: इरशाद
2: इनायत।
0: फरहाना छुपाते रहे वो अपने फसाने,
1: फरहाना छुपाते रहें वो अपने फसाने।
0: फरहाना

सामईन, अभी आप जगजीत सिंह की आवाज़ में ये प्यारी सी गज़ल सुन रहे थे। इसी के साथ उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का वक्त यहीं ख़त्म होता है। ज़र्रीन फातिमा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। ये प्रोग्राम आकाशवाणी पटना दरभंगा से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
4: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंड

0: लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम दसमंजरी। श्रोता, आज का ये कार्यक्रम हम भारत की मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर को समर्पित कर रहे हैं।

गायिका सुमन कल्याण पुर का रविवार शाम को मुंबई में 89 साल की उम्र में निधन हो गया। मौत की वजह उम्र से जुड़ी दिक्कतें बताई जा रही हैं। सुमन जी की आवाज़ की तुलना अक्सर लता मंगेशकर की आवाज़ से होती थी। फिल्म फेयर और भी कई अवार्ड्स उन्हें मिले हैं। उन्होंने 300 से अधिक ज़्यादा फिल्मों में गाने गाए। उनके जन्म की बात करें तो 28 जनवरी 1937 को ढाका में उनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम सुमन हिमाडी था। संगीत की शिक्षा उन्होंने मुंबई में शास्त्रीय संगीत सीखा। करियर में पहला ब्रेक 1954 में फिल्म मंगू से मिला। पहला डुएट तलत महमूद के साथ उन्होंने गाया। उनके मशहूर गाने आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार जैसे गाने हैं। और रफ़ी साहब के साथ उनके बहुत सारे गाने हैं जो सुपरहिट हुए हैं। 1960 से 70 के दशक में करियर का सबसे सुनहरा दौर था और पहला हिट गाना उन्होंने फिल्म दरवाज़ा फिल्म से दिया। और सुमन कल्याणपुर ने 1960 और 1970 के दशक में अपनी सुरीली आवाज़ से संगीत जगत में खास पहचान बनाई। उस दौर में लता मंगेशकर जैसी महान गायिका के रहते हुए उन्होंने अपनी अलग जगह बनाई। उनके गाए गाने आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे,

नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे, और तुमने पुकारा हम चले आए जैसे गाने आज भी लोकप्रिय हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, असमी, कन्नड़, बंगाली और उड़िया समेत कई भाषाओं में गाने गाए।

श्रोता, इस कार्यक्रम में हम सुमन कल्याणपुर के गाए कुछ चुनिंदे गाने आपको सुनवा रहे हैं। ये गाना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, बोल हैं हसरत जयपुरी के और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है राजकुमार।

सुमन कल्याणपुर की आवाज़ लता मंगेशकर से मिलती थी। दोनों के गाने का अंदाज़ और सुरों पर पकड़ एक जैसी मानी जाती थी। कई बार लोग उनकी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ के बीच धोखा खा जाते थे। इसी खूबी की वजह से जब 1960 के दशक में लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी के बीच विवाद हुआ तो सुमन कल्याणपुर संगीतकारों की पसंद बनी और उन्होंने रफ़ी साहब के साथ एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर गाना गाए। सुमन कल्याणपुर का रुझान बचपन से ही पेंटिंग और म्यूज़िक की तरफ था। उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। वे पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन सुमन जी की आवाज़ को उनके पड़ोसी और पिता के दोस्त पंडित केशव राव भोले ने परख लिया था। उन्होंने सुमन के पिता से संगीत सिखाने की बात कही। पहले तो सुमन जी शौकिया तौर पर ही संगीत सीख रही थीं, लेकिन समय के साथ इसमें उनकी रुचि बढ़ी और वो गंभीरता से सीखने लगीं। सुमन ने उस्ताद खान, अब्दुल रहमान खान और मास्टर नवरंग जैसे दिग्गजों से भी संगीत की

जब जब फूल खिले, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: जिंदगी और ख्वाब, इस फिल्म का गाना मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है प्रदीप ने और धुन बनाई है दत्ताराम ने।
1: न जाने कहां

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
5: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
6: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
7: श्रोताओं, सिनेमा में सुमन कल्याणपुर की यात्रा की शुरुआत की बात करें तो शुक्रची, चांदनी और मंगू 1954 में जैसे फिल्मों से उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने शराबी, ये सावन का मौसम, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे और भी बहुत सारे मशहूर गाने गाए, जैसे कई सदाबहार गीतों को अपनी आवाज़ दी। मोहम्मद रफ़ी के साथ उनके कोलेबोरेशन को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। सुमन कल्याणपुर ने अपने करियर में 800 से ज़्यादा गाने गाए थे और उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था।

उठी मन में आग लगी तन में, कसक उठी मन में।

न जाने कहाँ तुम थे।

सूरज और चंदा, इस फिल्म का गाना सुनिए मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। बोल है आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: सूरज और चंदा, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। बोल थे आनंद बख्शी के और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम डसमंजरे अब यही समाप्त होता है।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, अब आइए सुनते हैं अंग्रेजी वार्ता। वुमेन ड्राइविंग डिजिटल इनोवेशन। वार्ताकार है जेबा शाहब।
4: लेट मी नॉट प्रे टू बी शेल्टर्ड फ्रॉम डेंजर्स बट टू बी फेयरलेस इन फेसिंग देम। लेट मी नॉट बेग फॉर द स्टिलिंग ऑफ माई पेन बट फॉर द हार्ट टू कॉन्कर इट। लेट मी नॉट क्रॉस द सी merely by standing and staring at the water, but by swimming against the tides. These are the words of Rabindranath Tagore. They are words that are befitting to the nature of all hard-working women. Today,

0: पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
1: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
2: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, अब पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम के तहत सुनिए अनूप कुमार की आवाज में कुछ गीत। सबसे पहले सुनिए गोपाल सिंह नेपाली की रचना।

अब आइए सुनते हैं डॉक्टर शांति जैन की रचना, ओ रंगीन शामें वो मौसम सुहाना। लो फिर याद आया गुजरा जमाना।

0: अनूप कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे कुछ गीत। इसके साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त हुआ।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना,
4: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गाना साथिया फिल्म से साधना सरगम मुर्तजा और कादिर की आवाज़ों में, बोल हैं गुलजार के संगीत ए आर रहमान का।

मिशन कश्मीर इस फिल्म का गाना सुनिए, शंकर महादेवन, जसपिंदर नरूला और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। बोल हैं राहत इंदौरी के और संगीत शंकर ईशान लॉय का।

मिशन कश्मीर, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। इसी फिल्म का एक और गाना सुनिए, शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ों में।

0: शबाब सबरी और तोशी शबरी की आवाज़ों में बोलते गुलजार के संगीत साजिद वाजिद का कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गाना बॉम्बे फिल्म से हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं रीना सिन्हा और सुभाष सिंह। पहले सुनिए रीना सिन्हा से देवी गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार थे रीना सिन्हा और सुभाष सिंह। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शुरू का सफर।

सुरों का सफर कार्यक्रम में आज मुलाकात बर्मनदा के संगीत से। बर्मनदा ने संगीत निर्देशन के अलावा कई फिल्मों के लिए गाने भी गाए। इन फिल्मों में सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, मेरे साजन है उस पार, अल्लाह मेघ दे छाए दे जैसे गीत आज भी भाव विभोर करते हैं। स्वयं के गाए गीतों को बर्मनदा ने कभी किसी हीरो को लिप सिंग नहीं करने दिया। यही कारण है कि उनके गाए गीत फिल्मों में हमेशा बैकग्राउंड में ही प्ले होते थे।

फिल्म आराधना में उनके गाए गीत सफल होगी तेरी आराधना के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मेल पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी

प्रसिद्ध संगीतकार और गायक एस डी बर्मन जी को उनके जीवन में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, लेकिन अपने संगीत यात्रा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक गाइड के लिए उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलना आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि यह फिल्म तथा उसका संगीत बहुत ही सफल रहा था। कभी भी यदि भारतीय सिनेमा की सफलतम फिल्मों की चर्चा होगी तो ये फिल्म जरूर याद की जाएगी। इस फिल्म में बर्मन दा के गाए गीत अल्लाह मेघ दे से एक रोचक बात जुड़ी हुई है। बंगाली लोकगीत गायक और कंपोजर अबासुद्दीन अहमद ने यह धुन सन 1940 के दशक में तैयार की थी, और अहमद जो कि भटियाली लोक संगीत के कलाकार थे, उन्होंने अल्लाह मेघ दे गाया था। जरीगान या सॉन्ग ऑफ सोरो लोक परंपरा को मशहूर करने के लिए। इसके दो दशकों बाद जब बर्मन दा गाइड फिल्म का संगीत निर्देशन कर रहे थे, तब उन्होंने अल्लाह मेघ दे धुन का इस्तेमाल किया। इस पर हिंदी में गीत लिखा शैलेंद्र ने तथा उन्होंने स्वयं इस गीत को गाया।

बर्मन दादा का स्वयं में अटूट विश्वास था और बर्मन दादा अपने गीत चुनने के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा कहते थे, मैं केवल अच्छे गाने निर्देशित करता हूँ। मात्रा में संगीत देने के बजाय खुद चुने हुए गीतों में संगीत देते थे और इसी बात के लिए वे जाने भी जाते थे।

एक समय था जब संगीत गाने के बोल के आधार पर दिया जाता था। इस तरीके को दादा ने बदला। अब गीत के बोल संगीत की धुन पर लिखे जाने लगे। दादा तुरंत धुन तैयार करने में माहिर थे और इन धुनों में लोक व शास्त्रीय दोनों प्रकार के संगीत का मिश्रण था। बर्मन दादा व्यवसायीकरण में हिचकते थे, पर वे ये भी चाहते थे कि गाने की धुन ऐसी हो

जहाँ जरूरत पड़ी उन्होंने सुंदर शास्त्रीय संगीत भी दिया, लेकिन वे कहते थे कि फिल्म संगीत वो माध्यम नहीं है जहाँ आप शास्त्रीय संगीत का कौशल दिखाएं।

लता मंगेशकर ने बर्मन दा के साथ रिकॉर्ड करने के लिए मना किया। इसके बाद उन्होंने आशा भोसले और गीता दत्त के साथ एक के बाद एक कई हिट गाने दिए।

बर्मन दादा ने आशा भोसले, किशोर कुमार और हेमंत कुमार को भी बतौर गायक तैयार किया। उन्होंने रफी से सॉफ्ट गाने गवाए, जब अन्य संगीतकार रफी से हाई पीच गीत गाने को कह रहे थे। बर्मनदा की हमेशा कोशिश रहती थी कि एक बार जो संगीत उन्होंने दिया उसको अगले किसी भी गाने में दोहराया ना जाए।

फिल्म मिली के गीत बड़ी सुनी सुनी है के रिहर्सल के दौरान बर्मनदा को स्ट्रोक हुआ और किशोर कुमार जब उन्हें देखने अस्पताल गए तो उन्होंने कहा, बर्मनदा आप चिंता मत करिए, रिकॉर्डिंग 3 दिन बाद है, आप देखना कितनी अच्छी होगी रिकॉर्डिंग। और ये गीत किशोर कुमार के गाए हुए सर्वश्रेष्ठ गीतों में से एक है। उस स्ट्रोक के बाद बर्मनदा कोमा में गए तो फिर नहीं उठे।

आज इतने वर्षों बाद भी बर्मनदा का संगीत बद किया हुआ कोई गीत जब सुनाई देता है तो होठ खुद ब खुद गुनगुनाने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसी अमर धुनों के रचयिता को हमारा सलाम।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफर। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: pero sí. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं।

मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कानून की बातें कार्यक्रम में प्रस्तुत है भेंटवार्ता। आईपीसी गया, बीएनएस आया, आपके लिए क्या बदला? भेंटवार्ताकार हैं वैभव मिश्रा, भेंट करता हरेंद्र आज़ाद।
2: नमस्कार, मैं हरेंद्र आज़ाद, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम कानून की बातें में। और आज हम बातचीत करने वाले हैं आईपीसी गया, बीएनएस आया, आपके लिए क्या बदला। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं एडवोकेट वैभव मिश्रा। आप उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके का बदलाव हुआ जो आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड बीएनएस बना, यानी भारतीय न्याय संहिता। तो इससे पहले कि हम बातचीत करें, सबसे पहले एडवोकेट वैभव, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सर, हम जानना चाहेंगे कि 164 साल पुराना आईपीसी को हटाकर बीएनएस लाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी, और आम नागरिक के नजरिए से इसमें कौन से ऐसे 2-3 बदलाव हैं जो आप बताना चाहते हैं।
3: देखिए, जो कानून कॉलोनियल टाइम सेट से चल रहे थे, इंडियन पिनल कोड हो या आईपीसी जिसे कहते हैं हम, या सीआरपीसी हो, इनको इसलिए बदला गया क्योंकि ये अंग्रेजों के समय के थे, 18th सेंचुरी से लगभग चले आ रहे थे, और इस पे बदलाव छोटा मोटा आ रहा था, पर पूरा बदलाव होना इसलिए आवश्यक था और जरूरी था क्योंकि जो कानून अब समय बदल रहा है तो कानून भी बदलना जरूरी है उस हिसाब से। और समाज अब वो समाज नहीं रहा जो 200 साल पहले था, तो 200 साल पहले के कानून भी नहीं चल सकते आज के समय में, प्लस वो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे और वो मानसिकता भी थोड़ी अलग थी जिस हिसाब से बनाए गए थे। अभी आज़ादी को प्राप्त किए हुए लगभग 70 साल हो गए हैं, पर वही कानून चलाना और उसमें कोई चेंजेस लाके उन्हीं को आगे बढ़ाना मेरे ख्याल से समय के आभार को सही नहीं माने जा रहा था उसमें, और इसलिए इसमें अब ये चेंजेस लाए गए और बीएनएस इसलिए लाया गया है। चेंजेस तो कई हैं, बहुत सारे सेक्शंस आए गए हैं, ट्रांसजेंडर का डेफिनेशन लाया गया है इसमें, कई नॉमेनक्लेचर वही थे पर सेक्शन बदल दिए गए, जैसे 302 था, 302 जो आईपीसी में हुआ करता था वो अब 101 हो गया बीएनएस में, रॉबरी 392 था अब 309 हो गया बीएनएस में, चीटिंग 420 था आईपीसी में 318 हो गया है, फॉर्जरी 463 था आईपीसी में, बीएनएस में 336 हो गया है। तो ऐसे कई अन्य प्रकार के चेंजेस किए गए हैं, पर जो मैं देखता हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का बहुत बड़ा माध्यम अब बन गया है, इसको एज एविडेंस रूप में लाने के लिए। कई बार पहले भी लाते थे एविडेंस के रूप में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, पर क्योंकि अब जमाना बदल गया है तो अब फोन के रिकॉर्डिंग और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का या आईपैड के रिकॉर्डिंग भी और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ला सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को ला सकते हैं। और इसमें ये एक और चीज जो मैं खुद देखा हूँ काफी प्रभाव पड़ा है, वो है विक्टिम्स राइट टू असिस्ट। इसका मैं अगर थोड़ा एग्जांपल दूं कि अगर क्रिमिनल एक्शन होता है तो वो स्टेट और अक्यूज के बीच में रहता है, स्टेट की तरफ से कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूटर आते हैं और अक्यूज की तरफ से उनके वकील आते हैं, पर जो विक्टिम है, जो फैमिली है, जो सफर की है, जिनके खिलाफ क्राइम हुआ है, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आईपीसी के तहत नहीं था पहले, था भी तो स्टेट के थ्रू ही था या प्रोसिक्यूटर के थ्रू ही था, तो उनको सही या गलत रिलाय करना पड़ता था प्रोसिक्यूटर पे स्टेट के थ्रू अपनी दलील रखने के लिए, पर वो अब धीरे धीरे चेंज हुआ है और अब बीएनएस में विक्टिम का भी राइट है अपना पक्ष रखने का कोर्ट के सामने, स्टेट और प्रोसिक्यूटर तो अपने रख ही रहे हैं, पर कई बार क्या लगता है कि विक्टिम को लगता है कि सही दलील नहीं दी जा रही है कोर्ट के अंदर, या दी भी जा रही तो आधी अधूरी दी जा रही है, या कुछ बात रह गई हो तो वो प्रोसिक्यूटर को बोले वो बात रखने से वो अपने वकील के थ्रू भी रख सकते हैं वो बात कोर्ट के सामने। तो बीएनएस का मेरे हिसाब से वो एक आम नागरिक जो कहीं लग रहा हो केस चल रहा हो कोर्ट के अंदर और उसको कोई लग रहा है कि स्टेट और विक्टिम है वो, उसको लग रहा है स्टेट सारी बात नहीं बोल पा रही प्रोसिक्यूटर के थ्रू, तो वो अपने एक प्राइवेट वकील भी कर सकते हैं, वो विक्टिम के तहत बोल सकता है,
2: मतलब सेल्फ रिप्रेजेंट कर,
3: सेल्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं विक्टिम के लिए।
2: सर, हम लोग देख रहे हैं कि बीएनएस में धाराओं की संख्या आईपीसी से कम है, तो क्या इससे ज्यादा फायदा हुआ है या नुकसान, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं?
3: मेरे हिसाब से इनको स्ट्रीमलाइन किया गया है सेक्शंस को
2: जी।
3: और जो चेंजेस हुए हैं लगभग सेक्शन 511 से 358 तक लगभग सेक्शन चेंजेस हुए हैं इन सेक्शन के स्पेक्ट्रम रेंजेस में, और ये कम होके इसका मतलब ये नहीं कि कानून कानून कमजोर हो गया अगर सेक्शंस कम हो गए हैं तो, अगर डेफिनेशंस और इंक्लूड हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का मीनिंग और एड ऑन हुआ है, ट्रांसजेंडर का डेफिनेशन इंक्लूड एड ऑन हुआ है, तो

0: स्ट्रीमलाइन किया गया है। कई सेक्शंस ऐसे होते थे जिनका लेना देना था नहीं, या मतलब डिफंक्ट हो गए थे, जिनका काम था नहीं, बस नाम के लिए पड़े हुए हैं बेयर एक्ट में, तो उन सबको हटा दिया गया है। और ऐसे नए नए चीज़ जैसे मॉब लिंचिंग, एक ऐसा विषय, मेरे ख्याल से मॉब लिंचिंग उतना बड़ा विषय नहीं था जब ये IPC बना था अंग्रेजों के समय में, मॉब लिंचिंग अब थोड़ा एक बहुत बड़ा विषय मुद्दा बन गया। तो आई थिंक उनका भी BNS में डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका भी कैसे उस ऐसे सिचुएशन को डील किया जाए वो एड ऑन किया गया है। तो ऐसा नहीं कि कानून कमजोर हो गया है, सेक्शन कम हो गए हैं, तो पर जो बना है BNS उसमें अगर तहत देखा जाए तो इनको स्ट्रीमलाइन किया गया है, नए एक्शन जो होते हैं सोसाइटी में, क्राइम जो होते हैं उनको भी एड ऑन किया गया है, और जिन सेक्शन का कोई प्रयोग था नहीं, जिनका कोई मतलब था नहीं, उनको हटा दिया गया है।
1: क्या बात है। एक बड़ी प्रचलित धारा है IPC की, जो पहले 302 हर आदमी जानता था, 302 302, उसको किस रूप में चेंज किया गया है? BNS में क्या है और इसमें जो उसका फंक्शन था, कुछ एड ऑन हुआ है, कम ज्यादा हुआ है, क्या है जानकारी?
0: सेक्शन वही है, बस नाम नॉमिनक्लेचर चेंज हो गया, 302 था अब 101 हो गया है, मर्डर है 302 का, और सिमिलरली बाकी सेक्शन भी चेंज हो गए। रॉबरी 392 था, रॉबरी 309 हो गया है BNS में। कई हिंदी फिल्म में भी हम आम नागरिक देखते तो
1: हाँ
0: 420 420 कहते, 420 कहाँ से आता था, 420 आता है सेक्शन 420 IPC में, तो वो 420 कहते थे, अब 420 अब बन गया 318
1: अच्छा
0: BNS में।
1: जी।
0: फॉर्जरी 463 हुआ करता था, फॉर्जरी अब 336 हो गया है BNS में। तो ऐसे अन्य कई चेंजेस हुए हैं, बस नाम चेंज हुआ है क्योंकि सेक्शन स्ट्रीमलाइन हो गए हैं, पर उनका महत्व कम नहीं हुआ, महत्व कमजोर नहीं हुआ है। उनके पावर्स जो एक स्टेट और प्रोसिक्यूशन को दिलाती है कि एक्शन लिया जाए, किसी ने क्राइम कमिट किया है तो वो एक्शन उसमें उसी तहत लिया जाएगा, उसमें कोई नाकामयाबी या कोई कमजोरी नहीं हुई है कोर्ट के द्वारा या इस एक्ट के द्वारा।
1: अच्छा, अब इसमें एक चीज और जोड़ा गया है, सामुदायिक सेवा का प्रावधान, जो कि हम लोग देखते हैं कि छोटे अपराध जो होते हैं उनमें जेल की जगह और बड़ी सजा के जगह जो सामुदायिक सेवा है, इस तरह के निर्णय दिए जा रहे हैं कि अपराधी से झाड़ू लगवाना या समाज सेवा जैसे काम में लगाना, तो क्या लग रहा है आपको, इससे किस तरह के बदलाव आएंगे?
0: ये रिफॉर्म सिस्टम के तहत है ये पहले कई, अब हाई कोर्ट के ऑर्डर्स देखेंगे, अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर्स देखें तो कई बार एक अक्यूज्ड को सुधार लाने, मान लीजिए कोई बड़ा अपराध ना हो, छोटा मोटा अपराध ही हो, तो उसमें कम्युनिटी सर्विस के तहत आप कईयों कहा जाता है कि आप पेड़ लगा दे कहीं पे, या साफ सफाई करवाएं कहीं पे, या कहीं खाना पीना खिला दे किसी, तो एक रिफॉर्म तरीका होता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि जो अक्यूज्ड है वो कम उम्र का है या कम उम्र की है या है 18 के ऊपर पर उतने भी जिंदगी में बहुत कुछ देखना बाकी है,
1: मतलब उसका आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं रहा है।
0: आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और आगे जिंदगी अगर सुधर सकती है तो एक मौका दिया जाता है कि आप अपने आप को सुधार लें, अपनी मानसिकता बदल लें और समाज के लिए कुछ कार्य करें, कुछ काम करें। इस तहत उस इंसान जिसने कोई क्राइम कमिट किया है, सुधार उसके नेचर में भी आएगा और उसके मानसिकता में भी आएगा, और एक समाज के लिए एक गलती जो की है उस इंसान ने उसके लिए एक रिफॉर्मेटिव कार्य भी कर लेगा वो इंसान।
1: तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये एक सकारात्मक बदलाव की तरफ कदम है।
0: ये बिल्कुल है, पहले ही कोर्ट्स इंडिपेंडेंटली ऐसे डिसीजन देते थे, कम्युनिटी सर्विस उतने एक्ट के थ्रू उतना बड़ा योगदान नहीं था लेजिस्लेटिव के तहत, बट अब BNS में आ गया तो कम्युनिटी सर्विस एक बहुत बड़ा स्टेप है। ये बाकी देशों में हमें दिखता था कि कम्युनिटी सर्विस किया जाए, पर अब भारत में भी देखा जा रहा है, तो मेरे ख्याल से इसका आने वाले सालों में इसका बहुत बड़ा योगदान देखेंगे हम किसी को रिफॉर्म करने के लिए। छोटा सा एग्जाम्पल अगर दे दूं मैं तो किरण बेदी जी जब तिहाड़ जेल में जेलर थी तो मेरे ख्याल से उन्होंने किताब भी लिखी है कैसे वो रिफॉर्म कर चाहते थे कि जेलर्स जो इनमेट्स थे तिहाड़ जेल में। वो कहानी और भी है कि करनाल में कोई थे IPS ऑफिसर या पुलिस में, वो भी उनकी भी स्टोरी थी, वहां से फिर इसको ऑल ओवर इंडिया लाके कि रिफॉर्म किया जाए। तो मैं कहता हूँ उसी थॉट प्रोसेस को और उसी रिफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर को अब एक लेजिस्लेटिव रूप में लाया गया है कि अगर कोई भी अक्यूज्ड है, उसने कोई भी अगर क्राइम किया हो, अगर छोटा मोटा ही सही, अगर ऑब्वियसली अगर बड़ा क्राइम किया हो, मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर किया हो, तो उसमें तो फिर जो कानून का तहत होगा सो होगा, पर अगर छोटा मोटा माइनर क्राइम, छोटी मोटी जेब कतरा जैसे कुछ कार्य किया हो या छोटा मोटा क्राइम किया हो और उसमें रिफॉर्म करने का अगर सिस्टम है और तरीका है, तब इसमें कम्युनिटी सर्विस में उस इंसान को ठीक किया जा सकता है फिर।
1: क्या बात है। अच्छा जी, राजद्रोह की धारा पहले 124A थी जो कि हट गई है, अब धारा 152 में भारत की संप्रभुता को खतरा जोड़ा गया है, तो दोनों में असल फर्क क्या है और इससे जो अभिव्यक्ति की आजादी की हम बात करते हैं उस पर क्या असर पड़ेगा?
0: देखिए, इसमें सेडिशन एक ऐसा चीज था जो अंग्रेजों के जमाने से आ रहा था, और सेडिशन पे ये बेसिकली एक टूल यूज किया जाता था अंग्रेजों द्वारा, जो इंडियन क्रांतिकारी थे जो भारत की आजादी के

0: के लड़ते थे 1947 से पहले, उनके खिलाफ सेडिशन यूज किया जाता था, सेक्शन 124A ऑफ द IPC अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसको चेंज किया गया ताकि उसको मिसयूज ना हो. पर आज भी हम देखेंगे सेडिशियस चीजें कई जगह कई बार बोली जाती हैं. उस समय उसका प्रयोग अंग्रेज करते थे भारत में आजादी को दबाने के लिए, ताकि आजादी की मांग ना की जाए भारत के लोगों द्वारा. पर अब ये सेडिशन कई बार इसलिए यूज करना पड़ता है कि देश के अन्य जगहों पे इंटरनल प्लेसेस में एंटी नेशनल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई चीज लिख देते हैं जिसमें कम्युनल फ्लेयर अप हो जाता है, लोगों के बीच में भावनाएं ऐसी बढ़ जाती हैं, तो एक इंटरनल डिस्टरबेंस का मौका बन जाता है. तो उस चीज को रोकने के लिए अब उसी सेडेशन का प्रयोग दूसरे तरीके से किया जाएगा कि सेडेशन को रोका जाए, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को रोका जाए, क्योंकि अब ऑनलाइन जमाना है, सोशल मीडिया पे तुरंत कोई कुछ लिख देता है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड कोई तुरंत कोई कुछ बना के लगता है, उसकी ऑथेंटिसिटी होती नहीं, ना कोई वेरिफिकेशन होता है, और कौन उसका क्या मतलब निकालता है, तुरंत एक छोटा सा मुद्दा कैसे समाज में आग के रूप में
1: फैल
0: बवाल
1: जाता है जी।
0: बवाल खड़ा कर देता है, और फिर प्रशासन को कई सख्त कदम उठाने पड़ते हैं. तो उसी सेडिशन को रोकने के लिए कि कोई देश में दिक्कत ना हो, हम ऐसे एरिया में रहते हैं, देश हमारे ऐसे एरिया में जो हमारे दुश्मन भी अगल बगल में ही है, तो कई चीज देखनी पड़ती थी. सेडिशन को चेंज किया गया है. अंग्रेजों के जमाने में किसी और चीज के लिए प्रयोग किया जाता था, अब थोड़ा इसको आज के संदर्भ में, आज के सोशल सिस्टम में उसके तहत हमें यूज करना पड़ता है.
1: जी, अब थोड़ी हम बात करते हैं कि इस नए प्रावधान में 0 FIR और EFIR की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था आम आदमी के लिए कैसे मददगार है, और क्या अब किसी भी थाने में शिकायत के लिए बिना गए ये संभव है, और ये धरातल पर कितना हो रहा है?
0: कई बार क्या होता था कि जुरिस्डिक्शन के तहत आप किसी भी थाने में FIR रजिस्टर करने जाते थे, तो जुरिस्डिक्शन तहत थाने वाला आपका कंप्लेन लेता नहीं था कि उस कॉज ऑफ एक्शन या कोई भी क्राइम जो कमिट हुआ हो वो इस थाने के अंतर्गत नहीं आता. पर 0 FIR ऐसा करता है कि कई बार आपको थाने जाने की जरूरत भी नहीं है, आप ऑनलाइन अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, FIR रजिस्टर कर सकते हैं, और जो लोकल एरिया है वो फिर वहां पे अब रजिस्टर हो जाएगा लोकल थाने में, और फिर जहां का जुरिस्डिक्शन बनता है पुलिस अपने आप वहां उस FIR को वहां ट्रांसफर कर देगा. पहले रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी, रिसीविंग भी नहीं होती थी जुरिस्डिक्शन के नाम पे, पर अभी अब ये सुविधा मिल गई है 0 FIR तहत कि आप FIR कहीं से भी कर सकते हैं. आपको अपने जहां पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, जहां पे क्राइम कमिट हुआ है, वहीं पे उसी थाने में जाने की जरूरत नहीं, आप कहीं से भी कर सकते हैं. लोकल पुलिस स्टेशन आपको मना नहीं कर सकता है, आप ऑनलाइन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस थाने में फिजिकली जाके भी रिसीविंग ले सकते हैं अपने कंप्लेन को, और FIR रजिस्टर करवा सकते हैं उसमें.
1: अच्छा, अगर ऐसी स्थिति में किसी नागरिक को कोई समस्या उत्पन्न होती है या FIR दर्ज नहीं हो पा रहा है, या पुलिस वाले अगर परेशान करते हैं, तो उस स्थिति में उनके लिए क्या उपचार है?
0: आप कोर्ट जा सकते हैं अपना कंप्लेन रिसीविंग कराने के बाद, रिसीविंग ले लें उसका, फिर जो लोकल DCP है उनको भी कंप्लेन आप दे दें, और 1 हफ्ते 2 हफ्ते वेट करने के बाद अगर आपको लगता है आपके कंप्लेंट पे एक्शन नहीं हुआ है, पर ये जरूर देखें कि आपको डायरी नंबर मिला है कि नहीं मिला आपके कंप्लेंट पे, रिसीविंग कहते हैं उसको, तब आप पहले तो 156(3) के तहत है CRPC में, आप मेकल सेक्शन 175 है, 174, 175 और BNSS, जहां पे आप सीधा मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट लिख सकते हैं, और फिर उसके तहत एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाई जाती है पुलिस स्टेशन के थ्रू. अगर कोर्ट मैजिस्ट्रेट इस पे प्राइमा फेसी केस देखता कि बनता है इसमें, तब पुलिस से पूछा जाता है कि आपने इस पे क्या कंप्लेंट पे एक्शन लिया, और FIR बनता है या नहीं बनता है, पुलिस जवाब देगी फिर इसमें.
1: मतलब इस तरह के भी प्रावधान
0: इसके
1: हैं।
0: तरह के
1: जी
0: प्रावधान है,
1: जी
0: और अगर मान लें पुलिस फॉर वॉट एवर रीजन कंप्लेंट ही नहीं ले रही है और आपको वहां से जाना पड़ रहा है, तो आप सीधा भी मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं कि मेरा कंप्लेंट नहीं ले रहे पुलिस वाले, और अगर आपके आर्गूमेंट्स में कोर्ट सेटिस्फाइड है तो आप सीधा पुलिस को भी बुला सकते हैं कि आप
1: जी
0: इस पर
1: जी
0: एक्शन लें.
1: जी समय अभाव है, सवाल तो बहुत हैं, लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल। अगर किसी पर झूठा केस हो जाए, तो BNS में बचाव के लिए क्या कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं?
0: झूठे केस के लिए अगर मान लीजिए कोई डेफेमेटरी चीज अगर बोला गया, तो डेफेमेशन का तो प्रावधान तो हर जगह ही एक्ट में, उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है. तो अगर कोई झूठा केस आप पे किया, तो फॉल्स एलिगेशन पे डेफेमेशन तो आप फाइल कर सकते हो अगर आपका रेपुटेशन गुडविल को डैमेज किया गया है, और अगर झूठे केस के तहत वो तो खैर डैमेजेस तो आप क्लेम कर सकते हैं, पर उसके लिए भी आपको अलग से केस फाइल करना पड़ता है अगर झूठा एलिगेशन लगाया तो वो तो फिर है, तो सिस्टम कोर्ट केसों को जाना पड़ेगा, हो सकता है समय थोड़ा लग जाए, पर कोई अगर किसी को लगता है कि उनका रेपुटेशन गुडविल और समाज के सामने उनका इमेज काफी खराब हुआ है कोई झूठा केस लगाने के बाद, और एंड में प्रूव हो गया कि वो झूठा केस था, तभी फिर आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं।
1: क्या बात है एडवोकेट वैभव
0: राइट
1: जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इस विषय पर जो आईपीसी बदल के बीएनएस हुआ और आम लोगों के

0: लिए कितना फायदेमंद हुआ, इस पर विस्तार से और गहरी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कानून की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। आईपीसी गया, बीएनएस आया, आपके लिए क्या बदला। भेंटवार्ताकार थे वैभव मिश्रा, भेंटकर्ता हरेंद्र आजाद। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए देशकांत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को। फिल्म का नाम है आशिकी। गीतकार हैं समीर, संगीतकार गुलशन कुमार।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: लीजिए सुनिए उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल को, फिल्म का नाम है दिल।

लीजिए सुनिए, लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है हिना। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 10 सीटों के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इन सीटों में से 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई 1 सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून तक निर्धारित है। प्रत्याशी 11 जून तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतों की गिनती होगी। गौरतलब है कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम कौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 विधान पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 3 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना तथा पंचायत स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। इधर पटना में कृषि भवन में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किसानों को रासायनिक खाद की जगह हरित खाद के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। श्री सिन्हा ने बताया कि अभियान के दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी जोड़ा जाएगा। IIT रुड़की ने JEE एडवांस 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में कयाची के शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक प्राप्त कर कॉमन रैंक लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। शुभम कयाची के नादरागंज ब्रह्मणी घाट के निवासी हैं। उन्होंने JEE मेंस के दोनों सत्रों में 100% प्राप्त किए थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुभम कुमार को इस सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। केंद्रीय मंत्री और गया के सांसद जीतन राम मांझी ने शुभम कुमार को बिहार का गौरव बताते हुए इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में सरकारी बसों से सफर आज से महंगा हो गया है। परिवहन विभाग ने बस किराए में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी की है। वहीं सिटी बसों के किराए में भी 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 53.50 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब पटना में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 3,414 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान के हुसैनगंज में सबसे अधिक 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भाग के कुछ जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है। मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा रोड में अपराधियों ने कुख्यात

0: गोविंद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि गोविंद शर्मा के फ्लैट में पहले से घात लगाए अपराधियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मुजफ्फरपुर के तत्कालीन मेयर समीर कुमार और जमीन कारोबारी आशुतोष शाही हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। बेगूसराय जिले के पछवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 83 लीटर शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। बिहार कानून साज काउंसिल की खाली हुई 10 नशस्तों के इंतखाबात के लिए आज नोटिफिकेशन

0: पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 83 लीटर शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफ अलहुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। बिहार कानून साज काउंसिल की खाली हुई 10 नशस्तों के इंतखाबात के लिए आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामजदगी का अमल भी शुरू हो गया है। इन सीटों में 9 सीट के लिए 2 साल इंतखाबात हो रहे हैं, जबकि साबिक वजीर आला नीतीश कुमार के इस्तीफा से खाली हुई 1 सीट के लिए ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं। इंतखाबी कमीशन से मौसूला इत्तला के मुताबिक नामजदगी की आखिरी तारीख 8 जून तक मुकर्रर है। उम्मीदवार 11 जून तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों पर 18 जून को पोलिंग होगी और इसी दिन शाम को वोटों की गिनती होगी। गौरतलब है कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 पार्षदों की मुद्दत कार 28 जून को पूरी हो रही है। ज़राअत व किसान फलाह के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन से मुल्कगीर खेत बचाओ मुहिम का आगाज़ किया। ये मुहिम 3 जून तक चलेगी। मुहिम का खास मकसद केमिकल्स का मुतवाजिन और मुनासिब इस्तेमाल बढ़ाना, मौसम के चैलेंजेस से किसानों को बरवक्त सलाह देना और पंचायत सतह पर अवामी हिस्सेदारी को यकीनी बनाना है। इधर पटना में ज़रई भवन में मुनक़द प्रोग्राम में वज़ीर ज़राअत विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मुहिम के दौरान काश्तकारों को कीमियाई खाद की जगह ग्रीन खाद के इस्तेमाल के लिए तरगीब दी जाएगी। जनाब सिन्हा ने बताया कि मुहिम के दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और वज़ीर आज़म किसान सम्मान निधि मंसूबे से भी मरबूत किया जाएगा। IIT रुड़की ने JEE एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस इम्तहान में गया जी के शुभम कुमार ने 360 में से 330 मार्क्स हासिल करके कॉमन रैंक लिस्ट में अव्वल मकाम हासिल किया है। शुभम गया जी के नादरागंज ब्रह्मणी घाट के बाशिंदा हैं। उन्होंने JEE मेंस के दोनों सेशन में 100% हासिल किए थे। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने शुभम कुमार को इस कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए उनके रोशन मुस्तकबिल की तमन्ना की है। गया के MP और मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने श्री कुमार को बिहार का फख्र बताते हुए इस कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी है। रियासत में सरकारी बसों से सफ़र आज से महंगा हो गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने बस किराए में 10-15% तक का इजाफा किया है। वहीं सिटी बसों के किराए में भी 15% तक का इजाफा किया गया है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 53.50 रुपये का इजाफा किया है। अब पटना में कमर्शियल गैस सिलेंडर 3,414.50 रुपये में मिलेगा। वहीं घरेलू सिलेंडरों की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। नई कीमतें आज से नाफिज हो गई हैं। रियासत में बारिश की सरगर्मियों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान के हुसैनगंज में सबसे ज़्यादा 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का इम्कान जताया है। इस दौरान जुनूब मगरबी, जुनूब वस्त और जुनूब मशरक़ी हिस्से के कुछ ज़िलों में 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवा चलने का अंदेशा है। मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा रोड में जराइम पेशा अफराद ने बदनाम जमाना गोविंद शर्मा को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस ने बताया कि गोविंद शर्मा के फ्लैट में पहले से मौके की ताक में रहे जराइम पेशों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जाए वकूअ पर ही इसकी मौत हो गई। महलूक मुजफ्फरपुर के उस वक्त के मेयर समीर कुमार और ज़मीन ताजिर आशुतोष शाही कत्ल मामले का अहम मुलजिम था। बेगूसराय ज़िला के बछवाड़ा थाना हलका में पुलिस ने छापामारी करके तकरीबन 83 लीटर गैर मुल्की शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
2: ये

आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लिए सुनिए रोजगार सूचना। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी एनडीए परीक्षा के आलोक में कुल 394 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.upsc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोग को पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

0: कर्मचारी चयन आयोग एसएससी सीजीएल 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।
1: समाचार के साथ मैं सर फिरोजी।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफिन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर

0: 194,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 188,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय जीएसटी का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य जीएसटी का 45,143 करोड़ और एकीकृत जीएसटी का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। जीएसटी रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के, इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपए होगी। मुंबई में 43.50 रुपए की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रुपए होगी। कोलकाता में 53.50 रुपए की वृद्धि के साथ व्यवसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रुपए होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर, लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: तो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
1: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोट कुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
1: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और W सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
1: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
1: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
1: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओ, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
1: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
1: यह कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
2: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं,

0: जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा, तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
1: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं,
0: जी,
1: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में।
0: जी,
1: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
0: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
1: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना।
0: जी,
1: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना।
0: जी,
1: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं।
0: जी,
1: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं। ठीक है
0: जी।
1: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है।
0: जी,
1: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन लें, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो,
0: जी,
1: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती।
0: जी,
1: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
0: जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
1: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं।
0: जी,
1: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन, विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी।
0: जी,
1: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे, और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ।
0: जी,
1: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की, और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया।

0: इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि
1: जी
0: एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया है।
1: जी
0: ठीक है, इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से
1: जी
0: जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं।
1: जी
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है।
1: जी
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको
1: जी
0: अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स।
1: ओके
0: तो इसमें पांच उपसमूह आते हैं।
1: जी
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं
1: जी
0: और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं।
1: जी
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है
1: जी
0: या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
1: जी
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है।
1: जी
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है।
1: जी
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं।
1: जी
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा
1: जी
0: आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है,
1: जी
0: ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है।
1: जी
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं।
1: जी
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में।
1: जी
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो,
1: जी
0: दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं,
1: जी
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते हैं।
1: जी
0: जैसे आपको प्यास लगी है।

0: लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप
1: जी
0: चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं
1: नहीं
0: समझ
1: सुनेगा
0: पाएगा। लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी,
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना
1: बिल्कुल
0: कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की।
1: जी
0: आप सोचिए, आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है।
1: जी
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते,
1: जी
0: अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा।
1: जी
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है।
1: जी
0: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल
1: इस्तेमाल करते
0: करते हैं।
1: हैं
0: तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है। और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की
1: जी
0: भाषा
1: जी
0: में,
1: जी
0: मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से, उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत।
1: जी
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में,
1: जी
0: ठीक है? लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं।
1: जी
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी कि किसी और मौखिक भाषा में है।
1: जी ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी
0: जी
1: और समावेशी शिक्षा के बारे में
0: जी
1: जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या-क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं।
1: जी
0: जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो
1: जी
0: हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं।
1: जी
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है,
1: जी
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है,
1: जी
0: ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख
1: जी
0: सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है,
1: जी
0: जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
1: जी
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं? इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के
1: जी
0: हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज।
1: जी
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं,
1: जी
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये
1: जी
0: प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है? ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें।
1: जी
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो,
1: जी
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो,
1: रैंप होना
0: व्हीलचेयर
1: चाहिए
0: आसानी से पहुंच जाए,
1: जी
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो,
1: जी
0: आपके विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या? आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा,
1: जी जी
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं? उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं,
1: जी
0: उनके उभारों को महसूस कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
1: जी
0: ये स्पर्शनीय टाइल बता

0: बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें।
1: जी
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
1: जी
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना,
1: जी
0: जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है,
1: जी
0: जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है।
1: जी
0: तो ये भी एक हमारी पहल है।
1: जी प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से
1: जी
0: मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी।
1: जी
0: और एक और सरल उपाय है,
1: जी
0: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है,
1: बिल्कुल
0: गूगल
1: बिल्कुल
0: पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक्स CIET NCERT,
1: जी
0: आपको सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा
1: जी
0: और आप वहां से ले सकते हैं।
1: जी
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है और CIT वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं।
1: जी
0: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को CIT की वेबसाइट से, NCERT ऑफिशियल YouTube से और
1: जी
0: साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क, बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में NCERT की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए NCERT की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं,
1: जी
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
1: जी
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं।
1: जी
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
1: जी।
0: है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं।
1: जी
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है।
1: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चों को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है, बहुत सरल से शब्दों में, कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी।
1: जी
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके।
1: जी
0: यह काम

0: लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा।
1: जी
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं, तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्जवल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए। ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: कहिए कैसी हैं मंजरी जी आप?
2: बस यही कहेंगे ना कि हमेशा की तरह बिल्कुल मस्त अच्छी सी हूँ।
1: हाँ, जी वो तो आपको देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल जो है आप खुश लग रही हैं, बहुत ज्यादा फ्रेश लग रही हैं।
2: जी धन्यवाद।
1: और मुझे लगता है कि जब से मैं सुबह से आपको देख रही हूँ आप तरह तरह के गीत निकाल रही हैं, कभी किसी गाने को पसंद कर रही हैं, कभी नहीं कर रही हैं, तो संगीत के बीच में रहकर भी आदमी जो है एकदम अपने आप को फ्रेश पाता है, ताजा महसूस करता है।
2: गीत संगीत तो की दुनिया ऐसी है कि आप कितने भी उदास हों आप गीत सुन लीजिए आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी उदासी आपके पास से कब कहां किधर चली गई अगर आप बिल्कुल दिल से सुनते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मंजरी। हाँ, लेकिन एक उदासी का सबब आज तो हमारे मन में है।
2: बिल्कुल
1: है ना।
2: बिल्कुल वही हम कहने वाले थे कि जब हमारे बीच से कोई चला जाता है और जब अच्छी अच्छे गायक गायिका चले जाते हैं तो उनके ना चाहिए उनके गाने हम सुनकर ही बड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो वो गाने हमेशा कानों में दस्तक देते रहते हैं और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो बहुत दुख होता है, आंखें भर आती, दिल भर आता है।
1: बिल्कुल। कल मैं एक कार्यक्रम दे रही थी मंजरी, उसमें मैंने कहा कि किसी का जाना कैसा महसूस होता है हमें जब हमारी जिंदगी से, विचारों से, हमारे दिल से, हमारे घर से कोई चला जाता है या दुनिया से चला जाता है तो हम क्या महसूस करते। और हमारे श्रोताओं ने इतने अच्छे विचार हम तक पहुंचाए थे कि मेरा गला भर आया था और आंखें नम हो गई थी।
2: नहीं, वो बात ही ऐसी है कि हम पढ़ते पढ़ते आज भी आंखें नम हो जाती जब हम उन चीजों को याद करते हैं और जो हमारे बीच से अब चले गए हैं। और हम सब उनके परिवार के ही सदस्य कहना चाहिए, वो गाने गाते हैं और हम लोग सुनते हैं ध्यान से तो हम कहीं ना कहीं उनके साथ एकदम जुड़े होते हैं।
1: और इस कार्यक्रम या इस नौकरी में हमने न जाने कितनी बार इन गायक और गायिकाओं को बजाया और खुद गुना उनके गानों को गुनगुनाया, उनके गानों को जिया हमने। मुझे याद है रफी साहब के इतने सारे गाने हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं, लता जी के, आशा जी के, और आज जो सुमन कल्याणपुर को हमने खो दिया है उनके गाए गीत जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हमारे ही गले का कोई सुर जैसे चला गया है,
2: बिल्कुल
1: ऐसा महसूस होता है।
2: है
1: ना, इतनी महान गायिका, इतनी शानदार गायिका जिन्होंने बहुत सादगी से अपनी आवाज को पेश किया, आप तक पहुंचाया और हर गीत को उतनी ही कोमलता के साथ, सादगी के साथ, उतार चढ़ाव के साथ गाया
2: और उतनी ही उनका स्वभाव भी सादगी भरा था। बहुत ही सरल स्वभाव की महिला हैं वो थी और जो आज हमारे बीच नहीं है तो उनको हम सभी लोग और सभी विद भारती परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: और हमारी सखी ने भी एक
1: कुछ लिखा है, बताइए हमारी सखी ने क्या लिखा है।
2: इन्होंने गाने की एक लाइन लिखी है कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना। दुखद समाचार, दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर अब इस दुनिया में नहीं है। आज 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है।

0: अपनी आवाज़ का जादू बिखेरने वाली दिग्गज प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर का आज निधन हो गया है। और उन्होंने इतने साल उम्र मुंबई में स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और उन्होंने पहले सुमन हेमदी नाम से गाने गाए थे, हालांकि
1: हाँ
0: शादी के बाद उन्होंने सुमन कल्याणपुर के नाम से अपनी पहचान बनाई और गीतों को आवाज़ दी है।
1: आवाज़ थी बिल्कुल, और उनकी आवाज़ हमने जन जन तक पहुंचाई रेडियो के माध्यम से। तो
0: जी
1: विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं
0: जी
1: और

0: आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक
1: जी,
0: है।
1: जी
0: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो

0: हाँ तो मंजरी, आज हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं, हमारी सखियाँ और सखा जानना भी चाहते होंगे।
1: बिल्कुल, तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के व्यंजन बनारस का, मंगौड़ी वाला मटर का निमोना और धनिया की मट्ठी, इसके बारे में बात करेंगे। और वैश्विक अभिभावक दिवस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और विश्व दुग्ध दिवस भी आज है, तो दूध तो सभी जानते हैं कितना अच्छा होता है सभी के लिए पीना, बच्चों के लिए खासकर बहुत ज़रूरी है, तो इस पर चर्चा करेंगे। और कथा सुधा के अंतर्गत आभूषण भाग एक, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ये आज सुनाई जाएगी और इसका भाग एक है, तो हम लोग इस कहानी का आनंद लेते हैं।
0: चलिए तो पहले ही गाने सुन लेते
1: जी।
0: हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण।

0: आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाकवाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये चमक दमक, कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नववधू पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती,
1: मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया है।
0: शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधु को देखने गई थी। उसके सामने ही वो मंत्र मुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वो जब से लौट कर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का सोलहों आने अधिकार था, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोगलिप्सा और अमानुषिक मदांधता ने उनकी आंखें खोल दी थीं। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे, पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वो विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने व्यथित होकर कहा,
2: तो माता पिता से कहा होता, सुरेश से ब्याह कर देते और वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे।
1: तो गाली क्यों देते हो?
2: गाली नहीं देता, बात कहता हूं। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह।
1: लजाते तो नहीं, उल्टे और ताने देते हो।
2: भाग्य मेरे वश में नहीं है और इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं।
1: ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे।
2: तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है।
1: सभी को होता है, मुझे भी है।
2: अपने को अभागिनी समझती हो?
1: हूँ ही, समझना कैसा, नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता।
2: गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्य

0: पति समझने लगोगी?
1: तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर ही बैठा है।
0: नहीं, सच कहता हूं, बनवा दूंगा, बनवा दूंगा, लेकिन कुछ दिन सबर करना पड़ेगा।
2: समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं, सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी, निश्चय किया या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वो चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता, कंचन के पाश ही से बंध सकता है। पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में कितना साहस है जो लीक से जौबर हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था, उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्म त्याग ही का आधार था। वो पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही, फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर ये मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा, अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हेतु है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि ये रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातः काल सेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे, दिन भर दम भर पर गांजे चरस और तंबाकू के दम लगाते थे, अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब का भी शौक था, पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी के देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई, धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। ये प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है, सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गई थी, वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था।
3: यहाँ की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था।
4: अच्छा,
3: कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे, अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। न कोई लड़ाई, न बात, न चीत। रात को औरत न जाने कहाँ चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है, कैसे जिएगा भगवान ही जाने।
0: गहने बनवाता था कि नहीं?
3: रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता। गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम छम की आवाज से कान भर जाते थे।
0: जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि नारी ही बेवफा होती है।
2: इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह

0: बोला,
1: चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था। वह तुम्हारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है।
2: हाँ है तो, मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं।
1: उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा।
2: तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया?
1: चौधरी, मैं कोई गवार हूं क्या? समझ गया, कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं,
0: अच्छा
1: जसोदा पांडे है, बाप का नाम सुखू बताया, और घर जिला झांसी में। पूछने लगा यह कितने दिन से रहता है। मैंने कहा कोई 10 साल से। तब कुछ सोचकर चला गया। मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए मैं तुम्हें दिला दूं। मैंने सोचा आप तो 1,000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपए दिलाने को कहता है। फटकार बता दी।
2: मगर जो 200 रुपए देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते, क्यों धत तेरे लालची?
1: 200 रुपए नहीं, 2,000 भी देता तो ना बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो, जब जी चाहे परख लो।
0: मजदूरों में यूं वाद विवाद चलता रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वो सोचने लगा,
2: अब क्या करूं? जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब मैं किसका भरोसा करूं? नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहीं का ना होगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5,000 हो जाते और शीतला की इच्छा भी पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3,000 ही होंगे, इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर, अभी चलूं, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है, आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा न रहूंगा। वहां कौन पूछता है, आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं। वहां तो गहनों से प्रेम है।
0: इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधू मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वो अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती। नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर

0: और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदमी दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार कथा सुधा में।
2: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
5: हाँ तो मंजरी, कल सखी सहेली का जन्मदिन है और लड्डू तो हमको कल मिलने ही वाले हैं।
6: बिल्कुल मिलने वाले हैं। हाँ, और
5: हिमानी शिवपुरी हमारी बतौर मेहमान कल आने वाली हैं और उनका सजीव प्रसारण कल
6: और हम लोग मिलकर करेंगे उनका स्वागत और हमारे श्रोता साथ में मिलकर सुनेंगे प्रोग्राम और भेजेंगे बहुत सारी कमेंट्स, विचार,
5: शुभकामनाएं
6: भेजेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा सब मिल के एक समय पे इकट्ठे होंगे।
5: हाँ, तो ये कार्यक्रम जो है 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। हिमानी शिवपुरी हमारी कल की मेहमान है, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। फेसबुक पेज पर आप बराबर बने रहें और अपने विचारों से अवगत करते रहें और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं और खास तौर से हमारे जो सखी सहेली की कल वर्षगांठ है उनको शुभकामनाएं देने के लिए आप लगातार हमसे बने रहें, सभी सखी और सखा तैयार होकर
6: क्योंकि हम लोग भी तैयार होकर कल आएंगे पर्दे बनाने।
5: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तैयार रहेंगे कल। और अब तो समय हो गया है एक अंतराल लेने का। मंजरी, पहले अंतराल लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं।

0: हाँ तो मंजरी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना है।
1: जी
0: और जीवन में जब हम किसी सुंदर चीज़ों के
1: जी
0: आसपास होते हैं ना, तो ज़िंदगी थोड़ा आसान भी लगती है।
1: बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरत होते हैं हमारे वो रिश्ते भी जो हमें जन्म देते हैं, जिन्हें हम माता पिता के रूप में जानते हैं।
0: बिल्कुल
1: आँख खुलती है वो उंगली हम उनकी पकड़ते हैं, उनका स्पर्श सुख पाते हैं
0: जी
1: माता पिता के रूप में, तो वो हमारे लिए बहुत ही अजीज होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। और इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए वैश्विक अभिभावक दिवस ये जो है मनाया जा रहा है। 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य माता पिता होने के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका में प्रगति जागरूकता बढ़ाना है। तो कहना चाहिए मंदाकिनी जी, आज के दिन हम अपने माता पिता के लिए एक जश्न जैसा घर में कुछ सेलिब्रेशन करें
0: करना चाहिए ना।
1: और
0: हाँ
1: हाँ उनका सम्मान करें, उनके चरण छुएं, और आप जो भी उनके लिए
0: कर
1: पसंद
0: सकते
1: का
0: हैं।
1: खाना बना
0: हाँ
1: सकते हैं वो बनाएं, उपहार में उन्हें चीजें दें, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा,
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और जो माता पिता के सबसे करीब होते हैं वो हमारे माता पिता ही जो हमारे सबसे करीब
1: जी
0: होते हैं। और
1: जी
0: बच्चा जब घर से कई बातें सीखता है और जैसा अपने माता पिता को करते देखता है वैसा ही व्यवहार उनकी उसकी आदत में भी आता है। और कहना चाहिए कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं,
1: जी
0: हमारी पहली पाठशाला होते
1: बिल्कुल
0: हैं। और इसलिए बच्चों के सामने हमेशा कहा जाता है कि अच्छा आचरण करें ताकि आपके बच्चे भी जब आपको देखें तो वैसे ही बड़े होकर आगे अपना उदाहरण पेश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिन माता पिता और अभिभावकों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है। बच्चे के जीवन में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। केवल पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उनके जीवन जीने की सही दिशा, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं। और वो अपने बच्चों के सुख

0: के साथ मंदाकिनी जी हमेशा खड़े रहते हैं और एक बच्चे की सफलता के पीछे उसके अभिभावकों का त्याग, मेहनत और समर्पण छिपा होता है। वे अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
1: हाँ बिल्कुल। और आज की अगर हम बात करें मंजरी, तो आज के आधुनिक समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच थोड़ा संवाद कम हो रहा
0: जी,
1: है ना।
0: और उसका कारण भी है मोबाइल।
1: मोबाइल और सोशल मीडिया,
0: जी
1: ये हमारी जिंदगी बन गए
0: जी
1: हैं, है ना। तो रिश्तों में दूरी बढ़ गई है। ऐसे में क्या है कि वैश्विक जो अभिभावक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: और ये दिन आज का केवल ये नहीं कि आपने हमें जन्म दिया धन्यवाद कि अगर हमने इतिश्री कर दी,
0: नहीं नहीं
1: ये
0: नहीं
1: वो दिन नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये दिन हमें
0: जी
1: संदेश देता है। और हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका प्यार तो निस्वार्थ होता है और उनका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए।
0: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, हम कह सकते हैं कि माता पिता वो छांव हैं जिसके रहते जीवन की हर धूप हल्की लगती है। उन्हें सुरक्षा, स्नेह और अपनापन में उनसे मिलता है। जैसे तेज धूप में पेड़ की छाया राहत देती, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं। उन्हें उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही बच्चे सही राह पर चलना सीखते हैं। और मंदाकिनी जी, जब पुराने समय की हम बात करें तो उस समय ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में सभी सदस्य होते थे। तो माता पिता तो घर बच्ची की देखभाल करते थे, लेकिन दादा दादी हुए, नाना नानी या चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग परिवार के जितने भी लोग होते थे, बुआ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बच्चे का ख्याल रखते थे। तो बच्चे कैसे पल जाते थे
1: पता ही नहीं
0: पता ही नहीं चलता था।
1: लगता
0: और बच्चों के अंदर सबके गुण आते थे। कोई कहानी
1: था।
0: सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके बातें सिखाता था, कोई कर्तव्य करना सिखा रहा है तो कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई कह रहा सुबह जल्दी उठो। तो ये जो रोक टोक का टाकी बच्चों को होती थी सिखाने की, कहना चाहिए, और नियम अनुशासन सिखाने की,
1: बिल्कुल
0: तो उससे बच्चे सीखते थे। और सभी उनके माता पिता के ही समान थे उस समय।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो सभी लोग हम बच्चे की कद्र करते थे, बच्चे का लालन पालन कैसे होता था माता पिता तो को पता नहीं चलता था।
0: जी
1: लेकिन मंजरी आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं,
0: जी
1: जहाँ तक है एकल परिवार हो गए हैं। और ऐसे में बच्चे को जो नौकरी करने वाले माता पिता हैं वो किसी केयर टेकर के उसमें
0: जी
1: छोड़ जाते हैं। और मुझे खुद भी याद है, मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकर थे, सरकारी नौकरी करते थे और हमें किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे। वो किस तरह से हमारा लालन पालन करती थी ये तो भगवान ही जाने।
0: जी सही
1: और
0: बात है।
1: होता था कि जब माता पिता आते थे बड़े परेशान आते थे, क्योंकि जो केयर टेकर है वो उस तरह से तो नहीं पाल सकती
0: बिल्कुल
1: बच्चों
0: नहीं,
1: को
0: बिल्कुल नहीं,
1: जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य
0: सदस्य
1: पालते
0: पालते। और
1: हैं।
0: देखिए, हमारे बहुत सारे साथियों ने भी संदेश लिखकर भेजा है। एक लिखते हैं कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहाँ से हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उंगली छोड़कर संभलना। दुनिया का हर रिश्ता कुछ ना कुछ मांगता है, पर माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान के प्रति जीवन भर निस्वार्थ स्नेह रखते हैं। उनका प्रेम किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जवानी में परछाई की तरह साथ रहना और वृद्धावस्था में भी संतान के प्रति चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। बहुत प्यारी सी
1: बहुत
0: बात आपने
1: सुंदर बात
0: लिखकर
1: लिखी
0: भेजी।
1: है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों बहनों को बहुत सबने नमस्कार लिखते हैं। आज अभिभावक दिवस है, इस दिन विशेष का बड़ा महत्व है। इस दिन का आज के दिन दुनिया के सभी माता पिता के साथ साथ सभी अभिभावकों को बच्चों के लालन पालन के साथ उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना है। माता के लिए गुजराती मुहावरा है, माई माँ बाकी बगा वगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जग उजड़ा हुआ यानी वीराना सा लगता है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात लिखी है। ऐसे ही हमारे साथी लिखते हैं कि आज अभिभावक दिवस पर विशेष बधाई। अभी तो कोई कलम नहीं बनी है जो माता पिता पर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख सके, ये तो ईश्वर के बस की भी बात नहीं। मेरी हर खुशी का रास्ता माँ से होकर जाता है और मुझे दुनियादारी का सबक मेरे माता पिता सिखाते हैं। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है।
1: वही एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता का ही तो प्यार है जो कभी नहीं बढ़ता। जीवन रूपी खुले आकाश में उन्मुक्त पक्षियों के जैसे उड़ने की सीख और हौसला देने वाले वे ही हैं। रोते रोते हंसा देते हैं, दुनियादारी की बातें समझा देते हैं। उनकी ही दुआ से हम बड़ा नाम करते हैं और इस दुनिया पर राज करते हैं। असफलता में भी मुड़कर मत देखो पर अपनी गरिमा को भी संभाल कर रखो, ऐसी हिदायतें उनसे ही मिलती हैं। उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं, उनकी सुनाई कहानियों की खुशबू पूरे जीवन भर महसूस करते हैं। और वैश्विक अभिभावक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये हमें देते हैं। तो अब एक गीत सुन ले।
0: जी

तो देखिए, अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस है और हम सभी जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी के लिए दूध बहुत आवश्यक है। और विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। ये दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से

0: गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और मंजरी, विश्व दुग्ध दिवस केवल हम इसे कोई उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं, बल्कि एक आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है, जो अरबों लोगों का पोषण करता है। और यही दूध आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है, जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है।
0: बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की जो इस वर्ष की थीम है, महिला किसानों का सम्मान है। ये रोजाना दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को एक बेहतरीन स्रोत है। और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ मंदाकिनी जी, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कुछ बच्चे को परेशानी हुई तो तबीयत खराब हुई तो सीधे वो दूध को ही बोल देते हैं, नहीं दूध बंद कर दो, इसका दूध नहीं पिलाना है। तो बच्चों के मुख से दूध छीनना बहुत गलत बात होती है। आप पहले उसका चिकित्सीय इलाज कीजिए, डॉक्टरी इलाज कीजिए कि उसको क्या समस्या है, तब आप सोचिए कि दूध
1: नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है।
0: कुछ समय तक तबियत खराब है तो दूध आप नहीं ना दें, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा जीवन पर्यंत दूध बंद कर दें, ये गलत बात।
1: हाँ ये बिल्कुल गलत है। और हमें डॉक्टर खुद नहीं बनना है ना, चाहे कोई भी अपना भी डॉक्टर हमें खुद नहीं बनना चाहिए। हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए कि क्या दूध हमें नुकसान कर रहा है। दूध हमारे लिए कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए कुछ लोगों को दूध नहीं सूट करता तो वो नहीं पीते हैं, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक कारण होने चाहिए, केवल ये नहीं, वहम नहीं होना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि अभिभावक दिवस के साथ साथ आज विश्व दुग्ध दिवस हम मना रहे हैं। दूध एक ऐसी जरूरत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है। वैश्विक आहार में दुग्ध का बड़ा महत्व रहा है। इसे संपूर्ण आहार माना जाता है, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, और इसके बिना सुबह की चाय भी नहीं बनती है, आए हुए मेहमानों का स्वागत नहीं होता। और इसके विधिवत उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। अपनी हड्डियों के साथ साथ डेयरी उद्योग को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए।
0: और एक साथी लिखते हैं, दूध भी हमारे जीवन का अभिन्न चीज है, खासकर के मेरे लिए तो है, क्योंकि दूध के बिना मेरी मन पसंद अदरक इलायची वाली चाय नहीं बनती।
1: अरे हमारी तो ये भी चाय के शौकीन है
0: जी। और एक लिखते हैं, देश में दूध उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि दूध को अक्सर प्रकृति का संपूर्ण भोजन माना जाता है, क्योंकि इसमें मानव के शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन्स का प्राकृतिक संतुलन होता है। दूध में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो है प्रोटीन, शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन ए, डी और B12, आंखों, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा स्तर को के लिए ये बेहतर है। बेहतर रखता है कहना चाहिए।
1: बिल्कुल अच्छा लिखा है। और साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो दूध है वो भोजन में महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं आता, लेकिन दूध को ठंडा पदार्थ के रूप में पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में।
0: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, देखा जाए अगर बच्चे आपके सीधा डायरेक्ट दूध नहीं पी रहे हैं तो आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची मिला के हम पिला दें, या फिर आप दूध को खीर में कन्वर्ट कर दें, या चावल की खीर या सूजी की खीर में भी आप कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट पीस करके मिला के कुछ चेंज कर करके, या ठंडे शरबत उसमें मिक्स करके भी, आप गुलाब का शरबत मिलाकर भी आप दूध किसी ना किसी रूप में आप बच्चों को दिला सकते हैं।
1: खासतौर से छोटे बच्चे और किशोरावस्था वाले जो बच्चे है ना, ये थोड़ा परेशान करते हैं कि मम्मी दूध नहीं पीना है, तो उन्हें दूध को तरह तरीके से करके आप पिला सकते हैं, ताकि फाइनली दूध तो बच्चे के पेट में जाना ही चाहिए।

0: तो भाई मंजरी दूध की हम बात कर रहे थे और हमारे जो चाय वाले श्रोता हैं, जो हमारे ही जैसे हैं, चाय पसंद करते हैं, चाय मिल जाए और साथ में ये बनारस की मटर मुंगोड़ी वाला निमोना या नमकीन मिल जाए तो फिर कहने ही क्या होते हैं।
1: हमारी सखी ने ये रेसिपी लिखकर भेजी तो हम वही पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निमोना, मुंगोड़ी या मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी, ताजी हरी मटर, पिसे हुए मसालों और मूंग दाल की मंगोड़ियों से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक करी है। ये उत्तर प्रदेश के घरों में सर्दियों के मौसम में चावल के साथ बहुत चाव से खाई जाती है। इसकी सामग्री इन्होंने लिखी, हरी मटर 2 कप, मुंगौड़ी एक कप, आलू चाहिए आधा कप, हाँ। 2 लंबे पतले कटे हुए, मसाला पेस्ट जिसका है हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च, मिक्सी में पिसा हुआ होना चाहिए ये। और तड़का के लिए आप जीरा, हींग और तेजपत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगौड़ी को और आलू को भून लें, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, मूंग की मंगौड़ियों को सुनहरा होने तक भूनें और निकाल कर रख लें। उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रखें, मटर भूनें, बचे हुए तेल में दरदरी पिसी हुई मटर डालें और मध्यम आँच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर लें, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें हींग जीरा तड़का लगाएं। अब कटा बारीक प्याज, हरा धनिया, लहसुन वाला मसाला पेस्ट डालकर तब तक भूने जब तक तेल अलग ना होने लगे। भुनी हुई मटर, साबुत मटर, तले हुए आलू और मंगौड़ी डालें, सभी को अच्छी तरह मिला और इसमें आवश्यकता अनुसार गर्म पानी और नमक डालें। कढ़ाई को ढक कर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें जब तक कि मंगौड़ी और आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाए। अंत में ऊपर से गर्म मसाला छिड़कें। आपकी गर्मा गर्म यूपी स्पेशल मंगौड़ी और निमोना तैयार है।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा मंजरी।
1: बिल्कुल, क्योंकि मटर और मंगौड़ी दोनों ही बहुत स्वाद से भरपूर होते हैं और मेरी तो बहुत फेवरेट है मंदा।
0: बिल्कुल, और मैं धनिया वाला जो मट्ठी है ना, धनिया वाली मट्ठी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर हमारे श्रोता पसंद करती हैं सखियां, वैसे तो उन्हें बनाना आता होगा पर मैंने भी इसको बना के देखा था, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी ये। आप मैदा ले लें 2 कप, हरा धनिया ले लें, कटा हुआ साबुत धनिया ले लें और 2 चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया ले सकते हैं, घी ले सकते हैं तेल मोयन के लिए, जीरा ले लें, 1/6 चम्मच अजवाइन ले लें और काली मिर्च ले लें और दरदरी कुटी हुई नमक और तेल तलने के लिए और साथ में पानी। अब आप स्वादानुसार ये सब चीज़ें ले सकते हैं कम या ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगी हो सकता है आप उसे ज़्यादा पसंद करते हो। फिर आटा को तैयार करें। एक बड़े बर्तन में मैदा ले लें, इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, नमक और मोयन और पिघला हुआ घी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें। सभी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रच बस जाए और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर उस

0: को मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा आप गूंथ लें। इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर आप रख दें। फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को हथेली से दबाकर चपटा करना है, इसे ज़्यादा नहीं पतला करना है, ना बेलना नहीं है। एक फिर दबाकर कांटे की मदद से मट्ठी के दोनों तरफ थोड़ा छेद कर लें पांचे, और इसको गर्म गर्म तेल में तलें। और धीमी आंच में तलने के बाद जो कुरकुरी मटरी निकल के आएगी ना, वो गर्मा गर्म चाय के साथ तो
1: स्वाद ले। जी, गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: और अब मंजरी, सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त तो खत्म हो चला है, इस कार्यक्रम से हम इजाजत लेते हैं। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं।
1: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ, मेरा हाल बताओ।
0: जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खुगे।
2: दांतों का जमाना, प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना।
0: इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
3: जाओ जाओ जाओ किसी वैद को बुलाओ।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हाल ही में डेंटिस्ट डे मनाया गया और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं मुंबई के डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खुगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका।
4: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा। बहुत सारी जो मिथ्स है उनके ऊपर से हम लोग पर्दा उठा पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ है, बहुत सारे लोगों के मन में खाम ख्यालियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत हम करते हैं दूध के दांतों से।
4: ठीक है।
0: जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने दांत होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं, लेकिन अमूमन परिवार में उनके टूटने का इंतजार किया जाता है कि ये दांत निकल जाएंगे।
4: हाँ जी।
0: तब
4: हाँ।
0: जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे।
4: सही है।
0: जरा इसके बारे में तफसील से बताइए।
4: जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है। ठीक है। दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए, और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजीली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है तो चॉकलेट्स वगैरह बच्चे इजीली खा लेते हैं, तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है, ताकि जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज के होते हैं तो उनके लिए जगह बनाए, प्लस उनको डायरेक्शन दिखाए, जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे वो एक सही तरीके से अपनी पोजीशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है। और वो क्यों होती है? क्योंकि आने वाले दांत, जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं, वो सारे डायमेंशन में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं। तो वो जगह, जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है, वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी जाती है।
0: अच्छा।
4: जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज अगर छोटी है पहले से ही, तो कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं बचपन में ही, ताकि जबड़े की साइज नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स, या फिर कड़क बूंदी के लड्डू, वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर, जो अपनी पारंपरिक चीजें है, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज है।
0: लेकिन बच्चे तो ये चीजें खाते ही नहीं है।
4: बच्चे बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे। उनको खिलाना, उनको उन चीजों का महत्व समझाना, वो पेरेंट्स का काम है।
0: जी
4: ठीक है। तो इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज, अगर दांतों की बात करूं तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे और वो कहां जाएंगे?
0: पेट में।
4: पेट में जाएंगे तो पेट की बीमारियां, बार बार लूज मोशंस होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बच्चों में, बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं। इवन अगर जनरलाइज में बताऊं, ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटीज कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स ऑल्सो। बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं। वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं पे तो जाके लॉज करेंगे और उस जगह की वो बीमारियां फैलाएंगे।
0: अच्छा, ये जो दूध के दांतों की आपने बात की, तो जब बच्चे अपने तरीके से ब्रश करने लायक हो जाते हैं तब से माँ बाप को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह की आदतें बच्चों में डालनी चाहिए?

0: सबसे पहली बात, ब्रशिंग कब चालू होना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग मुंह में जैसे ही पहला दांत दिखता है तब से चालू हो जानी चाहिए।
1: जी
0: उसके पहले मतलब 6-8 महीने तक तो कोई दांत आते नहीं है, उसके बाद ही दांत आने चालू होते हैं। तो उसके पहले मतलब दांत आने से पहले भी मसूड़े क्लीन करना जरूरी है, मसूड़ों की मसाज करना जरूरी है ताकि आने वाले दांत जो है वो इजीली आए, बच्चों को तकलीफ ना हो। क्योंकि दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है, तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर मसाज मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे। और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट दिन में 1 या 2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है वो जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है, कि जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ, उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक

0: जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है, तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर
1: रास्ता
0: मसाज,
1: निकालेगा।
0: हाँ मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे, और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट दिन में 1 या 2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है वो जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है, कि जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ, उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गॉज होता है, गॉज पीस, कॉटन की तरह जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं जो बांधी जाती है, गॉज पीस बोला जाता है, वो स्टराइल गॉज पीसेस मिलते हैं मेडिकल शॉप में। अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुल रहा या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप वो सिंपल गॉज पीस को पानी में डुबा के गीले गॉज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से,
1: छोटे बच्चों के लिए
0: छोटे
1: ये भी
0: बच्चों के लिए
1: तरीका है।
0: एकदम, हाँ एकदम छोटे बच्चों के लिए जिनके 1 या 2 दांत या 4 दांत आए हुए हैं। फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे तो उंगली में ब्रश जो मैं बोल रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हो। अभी उसमें 0 to 3 ईयर्स मतलब बचपन पैदा होने से लेके 3 साल तक एक अलग टूथपेस्ट आता है, जो बच्चे इंजेस्ट करे खा ले तो भी कोई उनको तकलीफ ना हो,
1: बिल्कुल।
0: उसकी जो बनावट रहती है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों जरूरी है, क्योंकि दांतों में बनने वाली कैविटीज को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहां पे आधे दांत दूध के होते हैं आधे होते हैं परमानेंट के, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक, तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पहले तो उनको बचपन से ही ये उंगली वाले ब्रश से अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना जरूरी होता है, वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ ब्रशिंग इज मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ अभी मुद्दा निकला ही है तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज करे,
1: ये हम सभी के मामले में कर रहे
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ
1: चाहे
0: हाँ
1: बच्चे हो चाहे
0: बच्चे
1: बड़े
0: हो,
1: हो।
0: बच्चे हो या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है, ठीक है। वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटेलिटी है जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के
1: टेढ़े मेढ़े ना हो जाए।
0: टेढ़े मेढ़े घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले ले, तब तक हम लोग चेंज नहीं करते, बट ऐसा नहीं होता है। माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी ब्रिसल्स में कि वो फेड हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए, तो आपने ब्रश को चेंज करना है। तो उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है, जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजिली मिल रहा है, क्रेविंग करते हैं बच्चे, स्कूल्स भी अभी ज्यादा पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, तो वो चीजें खिलाए नहीं खिलाए, बच्चे हैं उनका खाना हक बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूँ वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड, फिर
1: चॉकलेट्स, बेकरी
0: चॉकलेट,
1: आइटम्स,
0: स्वीट्स, तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली कैविटीज नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उनको दे सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, 15 मिनट का विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने जो चीजें उनको पसंद है। उसमें बिस्किट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गए, वेफर्स आ गए, 10 पैकेट आपके चिप्स के आ गए, कुछ भी सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने, और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना है वैसे खाओ, फिर
1: अरे
0: दोनों
1: बाप रे,
0: हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ,
1: ठीक है।
0: चलेगा।
1: हाँ
0: लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमिडिएटली ब्रश करवाना है।
1: ओके
0: सो नॉर्मल 2 टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग जंक फूड के बाद, इससे कैविटीज नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही हैं
1: तो हमको कहीं बाहर नहीं जाना
0: क्रेविंग
1: है।
0: नहीं होता है वो
1: यस
0: बाहर इजीली जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ जब आप ये उठा के रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखना कि एक डब्बा रहे जो उनको दिखे, एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे वो वापस खाने बैठ जाएंगे,
1: बिल्कुल।
0: तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, फिर आगे की बातें करते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो बताइए आपको कौन से गायक बहुत पसंद है?
0: मुझे पुराने गायक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे किशोरदा जी, किशोर कुमार जी।
1: क्या बात है, तो पहला गाना कौन सा चुन रहे हैं आप?
0: पहला गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है वो साथी।

0: ये गाना हमने सुना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा लग रहा था जैसे ये दांतों के लिए कहा जा रहा हो, क्योंकि क्योंकि दांत अगर नहीं हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए।
1: मुश्किल हो जाती।
0: दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है तब डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की।
1: हाँ जी।
0: कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए, तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो।
1: तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कुदरती तौर पे वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है। नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर येलोइश टू ब्राउनिश होता है।
0: अच्छा।
1: उसके ऊपर कोटिंग आती है इनामल की।

0: डेंटिन की थिकनेस होती है 4 से 6 mm तक, उसके ऊपर रहती है 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस।
1: ठीक है।
0: तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया है।
1: बिल्कुल।
0: इसके लिए कैविटी जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तब कभी दर्द नहीं होता है। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है।
1: ओके।
0: कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते हैं।
1: लेकिन नस तक?
0: नस तक अभी तक पहुंचा नहीं है।
1: जी
0: लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरियाज अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिंझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिंझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी हम
1: बिल्कुल
0: लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं,
1: बिल्कुल।
0: नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है, तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है, और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से ही होता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो बोलते हैं वो तब होना चालू होता है।
1: जिसकी हमने चर्चा की,
0: एग्जैक्टली
1: डॉक्टर साहब मर गए बचा लो।
0: हाँ जी। उसमें भी कुछ लोग काउंटर सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं, मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं। अभी वो नस सड़ गई है।
1: हाँ,
0: नस सड़ने के बाद नीचे हड्डी के नीचे सेप्टिक जमना चालू होता है, उसको
1: अरे
0: डेंटल
1: बाप रे,
0: एब्सेस बोलते हैं।
1: ये बहुत खतरनाक है।
0: यस। फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है, और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है, पर
1: अच्छा,
0: असलियत ऐसी नहीं है। असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम 1.5 गुना दांत अंदर
1: नीचे की
0: होता
1: तरफ
0: हो,
1: होता है।
0: हड्डी में
1: हाँ
0: बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीजें चबा पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीजें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीजें खा पी रहे हैं, वो जरा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। तो ये मिथ लोगों ने थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे 1.5 गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है,
1: बिल्कुल
0: तब
1: बिल्कुल,
0: जाके वो खड़ी रह पाती है।
1: सेम
0: नहीं,
1: बात है।
0: सेम बात यहाँ पे है। फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा, वही प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है। तो ये चीज है। तो ये कैविटीज जब नस तक पहुंच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं कर रही, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटीज शुरुआत में स्टार्ट होती है, बैक्टीरियाज की वजह से होती है। ये बैक्टीरियाज कहाँ से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज है उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है। लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तब सड़न बढ़नी चालू होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स, जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं। और ये कब होता है? दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक। हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट्स को जल्दी दोष दे देते हैं। हाँ, उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी थूक है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 to 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमिडिएटली विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है। मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है। तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमोस्फियर में जो बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए, या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरियाज है, वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं।
1: और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में।
0: एग्जैक्टली। नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही घोलते
1: हाँ
0: बैठे हो।
1: जी,
0: रात में नॉर्मली जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, तो अपना जो थूक है, सलाइवरी सिक्रीशन है, वो भी कम हो जाता है। नहीं तो सुबह तक, वो भी कुदरती देन है, वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: ठीक है। तो वो सिक्रीशन कम होता है, तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं वो भी कम हो गए। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, नेचुरल रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता है। इसके लिए रात में जो लंबा समय, 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं, तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं। इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है।
1: हाँ, बिल्कुल। और सुबह उठते ही ब्रश
0: ब्रश
1: करना
0: करना
1: बहुत
0: जरूरी
1: जरूरी है।
0: होता
1: डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन की चल रही हैं और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कैविटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीजें हैं। आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दांत बड़े मजबूत देखे गए हैं। हमारी दादी नानियां कड़क से कड़क

0: कड़क चीज, मतलब आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा, उससे कहीं ज्यादा कड़क चीजों को मजे
1: अखरोट
0: से,
1: जैसे।
0: अखरोट जैसी चीजों को, गन्ने को मजे से छील के खा ले रही।
1: हाँ जी,
0: आज के बच्चों में तो वो, उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों वाले जमाने में आ गए?
1: अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा यहाँ पे, कि प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है, सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल्स और जॉ बोन, हड्डी जो होता है जबड़े का, उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा
0: जैसे पहले के बुजुर्गों का है।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था, फाइबर्स बोलते खाने में, बेसिक है। मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहां क्या करते हैं हम लोग, मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है, तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है। सेम फेशियल मसल्स का होता है, जो चबाने वाले मसल्स है उनमें भी वही चीज है, जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगी, और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों का पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स, ये बना है ये खाना पड़ेगा,
0: बिल्कुल
1: ये रूल होता था घर का, आज ऐसे होता है। मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी, तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहां पे एक विलन का रोल ले लेता हूँ कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए।
0: ये तो खाना ही पड़ेगा।
1: हाँ जी, तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए,
0: हाँ, उनके मुताबिक बन रहा है।
1: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए, हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। भी इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक आध साल पहले की बात है, या फिर बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। 5 साल की बच्ची को लेके आए थे, दांतों में कैविटीज थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब उसका एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन उनका जवाब बहुत यादगार था मेरे लिए, कि नहीं, आजकल बच्चों को पूछना पड़ता है,
0: ओहो,
1: अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे तो। मैंने उनको भी ये चीज हंसते हुए बोल दी थी कि ये थोड़े दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी।
0: बहुत सही है, बहुत सही है।
1: तो ये जो दुलार है ना
0: ये बहुत
1: इस,
0: नुकसानदेह है।
1: हाँ मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए, इसके लिए मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके बाद
1: अच्छा,
0: हम रूट कैनाल की बात करेंगे।
1: श्योरली। सो अभी किशोरदा का ही गाना सुनेंगे, मेरे नैना सावन भादो,
0: क्या बात है, महबूबा
1: क्योंकि
0: फिल्म
1: दांतों
0: का
1: में
0: गाना।
1: दर्द होता है तो नैनों से तो सावन
0: हा
1: बरसना
0: हा
1: ही है।
0: हा सुनते हैं।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी पटना है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 हुए हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की दूसरी सभा। हमारी सभा में आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को प्रणाम। अभी आपके साथ मैं हूं जया। अभी से लेकर रात्रि के 11:10 तक हम आपके साथ रहेंगे। अपनी सभा में हम आपके लिए ढेर सारे कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। कार्यक्रम का आगाज करेंगे युववाणी से। यह कार्यक्रम विशेषकर हमारे युवा श्रोताओं के लिए है, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: ज़रूरी नहीं हर लड़ाई जीत ही ली जाए, ज़रूरी ये है कि लड़ना छोड़ा ना जाए, क्योंकि ज़िंदगी उन लोगों को याद नहीं रखती जो डर कर रुक गए, ज़िंदगी उन्हें याद रखती है जो टूट कर भी चलते रहे।
1: बिल्कुल सही कहा रिचा, यूथ इज़ अ फेज ऑफ टर्मोइल, जहाँ युवा पीढ़ी ना जाने कितनी उलझनों में घिरी हुई होती है। कभी ऐसा लगता है कि जगूं कभी सोऊं, कभी पढ़ूं कभी रोऊं, ये ऐसा फेज़ है ना जहाँ हर चीज़ का प्रेशर एक यूथ पर होता है। ऐसे में उस यूथ की जिम्मेदारी बनती है कि वो लड़ना ना छोड़े। हो सकता है कि वो बहुत सारी जगहों पर हार जाए, लेकिन उसके मन में एक रोशनी की किरण होनी चाहिए कि सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे आगे चलकर अच्छा होगा।
0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रचा।
1: और मैं हूं नीलिमा। दोस्तों आज है सोमवार, यानी हफ्ते की एक नई और ऊर्जावान शुरुआत। आज 1 जून है और आप जानते हैं ना, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज है वर्ल्ड मिल्क डे, यानी विश्व दुग्ध दिवस भी।
0: बिल्कुल नीलिमा, आज के दिन हम डेयरी सेक्टर के महत्व और दूध से मिलने वाली पोषण को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे सोमवार है तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि आज के हमारे कार्यक्रम में क्या क्या खास है।
1: हमारे आज के पिटारे में है तकनीकी सोमवार, जिसमें हम जानेंगे आज की कुछ लेटेस्ट टेक अपडेट्स।
0: और अंत में, जैसा कि आप जानते हैं कि सोमवार का मतलब है कुछ नया सीखना, तो आपके लिए लेकर आएंगे रोचक तथ्य, स्पोर्ट्स अपडेट, जहां खेल जगत की हलचल पर भी बात करेंगे।
1: आज के इस दिन हमें याद करना होगा हमारे देश के एक महान व्यक्तित्व की, यानी आज भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी की पुण्यतिथि है।
0: जी हाँ नीलिमा, संजीव रेड्डी जी ने भारतीय राजनीति में एक लंबा और शानदार सफर तय किया था। वे न केवल भारत के राष्ट्रपति रहे, बल्कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी देश की सेवा की। एक किसान परिवार से निकलकर राष्ट्रपति पद तक उनका सफर वाकई प्रेरणादायक है।
1: बिल्कुल, इनके बारे में और विस्तार से जानेंगे रिचा, लेकिन उसके पहले हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं हमारे कार्यक्रम का ये पहला ट्रैक।

0: वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम। आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त ऋचा और नीलिमा को आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में। उनके बारे में एक और दिलचस्प बात है जो आज की पीढ़ी को पता होना चाहिए कि वे युवा नेतृत्व के प्रतीक थे। जब वे 1956 में आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, तब उनकी उम्र बहुत कम थी। उनके राजनीतिक सफर को देखें तो उन्होंने राजनीति के हर स्तर को बहुत करीब से जिया था। एक विधायक से लेकर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और अंत में राष्ट्रपति, ये सफर बताता है कि कड़ी मेहनत और सही नियत का फल हमेशा मिलता है।
1: बिल्कुल सही कहा नीलिमा आपने। उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत संतुलन था। वे जितने सख्त और सिद्धांतवादी थे, उतने ही मृदुभाषी भी थे। आपातकाल के बाद के दौर में, जब देश के एक बड़े राजनीतिक बदलाव से गुजर रहा था, तब संजीव रेड्डी जी ने जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सदन की गरिमा को संभाला, वह आज के समय के लिए एक बड़ा सबक है। उन्होंने हमेशा कहा था, लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे सदन का होता है।
0: उनके बारे में रिचा एक किस्सा अक्सर सुनाया जाता है कि जब वे राष्ट्रपति बने तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन में मेहमानों की संख्या सीमित कर दी थी और सादगी पर जोर दिया था। उन्होंने अपने पद के वैभव का प्रदर्शन कभी नहीं किया। वे एक ऐसे किसान थे जो अपनी मिट्टी से कभी दूर नहीं हुए। उन्होंने ग्रामीण विकास और किसानों के उत्थान के लिए जो कार्य किए, उनका लाभ आज भी कई क्षेत्रों में दिखाई देता है।
1: और दोस्तों, उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था उनका त्याग। उन्होंने अपने पूरे करियर में कई बार ऐसे मौके देखे जब वे सत्ता के बहुत करीब थे, लेकिन उन्होंने हमेशा देश और सिद्धांतों को प्राथमिकता दी। 1977 में जब वे राष्ट्रपति बने, तो वो एक सर्वसम्मानित से लिया गया निर्णय था। उस समय का राजनीतिक परिदृश्य बहुत जटिल था, लेकिन सभी विपक्षी दलों ने उनकी ईमानदारी पर भरोसा जताया था। यह उनके व्यक्तित्व का जादू था कि हर कोई उनके नाम पर सहमत हो गया था।
0: सच में रिचा, आज के दौर में जब हम राजनीति में नैतिकता की

0: बात करते हैं तो नीलम संजीव रेड्डी जी का नाम सबसे ऊपर आता है। उनका पूरा जीवन सादा जीवन, उच्च विचार की साक्षात परिभाषा था। उनके निधन के बाद भी उनका नाम भारतीय इतिहास में उस निष्पक्ष और निडर नेता के रूप में दर्ज है जिसने कभी हार नहीं मानी।
1: आज हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में हम आज जहाँ हैं, उसमें ऐसे ही महान व्यक्तित्व के त्याग और विजन का बड़ा योगदान है। नीलम संजीव रेड्डी जी का जीवन हमें सिखाता है कि पद कोई भी हो, इंसानियत और ईमानदारी सबसे बड़ी पहचान होती है।
0: बिल्कुल ऋचा, हम आशा करते हैं कि उनके आदर्शों का प्रकाश आज की युवा पीढ़ी को भी सही दिशा में चलने की प्रेरणा देगा। आज युववाणी के इस मंच से हम उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला ट्रैक।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म अग्निपथ से सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत। दोस्तों अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं विश्व दुग्ध दिवस के बारे में, यानी वर्ल्ड मिल्क डे। आज 1 जून है और आज का दिन पूरे विश्व में एक खास उद्देश्य के साथ मनाया जा रहा है। आज है वर्ल्ड मिल्क डे, यानी विश्व दुग्ध दिवस।
1: बिल्कुल रिचा, दूध हमारे जीवन का वो हिस्सा है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारा साथी रहता है। आज के दिन का उद्देश्य ही यही है कि हम दूध के महत्व को समझें और इसके पोषण के प्रति जागरूक हों।
0: नीलिमा, अक्सर लोग सोचते हैं कि दूध सिर्फ एक पेय पदार्थ है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि इसे सुपर फूड क्यों कहा जाता है?
1: बिल्कुल सही कहा रिचा, दूध में कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, पोटेशियम, बी कॉम्प्लेक्स जैसे कई जरूरी तत्व होते हैं। ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, दांतों के लिए अच्छा है और मांसपेशियों की रिकवरी में भी मदद करता है।
0: तो चलिए अब जरा ये भी समझते हैं कि आखिर ये दूध बनता कैसे है। क्या ये प्रक्रिया सिर्फ गाय या भैंस के दूध देने तक सीमित है?
1: देखिए, विज्ञान की दृष्टि से देखें तो दूध का बनना एक बहुत ही जटिल और अद्भुत प्रक्रिया है। स्तनधारी जीवों में जैसे गाय या भैंस, दूध का निर्माण उनके मैमरी ग्लैंड्स में होता है।
0: बिल्कुल नीलिमा, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं तो जब गाय चारा खाती है तो वह पचकर ग्लूकोज और अमीनो एसिड में बदल जाता है। खून के माध्यम से ये पोषक तत्व स्तन ग्रंथियों तक पहुंचते हैं, जहां शरीर की कोशिकाएं इन पोषक तत्वों को प्रोसेस करती है और दूध का निर्माण करती है। इसमें पानी के साथ साथ फैट यानी वसा, लैक्टोज यानी शुगर और प्रोटीन्स जैसे केसीन का बेहतरीन मिश्रण होता है।
1: और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रकृति ने दूध को इस तरह डिजाइन किया है कि इसमें एक बच्चे के विकास के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है। आज के समय में दूध को पाश्चराइजेशन प्रक्रिया से भी गुजारा जाता है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपको हमारा अगला ट्रैक सुनाने का, तो आइए सुनिए ये ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव से अनुराधा पांडवल एंड उदित नारायण की आवाज़ में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पाश्चराइजेशन की। पाश्चराइजेशन में दूध को एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ठंडा किया जाता है। इसमें दूध में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और वह पीने के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। और दोस्तों, भारत के बारे में तो आप जानते ही हैं। हमारा देश पिछले कई दशकों से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना हुआ है। ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति ने हमारे किसानों की मेहनत से भारत को दुनिया की डेयरी बना दिया।
1: बिल्कुल, आज के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ हम कई बार जंक फूड की ओर भागते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे हमें याद दिलाता है कि एक गिलास दूध हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। चाहे वो दही हो, पनीर हो या फिर दूध से बनी कोई मिठाई, डेयरी उत्पाद हर मायने में हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान है।
0: तो आज इस वर्ल्ड मिल्क डे पर युववाणी की तरफ से हम अपने सभी पशुपालक किसानों को भी नमन करते हैं, जिनकी मेहनत की वजह से हमें यह पौष्टिक दूध हर रोज मिलता है।
1: तो दोस्तों, आज एक गिलास दूध के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ भारत खुशहाल भारत।
0: इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे अगले ट्रैक का, तो आइए सुनते हैं हमारा अगला ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सावरिया से शान की आवाज़ में ये गीत। नीलिमा, आज एक जून है और वर्ल्ड मिल्क डे के साथ साथ आज एक और बहुत ही प्यारा दिन है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स।
1: बिल्कुल रिचा, हमारे माता पिता ही वो पहले शिक्षक हैं जिनसे हम जीवन का हर पाठ सीखते हैं। यह दिन दुनिया भर में सभी माता पिता के निस्वार्थ प्रेम, बलिदान और उनके अटूट समर्थन को सम्मान देने के लिए है, जो वे अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी करते हैं।
0: सच में, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, एक माता पिता का साया हमेशा हमारे ऊपर सुरक्षा की तरह बना रहता है। उन्होंने हमें केवल जीवन नहीं दिया, बल्कि जीवन जीना भी सिखाया है। उनकी फिक्र में जो ममता और पिता की डांट में जो अनुशासन छुपा होता है, वही हमें एक बेहतर इंसान बनाता है।
1: और जानती हैं ऋचा, हम अक्सर बड़े होने पर अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन हाथों को ही भूल जाते हैं जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने व्यस्त स्केड्यूल से थोड़ा समय उनके लिए निकालना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनका हाल चाल पूछना चाहिए, उनसे उनकी ज़रूरत पूछनी चाहिए, जैसा कि वो हमसे हमारी ज़रूरत पूरी ज़िंदगी पूछते रहते हैं।
0: बिल्कुल, कभी कभी सिर्फ एक थैंक यू या उनका हाथ थाम कर ये कहना कि आप हमारे लिए कितने खास हैं, उनके पूरे दिन की थकान को मिटा सकता है। हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, उनके लिए हम हमेशा वही छोटे बच्चे रहते हैं।
1: वाकई रिचा, माता पिता का प्रेम दुनिया की सबसे निस्वार्थ पूंजी है। तो युववाणी के जरिए हम सभी श्रोताओं से यही कहेंगे, आज मौका है, अपने माता पिता को गले लगाइए, उन्हें एहसास दिलाइए कि वे आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हैं।
0: तो युवाणी की तरफ से उन सभी माता पिता को सलाम जो अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स।
1: दोस्तों, इसी के साथ एंजॉय करते हैं हम अगला ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना तेरे नैना फिल्म माय नेम इज खान से शफकत अमानत अली की आवाज में ये ट्रैक।
1: दोस्तों, आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह इस सोमवार भी आपके लिए लेकर आए हैं तकनीकी अपडेट, जिसमें भावना सिन्हा से नीलिमा की बातचीत। भावना सिन्हा पीडब्ल्यूसी की डिपार्टमेंट में एमसीए हेड एचओडी हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं।
2: आकाशवाणी के पटना केंद्र से जुड़ने के लिए तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को दें।
3: मैं डॉक्टर भावना सिन्हा, मैं डीन आईटी पटना वुमेन्स कॉलेज हूँ और एमसीए डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ।
2: जी, तो श्रोता, हम आपको आज बता दें कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई के बारे में आज भावना जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत थैंक यू दिल से हमारे श्रोताओं की तरफ से भी कि उनके लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला।
3: धन्यवाद।
2: तो भावना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्वांटम कंप्यूटिंग आखिर है क्या?
3: क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी नई सदी है जो फिजिक्स पे काम करती है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स हुआ उसी पे ये चलती है। और हमारे रोजमर्रा के कंप्यूटर्स में बिट्स होते हैं, जैसे 0 1 का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्वांटम में क्यूबिट्स होते हैं और जिनको सुपर पोजिशन करके उसकी वजह से ये बहुत फास्ट होते हैं और उसपे कंप्यूटिंग किया जा सकता है।
2: भावना जी, ये ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग से कैसे अलग है?
3: जैसे ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में हमारे पास वो बाइनरी कोड पे चलती है, जहाँ पे 0 और 1 होता है। 0 का मतलब हो गया ऑफ और 1 का मतलब हो गया ऑन, और इस तरीके से वो काम करता है और साथ में वो सीक्वेंशियल तरीके से काम करता है। लेकिन जब हम क्यूबिट्स पे काम करते हैं या क्वांटम कंप्यूटिंग में काम करते हैं, तो ये क्योंकि एक ही समय में 0 भी और 1 भी हो सकता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं, तो मान लीजिए कोई एक सिक्का है, तो जब उसे टॉस करते हैं तो कन्वेंशनल कंप्यूटिंग में या तो वो हेड्स आएगा या टेल आएगा, कोई एक ही एक बार में आ सकता है। लेकिन जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो टॉस करने के बाद वापस वो जमीन पे आए, उसके पहले ही हवा में वो जितनी बार हेड्स और टेल हो रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो हम जान लेते हैं क्यूबिट्स के थ्रू। या जैसे एक और एग्जाम्पल से इसे ज्यादा अच्छे से समझ

0: सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लाइब्रेरी है और उसमें किसी एक बुक को सर्च कर रहे हैं या पढ़ना है कि क्या है, तो अगर हम कन्वेंशनल कंप्यूटिंग के बारे में बात करें तो वो लीनियर सर्च करता है, मतलब एक एक करके सभी बुक्स को खोजेगा और तब जाके उसे वो बुक मिलेगा जिसे हम खोज रहे थे। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में एक ही बार में जितने भी बुक्स हैं वो उन सभी को स्कैन कर सकता है, तो इसलिए बहुत ही फास्ट होता है, कन्वेंशनल कंप्यूटिंग से बहुत फास्ट होगा।
1: भावना जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है आज के डिजिटल युग में?
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक तरीके से हमारा इनविजिबल असिस्टेंट बन गया है, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज हो रहा है, चाहे हम यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पे देख रहे हो और वहाँ हमारे पास कोई भी अपने पसंद का वीडियो आ जाए, या फिर हेल्थ केयर में हो, डेटा पे चलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जितना ज्यादा हमारे पास डेटा, करेक्ट डेटा होगा उतने अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। तो कोई भी डॉक्टर है तो मान लीजिए उसे किसी बीमारी को पहचानना है, तो उस डेटा के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से हेल्थ केयर पे भी काम कर सकता है। इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप हमारे मोबाइल में भी AI लगा हुआ है, आप गूगल लेंस से अगर किसी चीज को स्कैन करें, कोई भी नया पौधा है तो आप स्कैन करके उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं, तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जाम्पल है। अब तो हर जगह यूज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
1: क्वांटम कंप्यूटिंग और AI का कॉम्बिनेशन भविष्य में कैसे काम करेगा?
0: क्वांटम कंप्यूटिंग और AI का कॉम्बिनेशन तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि AI डेटा पे चलता है और ये बहुत एक्यूरेट आपको प्रेडिक्शंस दे सकता है, और क्वांटम कंप्यूटिंग इसे स्पीड देने का काम करेगा, क्योंकि ये क्यूबिट्स पे काम करता है तो ये स्पीड को बहुत ही फास्ट कर देता है। जो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स के थ्रू अगर हम किसी चीज को रिसर्च कर रहे हैं और उसमें अगर हमें 6 महीने से 1 साल लग रहा है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग में वो विद इन अ मिनट उसका रिजल्ट हमारे पास आ सकता है।
1: काफी टाइम सेविंग में लग रहा है।
0: बिल्कुल।
1: आप भारत को AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी में किस स्टेज पर देखती हैं?
0: AI में तो हम अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम एक तरीके से कहें तो भारत आज एक ग्लोबल टेक कंटेंडर की स्टेज पे है, और यहाँ पे जैसे हमारा UPI पेमेंट है तो उसने बिल्कुल इंडिया स्टैक के जरिए AI को हर आदमी तक पहुँचाया है, तो AI पे तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्वांटम में अभी थोड़ी शुरुआत में हम हैं और ना आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन फिर भी सरकार तरफ से बहुत सारे नए इस तरीके के नए मिशन आ रहे हैं जिसपे क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: नीति आयोग ने AI के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, अगर आप कुछ ब्रीफ में बता सके?
0: बिल्कुल, नेशनल क्वांटम मिशन के तौर पे इसमें करीब 6,000 करोड़ का एक स्ट्रेटेजिक प्लान प्रोजेक्ट बना है, जिसमें क्वांटम सुपर पावर बनाया जाए हमारे देश भारत को, उसका एक लक्ष्य दिया गया है, और इसमें नीति आयोग ने इसपे बहुत काम किया है और भारत को एक आत्मनिर्भर इस टेक सिक्योरिटी में बना सके, तो मेनली उसमें साइबर सिक्योरिटी पे जोर है, और यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, और एक तरीके से जितने भी हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो पाए, इस पे ध्यान दिया जा रहा है। और साथ में AI के लिए भी बहुत काम किया गया है नीति आयोग के थ्रू, और AI फॉर ऑल जो विजन है जिसके थ्रू ये रखा गया है कि हर एक तक AI पहुंच सके, गरीब इंसान तक भी AI पहुंच सके, और मेनली 5 सेक्टर्स में इसे बांटा गया है, जैसे हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, और इन सभी पे काम हो रहा है, और साथ में AI स्पेसिफिक क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी काम हो रहा है जिसे एरावत नाम दिया गया है, और उस पे भी काम हो रहा है।
1: जैसे के लिए नीति आयोग डिजिटल डिवाइड को कम करने की कोशिश कर रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, AI फॉर ऑल यही है, डिजिटल डिवाइड कम हो सके, सभी तक AI पहुंच सके।
1: भावना जी, भारत में AI और क्वांटम रिसर्च के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक है जो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, तो उनके बारे में?
0: IISc बेंगलोर हमारा क्वांटम रिसर्च में सबसे बड़ा पावर हाउस है, जहाँ फंडामेंटल फिजिक्स पर काम हो रहा है। देन IITs हैं, IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT दिल्ली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, CDAC पुणे पर कंप्यूटर्स जहाँ से बना हमारा, तो हार्डवेयर और क्वांटम कंप्यूटिंग के कंप्यूटर को किस तरीके से हम क्वांटम कंप्यूटिंग में कन्वर्ट कर सकें उस पे काम हो रहा है।
1: भारत के युवा AI और क्वांटम कंप्यूटिंग में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, हमें देखना है कि हम भारत के जो युवा हैं वो हमारे डिजिटल शक्ति बने, वो सिर्फ यूजर नहीं बने AI के लिए बल्कि क्रिएटर बने, और हम यही चाहेंगे कि जो भी युवा है वो AI ऐप डेवलप कर सकें, और उसके लिए उन्हें पाइथन, लीनियर अलजेब्रा, क्वांटम लॉजिक इस तरीके के सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना होगा।

0: और उनको सीखने की कोशिश करनी होगी।
1: जी बिल्कुल, तो हमारे लिसनर्स को ये संदेश जाता है कि जितना हो सके उतना आप टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दें और खुद को टेक्नोलॉजिकली एजुकेट करें।
0: बिल्कुल
1: भावना जी, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या आप देख रही हैं?
0: सबसे बड़ा चैलेंज
1: जी,
0: जहाँ तक चैलेंज की बात है, मैं समझूंगी कि हार्डवेयर अभी थोड़ा हमारे लिए चैलेंज है और इस पे काम होनी चाहिए, और साथ में स्टेबिलिटी। जैसे क्वांटम चिप्स इतनी नाजुक होती है कि अगर एक हल्का सा वाइब्रेशन हो तो उनका क्यूबिट स्टेट डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए उन्हें बहुत कम टेम्परेचर पे, जैसे स्पेस में जो टेम्परेचर होता है उतना ठंडा उसे रखने की जरूरत होती है। तो उस तरीके का हमारे पास एनवायरमेंट हो जहाँ पे हम इन क्यूबिट्स को बिना डिस्टर्ब किए रख सके और उस पे काम कर सके, तो इस तरीके का हमारे पास एक एनवायरमेंट और हार्डवेयर होना चाहिए। साथ ही दूसरी बात ये है कि जब हम AI में काम करते हैं तो एथिक्स भी बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उस पे भी ध्यान देना चाहिए। जो डीप फेक्स आजकल होते हैं, बिकॉज AI को आप गलत तरीके से भी यूज कर सकते हैं, तो एथिकल यूज पता होना चाहिए और उसे उसी तरीके से यूज करना चाहिए।
1: जी, मैं उसी बात पर आने वाली थी कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन वैल्यूज के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को थोड़ा एजुकेट करें आप।
0: बिल्कुल, ह्यूमन वैल्यूज तो बहुत जरूरी है, और अगर हम जहाँ तक देखें तो AI काम तो कर सकता है, बहुत फास्ट काम कर सकता है, डेटा के अकॉर्डिंगली वो एक्यूरेट रिजल्ट पे भी आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसे किस तरीके से ट्रेन किया गया है। तो इसलिए एथिकल यूज बहुत जरूरी है और वहाँ पे बायस नहीं होना है, और जो भी रिजल्ट है जिसपे उसे ट्रेन किया गया, जो ट्रेनिंग डेटा है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो सटीक आंसर दे सके, ना कि बायस।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर से साझा करने के लिए भावना जी।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: अंतराल से पहले दोस्तों आप सुन रहे थे भावना सिन्हा और नीलिमा की बातचीत। हम भावना सिन्हा को इतनी इन्फॉर्मेटिव बात बताने के लिए धन्यवाद करते हैं। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म एल्बम से स्टेबिन मेन की आवाज़ में ये गीत। दोस्तों, अब चलते हैं हमारे स्पोर्ट्स अपडेट की तरफ। तो नीलिमा, आज क्या स्पोर्ट्स अपडेट में है हमारे पास?
1: ऋचा, आप जानती हैं, करीब 1.25 लाख दर्शकों से खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर जब विराट कोहली ने छक्का मारकर जीत दिलाई तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पूरी टीम मैदान में दौड़ पड़ी।
0: पिछले साल टीम की पहली खिताबी जीत में भी विराट ने सर्वाधिक 43 रन बनाए थे। इस बार भी उनके 75 रन की नवाद पारी से बार आईपीएल खिताब पर कब्जा कर लिया।
1: इससे पहले बेंगलुरु के गेंदबाजों ने गुजरात टाइटंस की टीम पर शिकंजा कसते हुए उसे 8 विकेट पर 155 रन के स्कोर पर रोक दिया। बेंगलुरु ने 5 विकेट पर 161 रन बनाए।
0: छोटे स्कोर का पीछा करते हुए बेंगलुरु के वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई और टीम को जितवाया भी।
1: बेंगलुरु ने फाइनल में 3.3 ओवर में सबसे तेज 50 रन का आंकड़ा छूकर चेन्नई का रिकॉर्ड तोड़ा। चेन्नई ने 2023 में इसी मैदान पर 4 ओवर में 50 रन बनाए थे।
0: और नीलिमा, आपको पता है, लगातार 2 आईपीएल खिताब जीतकर रजत पाटीदार अब रोहित शर्मा मुंबई और एमएस धोनी चेन्नई के क्लब में शामिल हो गए हैं।
1: तो दोस्तों, ये था स्पोर्ट्स अपडेट। अब आपको सुनाते हैं हमारा अगला ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अभिजीत की आवाज़ में चलते चलते फिल्म से ये गीत।
1: दोस्तों, आप बारी है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। तो ऋचा, बताइए ऐसा कौन सा जानवर है जो भोजन करते वक्त रोता है?
0: क्या ऐसा भी होता है?
1: बिल्कुल ऐसा होता है, मगरमच्छ भोजन निगलते समय अपनी आंखों से आंसू बहाने के लिए जाने जाते हैं।
0: मैं भी हैरान हो गई थी, लेकिन ये बात सच है। मगरमच्छ भोजन निगलते समय अपनी आंखों से आंसू बहाने के लिए जाने जाते हैं। भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला फल कौन सा है?
1: अनाज, अनाज के बारे में शायद आप पूछ रही हैं
0: जी
1: ऋचा।
0: जी
1: तो वो
0: बिल्कुल।
1: अनाज है चावल। भारत के राजस्थान राज्य में रावण का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। सोचने की बात है कि कहीं रावण को जलाया जाता है तो कहीं ऐसी जगह है जहां उसे पूजा भी जाता है। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमें फीडबैक AIRPatna@gmail.com पर ज़रूर दें। इसी प्रोग्राम के अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे, जहां न पहुंचे पानी वहां पहुंचे वाणी। इसी संदेश के साथ लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे आपसे नई आवाज, नए विषय और नए सोच के साथ। तब तक के लिए
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आइए सुनते हैं भोजपुरी कार्यक्रम आरती।

आरती सुने वाला हमार सभन सुननिहार लोगन के राउर विनीता के प्रेम भरल नमस्कार। देखी आज हम फेरो से आयल बानी राउर इहे अपन मनपसंद कार्यक्रम के लेके, और आजू हर में से नियर नीक जानकारी भरल बात के साथे सुनवाएम रोवा लोगन के एगो वार्ता, और रोवा सभन के मन मनसावन होकत रहो ए खातिर सुनवावत रहम गोपाल पासवान जी से नीमन नीमन लोग। तो चली अब जानकारी भरल बात की शुरुआत करी। आज है 1 तारीख और आज पूरी दुनिया मना रहा बिया विश्व दुग्ध दिवस। जी हाँ, वे दूध जेकरा बिना हमने इनके भोर का पहर के चाय अधूरा बा, लेकिन के सेहत अधूरा बा, अभोज बिया के खीर मलाई अधूरा बा। यह विशेष दिवस के मनावे की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 2001 में भेल। ई दिन स्वास्थ्य, पोषण आ सतत विकास में डेयरी उद्योग के आर्थिक लाभ के बारे में जागरूकता फैलावे के वो सबसे बड़ माध्यम बनल। आ सबसे खुशी तो हमरा ई जान के भेल कि हमने इनके जोन भारत देश बनो ओकरा टंका पूरा दुनिया में बाजत बा, काहे कि सबसे बेसी दूध उत्पादक देश हमनिये के बा। आ अब के बरिस तो सुने में मिलल ह कि लगभग 247 मिलियन टन से भी बेसी दूध के उत्पादन भेल ह। आ ई सब हमन के पशुपालक भाई बहन लोगन के खून पसीना के नतीजा है। आ हमन के गांव में तो आज वो दूधे के सबसे नीमन आहार मानल जाला, काहे कि हमने इनके शरीर खातिर जौना भी जरूरी पोषक तत्व के जरूरत होला उ सब दूध में भरपूर मात्रा में भेटाला। आ जानत नहीं कि ना हमने इनके भोजपुरी पट्टी में कहल जाला कि दूध भात के सानी तो दोनों जहान के जवानी। दूध हड्डी और दांत दोनों के मजबूत करेला, काहे कि यह में कैल्शियम होला, प्रोटीन के मात्रा भी बेसी होला जेकरा से मांसपेशी मजबूत बनेला। उहे तरह एकरा में विटामिन B12, विटामिन डी आ विटामिन ए इहो भेटा जाला जेकरा से आँख के रोशनी या दिमाग तेज होला। दूध हर उम्र के लोगन खातिर अमृत समान होला। शरीर के थकला में ऊर्जा देवे के काम होके आ चाहे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावे के ई राम बाण होला हर तरह से। लेकिन हाँ, दूध पिए के भी एगो सही समय होके के चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से सबसे नीमन समय रात के सूतत घड़ी कहल गई बा। आ अब की बस जानता नहीं कि ना विश्व दुग्ध दिवस जोन बा 2026 के जोन थीम विषय बा वह महिला डेयरी किसानन के सम्मान। आ जब इतना खूबी एगो दूध में बा तो रोवो सभी आज से अपन आहार में 1 गिलास दूध के जरूर शामिल करी, जिससे रोवा चुस्त दुरुस्त बनल रही। आ इहे तो हम हर में से चाहिला बाकी ना, और ये खुश रहे खातिर चुस्ती फुर्ती के साथे मन के भी हरकित होकर जरूरी होला। तो मन हरकित करे खातिर हमारी सुनवाई रोवा लोगिन के ही लोकगीत।

बोला राम राम राम, बोला श्याम श्याम श्याम। कितना नीमन लोक भजन लागल है। आ देखिए इसने नीक लोकगीत जौन बा हमने इनके फिर उसे जरूर सुनम गोपाल पासवान जी के आवाज में। लेकिन उससे पहले हम कहल चाहम कि आज दुनिया भले ही आधुनिक भ गइल बा, लोग तीर्थ व्रत खातिर केदारनाथ बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी जैसन धाम पर जात बार, लेकिन असली तीर्थ हमनी के घर ही में बा, हमने इनके माई बाबू के रूप में। जौन महतारी अपन हिस्सा के दूध मलाई काट के हमने इनके पोसे ली, जौन बाबूजी दिन रात घामा में खट के हमने इनके आज एक काबिल बनौले, आज उन करे लोग इनके सेवा हमने इनके सबसे बड़ पूजा होके के चाहे। ऐसे ही नहीं के कहल गई कि काशी घूमी मथुरा घूमी घूमी पूरा गांव, अब माई बाप के चरणिया में बसेला चारों धाम। ये एकदम साँच बात बा कि दुनिया के कौनो मंदिर में उस सुकून ना भेटा सके जब माई के अचरा के नीचे भेटा जाला, उनकर गोर दबावे में भेटा जाला, बाबूजी के चेहरा पे वो मुस्कान में भेटा जाला। आज लोग चारों धाम घूमता रहन लेकिन माई बाप के अनादर करे में उनका अहस नहीं लागत। ये बात वैसने लोग इन खातिर हम कह रहा बनी जे अपन बूढ़ माई बाबूजी के वृद्धाश्रम में रखावता रहन, वो भी ई बहाना के साथे कि उनका फिर समय नहीं खे। देखिए हमारे निहोरा बा वैसन सभी केहू से जे अपन माता पिता के बोझ समझलन, ऐसन गलती कबहू मत करें। काहे कि कर्म के फल जौन होलन हो वो घूर फिर के हमने के जरूर भेंटाला। आज जौन कर्म हम करतनी काल के हमार लैकन भी उहे देख के सीखी हैं आ हमारा जोड़े भी उहे करी हैं। तो देखी माता पिता के चरण में चारों धाम बा, इहे बात के मान के खुद भी घूमी

0: पिता के भी साथे घुमाई आ उनकरे सेवा में अपन सबसे बड़ धर्म के मानी। अपन विचार के नियमन करे के जरूरत बा, काहे कि ई विचारे ह जे आदमी के जबून भी बनावेला आ नीक भी। तो चली अब काहे ना इहे विषय पर हम रउआ लोगिन के एगो वार्ता भी लगले सुनवा दी। सुनी सबे ई वार्ता प्रदीप कुमार ओझा भास्कर जी से, जेकर विषय ह कि विचारे से आदमी नीमन खराब बनेला।
1: विचार भा सोच का ह, ई मानसिक अनुभूति भा स्थितियन के कड़ी ह। विचार राय अउरी खुद के बारे में आ आसपास के दुनिया के बारे में विश्वास, एह में ऊ दृष्टिकोण शामिल बा जवन हमनी के कोनो स्थिति भा अनुभव खातिर अपनावे निजा। ई हमनी के दृष्टिकोण के सबसे बढ़िया भा खराब के रूप में प्रभावित करेला। अब सवाल उठत बा, विचार हमनी के व्यवहार भावना आ कामन के कौना रूप में आ कतना प्रभावित करेला। का विचारे के चलते आदमी निमन भा खराब बन जाला? जी ई सवसोरह आना साँच बाकी विचारे के बल पर केहू नीमन भा केहू खराब बनेला। असल बात ई बा कि विचार आदमी के व्यवहार भावना आ कामन के बहुते गहराई आ दूर ले प्रभावित करेला। उ हमनी के जीवन के कई पहलू के गहराई से आकार देला। मनोवैज्ञानिक लोग विचार आ व्यवहार के संबंध पर खूब अध्ययन कैले बाड़े। एह अध्ययन से साफ भइल बा कि सकारात्मक विचार आदमी के अधिक खुशहाल आ सफल बना सकेला। ऐसे ही नकारात्मक विचार चिंता आ अवसाद के कारण बन जाला। शुरू से प्रकृति में सकारात्मक आ नकारात्मक दोनों तरह के ऊर्जा रहल बा। कौनो जीव जौना तरह के ऊर्जा के क्षेत्र में बा ओकरे अनुकूल ओकरा मन में विचार जामी। एह चलते ओकर सोच समझ आ काम ओकरे अनुकूल होई। कौनो आदमी सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र में बा तो ओकरा अंदर सकारात्मके भाव पैदा होई। नकारात्मक भाव पैदो होई तो ऊ खुदे उधिया जाई, मिट जाई, तहस नहस हो जाई। ऐसे ही जे नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र में बा ओकरा अंदर नकारात्मक भाव पैदा होई। कौनो सकारात्मक भाव अइबो करी तो उधिया जाई। इहो संभव बा कि केहू सकारात्मक आ नकारात्मक दोनों ऊर्जा क्षेत्र के बीच में होखे। ऐसा आदमी के मन में दोनों भाव पैदा होखी। एह चलते ऊ दुविधा में फंस जाई, सही गलत के फैसले ना कर पाई। ओकरा कामन के दोसर लोग नीमन जबून कही, बाकी ऊ आपन प्रकृति ना बदल सके। सब जीव प्रकृति के एह नियम आ ऊर्जा से संचालित बा। हाँ, आदमी स्वतंत्र बा अपन कर्म करे खातिर। यही कर्म के प्रभाव से मन में विचार पैदा आ खत्म होत रहेला। ई प्रक्रिया सुतला जगला 24 घंटा चलत रहेला। शरीर के खत्म भइला के बादे ई प्रक्रिया खत्म होले। एह से विचार भा सोच बदलत रहेला आ एकर कौनो सीमा नहीं खे। ई असीम बा। एह विचार भा सोच के असर हमनी के व्यक्तित्व आ जीवन के निर्माण पर पड़ेला। सकारात्मक ऊर्जा के बरियार रहला पर कौनो काम मन आ पूरा लगन से आदमी करेला। स्वामी विवेकानंद जी के कहनाम बा कि आदमी जैसन सोचेला विचारेला वैसने बन जाला। पुरखा पुरनिया कहले रहन, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब मन के शक्ति अगम अपार बा। सकारात्मक विचार आदमी के लगातार बढ़िया काम करे के प्रेरित करेला। ऐसन काम जौना से घर परिवार देश समाज के भला होखे। ऐसना आदमी के समाज निमन कह के सराहेला। एकरा ठीक उल्टा, जब केहू नकारात्मक सोच से भरल रहेला ओकर जिंदगी बेराह हो जाला आ

समाजों खातिर कुछ बढ़िया ना कर पावे। विचार जीवन के सबसे खास हिस्सा ह, जौन हमनी के फैसला, काम आ रिजल्ट के रूप में देला। एकरा से हमनी के व्यक्तिगत जीवने ना बल्कि सामाजिक आ पेशेवर जीवनों पर गहरा असर पड़ेला। विचार जीवन के कई एक रूप से प्रभावित करेला। विचार कोनो बात, मुद्दा, कोनो समस्या आदि पर फैसला लेबे में मदद करेला, जौन जीवन के हर पहलू तय करेला। ई केहू के व्यक्तिगत विकासों में सहायक बा। विचारे से आदमी अपन लक्ष्य आ उद्देश्य तय करेला आ ओकरा पावे के कोशिश करेला। एगो बात औरी, विचारे कोनो संबंध के आकार देला औरी दूसरा के संगे असरदायक बातचीत में सहायता करेला। ई तो हमनी के जानते बानी कि आदमी एगो सामाजिक प्राणी है। उ अपना जरूरत खातिर दूसरा आदमी, दूसर समूह, समुदाय से अंतःक्रियात्मक संबंध बनावेला। आदमी के व्यवहार आ समाज में गहिर गज्जिन संबंध बा। ई संबंध एक दूसरा के साथे व्यवहार पर निर्भर करेला आ व्यवहार निर्भर करेला विचार पर। आदमी के विचार, व्यवहार आ काम के असर एक दूसरा पर पड़बे करेला। आदमी के व्यवहार हरमेश एक नियम ना होला। एक आदमी कई एक रूप में व्यवहार करत पावल जाला। एकर कारण बा ओकर विचार, भाव आ व्यवहार परिस्थिति से प्रभावित होत रहेला। विचार जीवन के कैसे प्रभावित करेला, ई एगो उदाहरण से समझल जा सकेला। कोनो स्थिति भा आदमी के बारे में नकारात्मक विचार भा सोच बा त ओकरा संगे बतियावत बेर आदमी अधिक संदेही भा आक्रामक हो जाला। विचार से मन के भावनों प्रभावित होला। कोनो चीज, कोनो बात, कोनो घटना के बारे में नकारात्मक विचार से आदमी चिंतित, निराश भा दुखी हो सकेला। ऐसे ही नकारात्मक विचार केहू के निराश कैके ओकरा के आगे बढ़े से रोक सकेला, जबकि सकारात्मक विचार लक्ष्य पावे में मददगार होला। हम सफल ना हो पाई, हम एह लायक नहीं खी, हमरा खातिर अब दुनिया में कुछ नहीं खे बाँचल, हमरा मर जाए के चाही, ई सब नकारात्मक विचार है। एकर उलट, हम हर हाल में सफल हो खब, अब ही हार गई नहीं तका, फिर कोशिश करब, हम जरूर जीतब, सफलता जरूर मिली हमरा, ई सब सकारात्मक विचार बा, जवन कोनो चीज के कुछो के देखे के नजरिया बदल देला। यह नजरिया के जीवन पर बहुत असर पड़ेला। अब एगो सवाल उठत बा, विचार जब इतना महत्व राखत बा तो सभे सकारात्मक विचारे के काहे ना होला। एकर जवाब आसान नहीं है। ई कई एक कारणन पर निर्भर करेला। आदमी के परिवार, ओकर पालन पोषण, ओकर संगी साथी, ओकर समाज आ माहौल सब कुछ मिल के विचार बनावेला। कोनो बच्चा के पालन पोषण ऐसन परिवार में होता जहाँ सभे आशावादी आ सकारात्मक विचार से भरल बा, ओहिजा लइकाइए से एह तरह के विचार जड़ जमावे लगे। ऐसने समाज, स्कूल, कॉलेज के साथी आ वातावरण मिल गई तो उ आदमी सकारात्मक विचार से भरल रही। विचार दबावों से बनेला बिगड़ेला। किशोर आ नवही लोग के विचार समकक्ष दबावों से बनेला। किशोर आ नवही के अधिकांश टाइम कुछ निश्चित समूहन में, स्कूल, कॉलेज आ उप समूहन के बीच बीतेला। भले वो समूह के बारे में उनकर राय कैसनो होखे, अतने ना वो लोगन में संगी साथी के दबावों संभारे खातिर जरूरी परिपक्वता के कमी हो सकेला। एकरा संगे संगे किशोर नवही जेकर विचार वो लोग से ना मिले, नकारात्मक व्यवहार देखावे खातिर अधिक तत्पर रहेलन। एह दबाव के सकारात्मको असर हो सकेला। मान लिहल जाओ केहू ऐसना समूह भाग ग्रुप में शामिल बा जौन महत्वाकांक्षी बा, सफलता खातिर करेर मेहनत करत बा, तो दूसरों के अंदर ऐसने करे के विचार पैदा हुई समूह से जुड़ल रहे खातिर। एह से

0: किशोर नौही लोग पर खुद के बढ़िया करे के दबाव पड़ेला जौन लंबा समय में उनका बढ़िया भविष्य खातिर जरूरी बा। खेल कूद भा और रचनात्मक गतिविधि जैसे खेल कूद, लेखन, पेंटिंग आदि में अपना संगी साथी के समूह के नकल करे के भावना सबसे ज्यादा होला। सकारात्मक विचार से जब फायदे फायदा बा आ नकारात्मक विचार से नुकसाने नुकसान, तो एगो सवाल उठत बा, नकारात्मक विचार के रोकल निखे जा सकत का? यह सवाल के जवाब बहुत कठिन बा, काहे कि विचार मन में बनेला उठेला आ मन मदमस्त घोड़ा नियन केने कुलांच मारी कहल कठिन बा। यही से हमनी के पुरखा पुरनिया आ मनीषी लोग मन के योग तप ध्यान पूजा पाठ आदि के माध्यम से नियंत्रित करे के जरूरत बतैले। मन के नियंत्रित कैल जा सकेला तो नकारात्मक विचारों के रोकल भा नियंत्रित कैल जा सकेला। कहावत है कि आदमी जैसन सोचेला वैसन बन जाला। नकारात्मक सोच आदमी के बाउर और सकारात्मक सोच निमन बना देला। हर आदमी निमन बनल चाहेला, तो बस अतने करे के बा कैसनो विपरीत स्थिति होखे अपन विचार सकारात्मक राखे के बा।
1: स्थिति कैसनो होके विचार सकारात्मक राखी सभे। बहुत नीक ई वार्ता प्रदीप कुमार ओझा भास्कर जी अभी अभी हमके बतौले विषय रहे, विचारे से आदमी निमन भ खराब बनेला। तो सबसे पहले तो इनका बहुत धन्यवाद बा। आ अब देखी हम रुआ लोग इनके हमेशा स्वस्थ सानंद देखल चाहिए। एक खातिर हम ई बात के पहलहूँ बतौले बानी कि लूक लहर में रुआ अपन ख्याल राखी। कौनो जरूरी काम होके तब ही घर से बाहर आ जाई। आ अगर आपन नौकरी खातिर रोज ही जाए पड़ता तो पूरा इंतजाम के साथे निकली। भरपूर पानी के सेवन करी, मौसमी फल खीरा ककड़ी तरबूज खरबूज अभी बाजार एकदम पटाइल बा ऐ सबन से। तो रुआ सभे ऐ सबन के खूब खाई, आपन दिनचर्या में शामिल करी खान पीन में। बेल के शरबत बा पेट के ठंडा राखी, ईख के रस पीही, आम के अमझोरा और प्याज नींबू मिर्चाई डाल के एकदम मस्त सतुआ घोर के पीही सबे। आ ये के साथे यह बात पर भी ध्यान देवे की जरूरत बा कि तलल पाकल चीज जोन होला नु उसे तनी दूरी बनाई। ज्यादा चाट चौमिन समोसा के फेरा में मत रही सबे। बासी खाना से दूर रही। फ्रिज में रखल खाना ई समझ के कि फ्रिज के रखल अब भोर के पहर के सांझ के आ सांझ के काल, ई गलती मत करी सबे। माथा पर दुपट्टा लीही चाहे कांधा पर अंगौछा, एकदम नीक चीज हमने इनके भोजपुरिया के कि एकदम आज के समय में जवान हो के चाहे बुजुर्ग, कान पे अगर अंगौछा रख लेवल जाओ तो बहुत तरह के काम कर देला। वो चाहे पसीना पोछे के होके कहूँ पानी में ओकरा के भिंगा के देह पोछ लेवल जाओ, माथा पर ढकल कान मुँह तोपल बहुत काम कर देला बस एगो गमछा। तो जरूर राखी सभी ये गमछा के आ ये घाम से बाचे में आपन मदद करवाई ओकरा से। अपना आप के रुआ सभे बचाई तबे नु अपन परिवार हंसत मुस्कुरात रही जे कि हमेशा हम चाहिला। आ चली अब राउर मन मनसा उन करी एगो फेरू से लोकगीत सुनवा के। तो सुनी सभे ए गीत के।

बहुत निमन इनकर इहो गीत रहल हा आ हम समय बिल्कुल ना देखनी इनकर एक दोनों गीत खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा। देखते देखते हम रोज आए के बेरा भ गई ते मंगल कामना के जोड़े कि रोआ लोगिन अपन परिवार में खुशहाल रही। अब हमार मने राउर विनीता के निहोरा बा कि हमरा के जाए देवल जाओ। प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी कार्यक्रम आरती। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। अब आपको जानकारी दे देते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल आप सुन सकते हैं 6:30 पर। संध्या 7 बजे खेती गृहस्थी का वक्त होगा। प्रादेशिक समाचार 7:30 पर।

सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। संध्या 7:52 फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 8 बजे से। और सुगम संगीत का एक बार पुनः कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर।

पब्लिक स्पीक, यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर और रात्रि 10 बजे। सोमवार संगीत सभा का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रात्रि 10:30 पर आप सुन सकते हैं।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

प्रणाम, ई आकाशवाणी पटना हवे। अब रवा लोग झूमर नंदिनी से भोजपुरी में समाचार सुनी। बिहार विधान परिषद में खाली भइल 10 गो सीट पर चुनाव खातिर आज अधिसूचना जारी हो गई बा। अधिसूचना जारी होखला के साथ ही नामांकन के प्रक्रिया भी शुरू हो गई बा। ए में 9 गो सीट खातिर द्विवार्षिक चुनाव हो रहल बा, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा से खाली भइल 1 सीट खातिर उपचुनाव हो रहल बा। निर्वाचन आयोग से मिलल जानकारी के मुताबिक नामांकन करे के आखिरी तारीख 8 जून तय भइल बा। प्रत्याशी लोग 11 जून तक अपन नाम वापस ले सकेला लोग। ए सब सीट खातिर 18 जून के वोट डालल जाए और ओही दिने सांझ की गिनती भी होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेना में देश भर में खेत बचाओ अभियान के शुरू कैले। ये अभियान 3 जून ले चली। ए अभियान के मुख्य मकसद हवे कि खाद के सही और संतुलित इस्तेमाल बढ़ावल जाओ, साथ ही मौसम के चुनौती के बीच किसान के समय पर सलाह मिली और पंचायत स्तर पर लोग के भागीदारी बढ़ी। इन्हें पटना के कृषि भवन में भइल कार्यक्रम में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल भइले। वो कहले कि अभियान के दौरान किसान के रासायनिक खाद के जगह हरी खाद के इस्तेमाल खातिर प्रेरित कइल जाए। श्री सिन्हा बतावले कि ए अभियान के तहत किसान के किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी जोड़ल जाए। जेई एडवांस 2026 में गया जी के शुभम कुमार पूरा देश में पहला स्थान हासिल कैले बाड़न। ओ ए परीक्षा में 360 में से 330 नंबर ला के कॉमन रैंक लिस्ट में टॉप कैले बाड़न। गया जी के नादरागंज ब्रह्मनी घाट के रहे वाला शुभम जेई मेंस के दोनों सत्र में 100% हासिल कैले बाड़न। वो अपने सफलता के श्रेय अपन गुरु लोग, माई बाबू जी और अपन मेहनत के दिले।

पड़न। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शुभम कुमार के बधाई दी ले। बिहार लोक भवन राज्य के तरफ से 14 गो विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति लोगन के बहाली खातिर आवेदन मांगल गईल बा। फॉर्म भरे के आखिरी तारीख 1 जुलाई तय कईल गईल बा। तेल कंपनी के तरफ से 19 किलो वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में 53.50 रुपया के बढ़ोतरी कईल गईल। अब पटना में कमर्शियल गैस सिलेंडर 3,414 रुपया 50 पैसा में मिली।

0: 50 पैसा के बढ़ोतरी कैल गई। अब पटना में कमर्शियल गैस सिलेंडर 3,414.50 रुपया में मिली। वही जे घरेलू सिलेंडर के दाम में कोनो बदलाव नहीं भइल। नया दर आज से लागू हो गई बा। राज्य में सरकारी बस में सफर कैल आज से महंगा हो गई बा। परिवहन विभाग के तरफ से बस के भाड़ा में 10 से 15% तक के बढ़ोतरी कैल गई बा। वही जे सिटी बस के भाड़ा भी 15% तक बढ़ा दिहल गई बा। बेगूसराय के MP MLA कोट केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एगो मामला में जमानत दे दिहल गई बा। उनकरा पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान CPI उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर विवादित टिप्पणी करे के आरोप रहे। केंद्रीय मंत्री जमानत मिलला पर कोर्ट के आभार जतवले बाड़न। राज्य में बरखा होके के गति में कमी आई बा। पिछला 24 घंटा के दौरान सीवान के हुसैनगंज में सबसे ढेर 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड कैल गई। मौसम विभाग आज प्रदेश के कुछ इलाका में हल्का बारिश के संभावना जतावले बा। ए दौरान दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व इलाका के कुछ जिला में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा चले के आशंका बावे। मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा रोड के में अपराधी लोग कुख्यात गोविंद शर्मा की गोली मार के हत्या कर दी ले। पुलिस के तरफ से ई बतावल गईल कि गोविंद शर्मा के फ्लैट में पहले से ही अपराधी छुपल रहे और देखते ही गोली चला दी ले, जैसे उनकर मौका पर ही मौत हो गई। मरे वाला मुजफ्फरपुर के तत्कालीन मेयर समीर कुमार और जमीन कारोबारी आशुतोष शाही हत्याकांड के मुख्य आरोपी रहल। बिहार के होनहार एथलीट पीयूष राज 22वीं जूनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतले बाड़न। चीन के हांगकांग में भइल 400 मीटर रिले रेस में कांस्य पदक जीते वाला भारतीय टीम के सदस्य के रूप में पीयूष ई कामयाबी हासिल कैले बाड़न। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पीयूष राज के इस सफलता पर खुशी जतवले और बधाई दिले। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार खातिर घोषित प्रधानमंत्री पैकेज और केंद्रीय बजट के घोषणा के लागू करे में तेजी लावे के अधिकारी लोग के निर्देश दिले बाड़न। पटना के लोक सेवक आवास के संकल्प सभागार में आज श्री चौधरी इस संबंध में एगो उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कैले। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत गर्मी के देख के पानी के किल्लत के समाधान और चापाकल के मरम्मत खातिर आज एगो समीक्षा बैठक कैलन। पटना के मंत्रिमंडल सचिवालय में भइल ए बैठक में सभी जिला के जिलाधिकारी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल भइले। श्री अमृत आम लोगन के साफ पानी के सप्लाई पक्का करे के और सभी खराब पड़ल चापाकल के 15 जून तक चालू करावे के निर्देश दिलन। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही जे समाप्त भेल। प्रणाम।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म बगावत से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़।

अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कोरा कागज से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी म्यांमायाः राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन च नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति अद्य क्रियान्वितः अभवत्। अनेन भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने प्रतिशतं 98% विपणौ शुल्कमुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनायाः 6 वर्षपूर्तौ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् अनया योजनया पथव्यवसायिभ्यः प्रगतेः नूतनावसराः प्रदत्ताः। पश्चिमबंगालस्य मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी अद्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारं विधाय 35 नूतन मंत्रिभ्यः मंत्रिमंडले स्थानम् अयच्छत्। अपि च हांगकांग नगरे आयोजितायां 22तमायां एशिया महाद्वीपीयायां अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इति स्पर्धा मालिकायां भारतेन 10 स्वर्णपदकानि समेत्य 19 पदकानि विजितानि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी म्यांमायाः राष्ट्रपतिः ऊ मिन आउ लाइन च अद्य नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमा भारत देशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेऽपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्य अनन्तरं विदेश सचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेश व्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय सहमत्यं प्रकटितम्।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि

0: प्रणाम सोमा दीदी।
1: निमिषा बहन, आपको भी नमस्कार। और निमिषा बहन बताइए, कैसे हाल चाल है?
0: हाल चाल एकदम निमन है दीदी।
1: देखिए निमिषा,
0: हाँ
1: अभी क्या है, अभी
0: हाँ
1: तो गर्मियों की छुट्टी हो गई है।
0: हाँ
1: हाँ, तो कहाँ जाने का इरादा है?
0: ये तो सही कहा दीदी। मतलब हम लेकिन जब छोटे रहे तो सबसे
1: हाँ
0: जरूरी वही गर्मी की छुट्टी साल भर के,
1: हाँ
0: कि बदला एक इंतजार है कब गर्मी की छुट्टी हो कि हम नानी घर जाए या कहीं घूमे फिरे घूम जाए
1: बिल्कुल।
0: एकदम।
1: और क्योंकि गर्मी की छुट्टियां पड़ती है ना, तो जो हमारे नाना नानी हो, दादा दादी, अगर हम लोग शहर के बाहर रहते हैं तो
0: हाँ
1: उनको भी
0: हाँ
1: इंतजार रहता है कि हमारे घर के लोग आएंगे,
0: हाँ
1: बेटा बहू बाल बच्चा नाती पोता सब आएगा और पूरे घर में रौनक
0: हाँ
1: होगी।
0: एकदम
1: और वही समय होता है ना कि बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के साथ ज्यादा समय बिता
0: ये तो
1: पाते
0: सही
1: हैं।
0: कह रहा
1: हाँ,
0: है।
1: और ऐसे
0: हाँ
1: लोगों के साथ रहने में जितना कुछ सीखने को मिलता है बच्चों को, वो हम लोग भी नहीं उतना बता पाते
0: एकदम
1: हैं।
0: सही। नहीं देखिए कोई भी हमनी के चाहे माँ बाप रहे या कोई भी हमनी के अभिभावक रहे, हमनी सबके बहुत बड़ एगो विरासत रहे
1: एकदम
0: एकदम
1: सही बात है।
0: उनका सिखावल चीज।

0: हम पूरा जिंदगी हमने जीवन भर याद
1: याद
0: रखे,
1: रखते हैं। सही बात है,
0: और उनका मार्गदर्शन में, उनका संरक्षण में हम ही हमेशा जीवन में आगे भी बढ़े।
1: बिल्कुल। और हमारे जीवन में माता पिता और जो हमारे अभिभावकों का जो स्थान होता है ना, वो सबसे ऊंचा होता है,
0: एकदम
1: सर्वोपरि होता है। और वो ना हमारे साथ हमारे बच्चों का लालन पोषण में साथ देते हैं, बल्कि उन्हें अच्छे अच्छे संस्कार, शिक्षा और जीवन के आदर्श भी प्रदान करते
0: एकदम
1: हैं,
0: सही
1: है
0: करे।
1: ना। और हम अपने अभिभावकों से प्रेम, त्याग और समर्पण भी सीखते हैं। और अभिभावक का कि अपने बच्चों के प्रति जो एक त्याग, कितने त्याग के साथ, कितने बलिदान देकर, कितने प्रेम पूर्वक वो बच्चों का लालन पालन करते हैं, और उनको सम्मान देने के उद्देश्य से
0: हाँ
1: प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी कि 1 जून को हम सभी विश्व अभिभावक
0: दिवस
1: दिवस
0: मनाने
1: मनाते
0: एकदम। हाँ तो यही दिन है दीदी, और
1: हैं।
0: हमने के माता पिता, चाहे वो हमने के माता पिता के संगे कोई भी अभिभावक, चाहे दादा दादी के बात कहीं या नाना नानी के बात कहीं, जो भी पालक हथिन, उनका सम्मान ना ये दिन बहुते उपयोगी और बहुते महत्व रखे है।
1: बिल्कुल।
0: कहे कि ई दिन जो होवे है हमने के ऊ अभिभावक के सम्मान करे के दिन है, जे हमने के हर जीवन के हर चुनौती में हमने के साथ पीछे रहलथिन है, हमने के
1: बिल्कुल।
0: आशीर्वाद के रूप में हमने के अपन साथ देलथिन है कि वो आगे बढ़े और अब जीवन के हर चुनौती के सामना कर
1: सामना
0: सके।
1: करे, और कभी भी कोई भी कठिनाई हो, कोई भी मुश्किल समय आ जाए, तो हमें ये लगता है कि हमारे पीछे, हमारे सर के ऊपर हमारे अभिभावकों का आशीर्वाद या उनका साथ है।
0: एकदम
1: और विश्व अभिभावक दिवस की जो घोषणा हुई थी
0: हाँ
1: निमिषा बहन, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2012 में की गई थी।
0: अच्छा
1: इसके बाद से ही प्रत्येक वर्ष
0: हाँ
1: 1 जून
0: हाँ
1: को इस दिवस को मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चों के विकास और कल्याण में जो माता-पिता एवं अभिभावकों की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको विश्व स्तर पर मान्यता देना और परिवार के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है।
0: एकदम। देखा दीदी, हमने के माए बाबू जी या कोई भी अभिभावक, वो हमने किला पहल का शिक्षक हुआ थी, मतलब प्रथम गुरु
1: गुरु
0: हुआ,
1: एकदम।
0: और संगे संगे ये हमने के जीवन भर के मार्गदर्शक भी हुआ थी। माँ बाबू जी के प्यार वो आधार हो गए जो बच्चा में आत्मविश्वास के निर्माण करे है,
1: बिल्कुल।
0: और उनका पीछे हर कदम पे उनका साथ साथ चले हैं, जिस समय समय पर उनकर के उन हौसला बढ़ावे है, उनका के समर्थन करे है और उनका देखभाल करे।
1: सही बात है।
0: और देखा ई दिवस के जैसे अभी 2026 के थीम भी है, माता पिता ला एगो साथ, मतलब
1: एकदम
0: एकजुटता।
1: सही बात है।
0: ई दिवस ई याद दिलावे है कि माता पिता हमनी सब ला ऊ हथिन जे हर दिन हमनी ला खड़ा होवा हथिन।
1: एकदम सही बात है,
0: हाँ तो उनका सम्मान हमनी के हमेशा करे के
1: करना
0: चाहिए
1: चाहिए।
0: और उनका देखभाल हमनी के करे के प्रथम कर्तव्य होवे के चाहिए।
1: क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना निमिषा बहन, कि आज के समय में, आज के बदलते दौर में, कभी कभी बच्चे और जो अभिभावक है उनके किसी भी विषय को लेकर मतभेद हो जाता है।
0: हाँ
1: लेकिन ऐसे समय में किसी भी बच्चे को ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो हमारे अभिभावक है, हमसे ज्यादा उनको,
0: हाँ
1: उन्होंने दुनिया देखी है,
0: एकदम
1: उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों का सामना किया है,
0: हाँ हाँ
1: चाहे वो सुख का समय हो, चाहे विपरीत परिस्थितियां
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: तो कहीं ना कहीं वो जो भी कुछ कहेंगे अच्छा ही कहेंगे,
0: एकदम
1: हमारे अच्छे के लिए कहेंगे। तो हमेशा उनकी बातों को काटना, उनका अनादर करना, ये बिल्कुल नहीं। कभी हमेशा अपने माता-पिता का जरूर सुनिए, और उसमें से हो सकता है कि कुछ अच्छी बातें आपको मिल
0: एकदम
1: जाए उनसे सीखने का।
0: ये बात सही है दीदी का, कि अनुभव जो होवे है वो हमने के एगो समय पे ही
1: समय,
0: आवे,
1: बिल्कुल।
0: तो हमने के अनुभवी लोग से, जैसे हमने का अभिभावक लोग हथिन या हमारा माता पिता हथिन, तो हमने सबके वो अनुभव के कभी भी कतारे के ना
1: नहीं
0: चाहिए,
1: चाहिए,
0: कभी काटे
1: बिल्कुल।
0: के ना चाहिए।
1: क्योंकि जीवन के जो मूल्य होते हैं, जीवन में अनुशासन, जीवन में
0: हाँ हाँ
1: नैतिकता और सामाजिक व्यवहार की शिक्षा हमें किन से मिलती है? हमारे गार्जियन से, हमारे अभिभावक से ही मिलती
0: एकदम
1: है। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे जो अभिभावक होते हैं वो हमारे प्रथम शिक्षक होते हैं, तो उन्हीं से हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग पेंसिल पकड़ना,
0: हाँ
1: उन्हीं से सीखते हैं, उसके बाद हम स्कूल जाते हैं या स्कूल में जो हमारी शिक्षा है उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन पहली जो कलम या पेंसिल जो है हम लोग हमारे अभिभावक के
0: एकदम हमने का पहला कदम हमने के अभिभावक ही चला
1: वही सिखाते हैं। तो सुखद और सफल

0: जीवन के लिए, हमारे सुखद असफल जीवन के लिए हमारे अभिभावक कितना त्याग करते हैं। और हमें, हम अगर कुछ गलत भी करते हैं
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: ऐसी परिस्थिति में वो हमेशा हमारा साथ देते हैं,
1: ये तो
0: ये नहीं
1: सही
0: कि वो
1: कहा।
0: त्याग कर देते
1: नहीं,
0: हैं।
1: को हमने से कोई गलती भी हो जाए तो हमने के ई ना हो कि झड़प दे थी, अलग कर देते, उनका समझा
0: समझाते
1: बुझा
0: हैं।
1: के हमने के आगे हौसला बढ़ावा थी कि ना, जो गलती हो रही ओकरा से हमने के सीख लेवे के चाहिए और हमने के आगे बढ़े के चाहिए।
0: बिल्कुल
1: और ये अपना ही कोई कर सके है और वो होते हमने के अभिभावक।
0: अभिभावक, बिल्कुल। तो इस दिवस का क्या उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने अभिभावक के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। और ये दिन हमें ये भी स्मरण कराता है कि परिवार समाज की जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और वो है हमारे अभिभावक। और
1: एकदम।
0: अभिभावकों की जो भूमिका है बच्चों के सर्वांगीण विकास में
1: हाँ,
0: अत्यंत ही महत्वपूर्ण
1: एकदम
0: है।
1: दीदी, कहे कि ई हमने के वो जड़ हथिन जो हमने के जीवन यात्रा के आगे बढ़ावेला, हमने के आगे बढ़ावेला देवा थीन, और आगे बढ़े के इसलिए हमने के उनका के सम्मान करे के चाहिए और
0: बिल्कुल।
1: उनका हमेशा आदर करे के चाहिए।
0: तो आज हम
1: हाँ
0: लोग विश्व अभिभावक दिवस के दिन अपने जितने भी अभिभावक इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं,
1: हाँ
0: हम लोग भी किस अपने बच्चों के
1: हाँ
0: अभिभावक ही हैं, तो ये दिन हमारे लिए भी हैं। लेकिन
1: अरे
0: कई ऐसे हमारे श्रोता हैं वो भी सुन रहे हैं, तो उनके लिए यही पंक्तियां हैं कि माता पिता का स्नेह जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, उनका आशीर्वाद ही सफलता की सच्ची
1: कुंजी
0: कुंजी
1: है।
0: है।
1: एकदम सही
0: तो
1: कहा
0: सभी
1: दीदी।
0: को विश्व अभिभावक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए
1: हाँ,
0: इसी पर एक लोकगीत सुनते हैं हम
1: सुनल
0: लोग।
1: जाए अजीत कुमार अकेला से।

0: वाह, बहुत
1: देखो
0: सुंदर।
1: अजीत कुमार अकेला से रहल ई गीत लोक भजन, तो ई गीत ला इनका के बहुते बहुते धन्यवाद। अ
0: देखिए
1: दीदी हम अपने के भी धन्यवाद देवे के चाह रही है।
0: वो किस लिए?
1: दीदी देखा अपने के साथ जब काम कर रही तो एगो अलग से हमने हमारा के गुस्सा हो जाए है, एकदम लगे है कि हाँ ई काम हम दीदी जैसन कर सके ही। अपने के बातचीत करे के ढंग, अपने के काम करे के ढंग हमारा बड़ा बढ़िया लगे है।
0: देखिए, कोई भी कुछ अच्छा करता है ना, अगर आप उसको उसकी प्रशंसा कर दीजिए ना, तो एक अच्छा शब्द से एक मन में बहुत सुकून मिलता है और एक खुशी भी होती है। अभी
1: एकदम
0: अभी हम लोगों ने अजीत कुमार अकेला जी को सुना,
1: हाँ,
0: हाँ, और उनके गाने, उनके हर एक गाने बहुत सुंदर है,
1: बहुत अच्छा।
0: बहुत अच्छा, मन से दिल से गाते हैं। और जब भी वो गाते हैं, आज वो हमारे बीच नहीं है क्योंकि उनसे हमने बहुत कुछ ऐसे भी साक्षात हम लोगों ने मिला है, उनके कार्यक्रम को
1: हाँ
0: देखा
1: हाँ
0: है, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपने गीतों के माध्यम से
1: हमने
0: हमारे
1: के बीच
0: दिलों में
1: रहा
0: हैं। तो आज वो जहाँ कहीं भी हो, हम उनके लिए अगर अच्छा कह रहे हैं,
1: एकदम
0: तो वो यहाँ नहीं है, लेकिन हमारी आवाज उन तक जरूर पहुंच रही
1: एकदम
0: है।
1: सही थी।
0: तो ये
1: आज
0: सही
1: देखा दीदी,
0: रहा।
1: और आज के दिन की भी एगो महत्व है, आज है कि कुछ अच्छा कहे के दिवस। तो हमने के आज के दिन कम से कम सकारात्मक होवे के चाहिए, और जो दिल में है ओकरा सच्चाई से व्यक्त करे के
0: बिल्कुल,
1: चाहिए।
0: क्योंकि अच्छे शब्द जो है ना, वो ना रिश्तों को मतलब मजबूत
1: हाँ
0: बनाते हैं,
1: एकदम
0: बल्कि आपसी जो संबंध है
1: हाँ
0: उसको भी आगे लेके जाते हैं। तो अब हमारा समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम का, तो हम सभी सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: सुन जाए।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार, मैं हूँ राजेश। सोमवार का दिन है, आ गया आपका दोस्त राजेश। कैसे हैं आप सब युवा साथियों? इन दिनों नए नए कोर्सेज की चर्चा कर रहा हूँ, खास करके वैसे युवा साथियों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है। आज भी एक नया क्षेत्र है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसके विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने चर्चा की थी बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और दूसरा कोर्स था आप सबों के लिए बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी। आज परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे कि कैसे आप इसमें दाखिला ले सकते हैं। और ये आया है जिसकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं, बहुत ही उम्दा संस्थान, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार। जी हाँ, ढेर सारी बातें होंगी। उससे पहले हम शेयर करते हैं अपना मोबाइल नंबर कि अगर आपको कोर्सेज के विषय में जानकारियां चाहिए, किसी भी टेक्निकल कोर्स के विषय में जानकारी चाहिए, चाहे हेल्थ सेक्टर से हो, मेडिकल के लिए हो, पैरामेडिकल के लिए हो, नर्सिंग के लिए यानी बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए

0: फार्मेसी के लिए हो या फिर जर्नलिज्म के लिए, लॉ के लिए, मैनेजमेंट के लिए, लाइब्रेरी साइंस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, किसी भी क्षेत्र में अगर जो आपको जानकारियां चाहिए तो ये नंबर इस्तेमाल कीजिए। नंबर है 9431899002, 9431899002, और एक टोल फ्री नंबर भी है 1800121001, 1800121001, और एक वेबसाइट भी है जहां जा सकते हैं आप, www.gnsu.ac.in। हमने कहा, राजेश हमेशा कहता है कि टेक्निकल पढ़ाई कीजिए और करियर को और अपने जिंदगी को एक नई उड़ान दे दीजिए। कहते हैं ना कि बुनियाद मजबूत कीजिए। बहरहाल आज समय नहीं जाया करते हुए आप सबों को जानकारी देते हैं कि एक और नया कोर्स आया है, वैसे युवा साथियों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है और हेल्थ सेक्टर में एक मुकाम बनाना चाहते हैं, वो क्षेत्र है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसके विषय में जानकारी हम दिलवाते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं, आइए इनसे ही हम इनकी जानकारी लेते हैं, इनका परिचय लेते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार, डायरेक्टर नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुहार।
0: प्रोफेसर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है बुनियाद के आज के अंक में। पूरा बिहार और झारखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ चुका है युवाओं का, जी हाँ, उनके गार्जियन भी ये कार्यक्रम सुनते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानकारियाँ दें।
1: BSc परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, हाँ, ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड कोर्स है जिसमें जो परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, दे आर वर्किंग ऑन लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन रक्षक प्रणाली पे वो काम करते हैं। जब किसी पेशेंट का ओपन हार्ट सर्जरी होता है, उस दौरान उनकी हार्ट और लंग्स को निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो उस दौरान जब वो हार्ट और लंग्स जो कि अगर निष्क्रिय है तो पेशेंट कैन डाई, तो उसको मेंटेन करने के लिए देर इज अ लाइफ सपोर्ट मशीन, जिसको कहते हैं हार्ट लंग मशीन, उसको ऑपरेट करने का काम यह परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के जने करते हैं। यानी उस पर्टिकुलर ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट वो इस परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के हाथों में ही रहती है। तो इनका काम बहुत ही स्पेशलाइज्ड और बहुत ही ज्यादा, आप इसको कह सकते हैं कि निगरानी वाला महत्वपूर्ण कार्य है।
0: प्रोफेसर नीरज, पहली बार बिहार और झारखंड में बुनियाद कार्यक्रम में ये जो कोर्स है ना परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का, ये जा रहा है लोगों के बीच। हाँ, लोगों को जानकारियां पहुंच रही है कि ये कोर्स भी होता है और ये कोर्स गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आया है, जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में, और नीरज जी आप ही के देख रेख में ये कोर्स चलेगा। बहुत सारे लोगों के मन में कौतूहल होगा और अभी जो आपने आंसर दिया है उससे संतुष्ट हुए होंगे, लेकिन वो कौतूहल अभी बना हुआ होगा। हम एक बार फिर चाहेंगे कि उस कौतूहल को आप शांत करें, और अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप सीधे सीधे फोन पर बात कर लें, 9431899002, 9431899002, और 1800121001। हाँ नीरज जी,
1: हाँ, यह कोर्स जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत ही ज्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड कोर्स है, और ये कोर्स मेरे ख्याल से बिहार झारखंड में बहुत कम ही ऑर्गेनाइजेशन होंगे, या तो ना के बराबर होंगे बिहार में, या बहुत कम ही होंगे जहां ये होता है। और ये कोर्स जैसे बताया कि इतना स्पेशलाइज्ड है कि बच्चे इसमें इतने स्किलफुल होते हैं कि एक पेशेंट के ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान उनको उस मशीन को ऑपरेट करके उन्हें जिंदा रखना होता है, ताकि उनके पूरे शरीर में, पेशेंट के शरीर में ब्लड की और ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन रहे, ये इनका काम होता है।
0: वेल, बहुत अच्छा। साथ साथ हमारे युवा साथियों और उनके माता पिता को प्रोफेसर साहब ये भी बताते चलिए कि ये कितने साल का कोर्स होता है।
1: ये 4 साल का कोर्स है जिसमें 3 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है।
0: अच्छा, हमें लगता है कि पढ़ाई से ज्यादा इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर की ज्यादा जरूरत होती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये आप जैसे मालूम है कि हमें पेशेंट पे ये काम करना है, तो उसके लिए एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही जरूरी है। और श्रोताओं को ये बताना भी चाहूंगा कि हमारा जो यूनिवर्सिटी, हमारे पास अपना इन हाउस हॉस्पिटल भी है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1200 बेडेड हॉस्पिटल, जहाँ पर

0: हमारे पास एंड नंबर्स ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग, नंबर ऑफ पेशेंट्स आर गोइंग टू ओपन हार्ट सर्जरीज, जिसमें कि हमारे यहाँ उनको अच्छा एक्सपोजर ही मिलने की पूरे चांसेस हैं। और चूंकि हमारे यहाँ अपने यहाँ एक प्रोफेशनल टेक्नोलॉजिस्ट वैसे काम भी कर रहे हैं, उनकी देख रेख में ये लोग अच्छा सीख भी लेंगे।
1: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद और मैं हूँ राजेश। हमारे साथ प्रोफेसर नीरज हैं जो जानकारी दे रहे हैं एक नए कोर्स परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के विषय में, जो इसी सत्र से गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास में शुरू हुआ है, वैसे युवा साथियों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है। और आपको बताएं कि इससे पहले हमने दो कोर्सेज की चर्चा की थी जिसकी शुरुआत भी इसी सत्र से हुई है और इसके लिए भी इंटरमीडिएट बायोलॉजी होनी चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, और दूसरा कोर्स था बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। इन दोनों और इन तीनों अगर परफ्यूजन टेक्नोलॉजी को जोड़ ले मित्रों तो बहुत ही उम्दा क्षेत्र है। आप चाहें तो अधिक जानकारियां ले सकते हैं इन नंबरों से 9431899002 और दूसरा नंबर है 1800121051। प्रोफेसर नीरज एक बात बताइए, जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करेंगे आपके यहाँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में, तो आपका जैसा कि बताया कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी है, 1200 करीब बेड है वहाँ पर, तो हमें ये जानकारी चाहिए आपके माध्यम से पूरे बिहार और झारखंड में ले जाने के लिए कि क्या यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को इसका लाभ मिलता है, और मिलता है तो कब से और कितना?
0: जी, हमारे बच्चों की वहाँ पर रोस्टर लगती है, हर महीने वाइज मंथली वाइज उनकी वो रोस्टर बनती है और उसके हिसाब से उनकी वहाँ पर पोस्टिंग लगती है ड्यूरिंग देयर एकेडमिक्स, 3 साल की पढ़ाई के दौरान भी, और जब 1 साल का इंटर्नशिप करते हैं उसमें भी उनकी रोटेटरी इंटर्नशिप की रोस्टर बनती है, फिर वहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं, वो इंटर्नशिप करते हैं।
1: क्या बात है, बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा जान करके कि जो इस क्षेत्र में पहले के दूसरे कोर्सेज हैं वहाँ के बच्चे ड्यूटी करते हैं और वहाँ अपनी काबिलियत प्रूफ करते हैं, और अब ये जो तीन कोर्स हम बता रहे हैं लगातार, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज और बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी और परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, क्या एक बात बताइए कि अगर यहाँ के बच्चे वहाँ जाकर अच्छा करें तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो है उसमें क्या आप उनको एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी नौकरी लगती है, अपने बच्चों को लेते हैं आप?
0: हाँ बिल्कुल, ये हमारी तो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि हमारे और भी पिछले कोर्सेज पुराने कोर्सेज के बहुत सारे बच्चे हमारे खुद के हॉस्पिटल में एब्जॉर्ब हुए भी हैं और वो हमारे परस्पर संपर्क में भी रहते हैं, उनसे हम अपने बच्चों की काउंसलिंग भी करवाते रहते हैं, उनको कई दफ़ा हम एलुमनाई लेक्चर भी कराते हैं, करियर काउंसलिंग भी उनसे कराते हैं, तो ये तो हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है और इस पर हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज भी करते हैं।
1: हम चाहेंगे अब आपसे कि पूरा बिहार और झारखंड का बहुत बड़ा हिस्सा सुन रहा है हमारे बुनियाद कार्यक्रम को, वर्षों हो गए इस कार्यक्रम को लेकर आते आते बुनियाद को, और इस पर लोग भरोसा रखते हैं, युवा साथी भरोसा रखते हैं, गार्जियन भरोसा रखते हैं और भरोसा रखते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार पर भी। हम आपसे प्रोफेसर नीरज ये जानना चाहेंगे कि इस कोर्स बोले तो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में कैसे बच्चे आ सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सीटें हैं, ब्ला ब्ला जितनी भी जानकारियां हैं आप दे दीजिए।
0: ये इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विथ 45% मार्क्स इन ऑल टुगेदर, और हमारे यहाँ सीट इसकी है 10 हमने रखी है अभी, और आगे भविष्य में देखेंगे हम इसको बढ़ाना होगा, पर फिलहाल हमने अभी 10 सीट्स रखी है इनकी। और ये जैसे मैंने पहले बताया 4 साल का कोर्स है, 3 साल की पढ़ाई होगी, 1 साल का इंटर्नशिप होगा, और यह कोर्स कराने के लिए हमारे पास अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल विद आर पोस्टिंग्स डन इन NMCH।
1: इस कोर्स को करने के बाद रोजगार क्या क्या क्या डिमांड क्या है, क्या डिमांड है इस कोर्स की?
0: ये जैसे कि मैंने बताया कि आजकल ओपन हार्ट सर्जरी बढ़ती जा रही है, अब जब ओपन हार्ट सर्जरी बढ़ेगी तो पेशेंट्स के हार्ट्स एंड लंग्स को निष्क्रिय किया जाएगा, उस दौरान परफ्यूजनिस्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, हर जगह पड़ती है, तो इसलिए इस कोर्स की डिमांड भी धीरे धीरे वैसे ही बढ़ती ही जा रही है।

0: ही साथ जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वहाँ भी अब स्पेशलाइज्ड ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, तो वहाँ भी प्रोफेशनिस्ट अपॉइंट किए जा रहे हैं, बहाल किए जा रहे हैं, तो वहाँ भी इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और प्राइवेट हॉस्पिटल का कहना ही नहीं, आप बहुत सारे आपने भी जानते होंगे कि हर जगह जगह सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल खुल रहे हैं जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। और एक और ऑप्शन होता है विदेशों में करियर का ऑप्शन, जैसा कि मैंने बताया सुपर स्पेशलाइज्ड ये कोर्स है, इनकी डिमांड बाहर भी बहुत ज़्यादा है, विदेशों में भी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे बच्चे इंडिया में पढ़ के बाहर भी अब्रॉड सेटल हो चुके हैं, तो वहाँ भी इनके पास चांसेस हैं। और अगर ये एकेडमिक्स में आना चाहते हैं, टीचिंग में आना चाहते हैं, तो दे कैन गो फॉर MSc मास्टर्स करके ये टीचिंग में भी आ सकते हैं।
1: अच्छा नीरज जी, ये स्पेशलाइज्ड कोर्स है, जो बच्चे रोजगार नहीं करना चाहें या अपना क्लिनिक खोल कर बैठे हैं, तो क्या उन्हें कॉल पर भी तो बुलाया जाता होगा?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉल पर बुलाया जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते भी हैं कि उनका दे हैव द टाई अप विद और कॉन्टैक्ट विद 10 or more than 10 or 20 हॉस्पिटल्स, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ जब कभी ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो दे इनको ऑन कॉल पे बुलाते हैं ऐसे लोगों को, ये वहाँ जाके हर जगह से अपना काम करके दे कैन चार्ज।
1: बहुत ही उम्दा कोर्स है। हाँ बहुत ही, हाँ पैसा कमाया जा सकता है, करियर बनाया जा सकता है, लोगों की सेवा की जा सकती है, बहुत कुछ हो सकता है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में अगर आप दाखिला लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। और ध्यान रखिए, जैसा कि प्रोफेसर नीरज ने बताया है कि सत्र से सिर्फ 10 सीटें ही हैं, इसलिए देर नहीं कीजिए। थैंक यू डॉक्टर नीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक मिनट, आपसे एक जानकारी आपने दी, आपके सामने ही लोगों को बोल दें कि बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज में भी मात्र 30-30 सीट ही है। अगर उधर की तरफ रुख करते हैं तो आपको जल्दी करनी होगी, हाँ प्रयास करना होगा। और अब थैंक यू प्रोफेसर नीरज, और उम्मीद करते हैं कि हम आपको जब भी बुलाएंगे आप आएंगे। समय खत्म हो रहा है, प्रोफेशनल पढ़ाई करने की हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई कीजिए और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बीएड स्पेशल एडुकेशन की भी पिछले दिनों हम बहुत चर्चा कर रहे थे, वहाँ भी बहुत सारे संभावनाएं हैं, आप चाहें तो जा सकते हैं। फिलहाल नोट करें गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का ये नंबर जिस पर आप और अधिक जानकारियाँ ले सकते हैं, नंबर है 9431899002 9431899002। तो राजेश को दीजिए इजाजत। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जम्मू और सासाराम रोहतास बिहार कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का राजेश को मौका दिया। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: हाँ तो दीदी, अभी हमने सब सुन रही हल प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद और ये के संग हमने के चौपाल के समय संपन्न हो गए और हमने सब आगू बातचीत करवे खेती गृहस्थी में।
4: हाँ लेकिन खेती गृहस्थी में अभी समय है एक और प्रायोजित कार्यक्रम का, तो सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
3: चल सुनल सर।
2: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हेलो नमस्कार, मैं एना कर्मा उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो इससे पहले कार्यक्रम में आगे बढ़ें, आप जल्दी से हमारा फोन नंबर लिख लें। फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ 8826224477।
5: श्रोतो आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसी कहानी, कहानी उस बदलाव की है जो हर बच्चे के जीवन में एक दिन आता है, कभी कभी समय से पहले आता है तो कभी कभी समय के बाद, जिसे हम कहते हैं अर्ली पुबर्टी, यानी जब बच्चे का शरीर जल्दी बड़ा होना शुरू कर देता है। 8-9 साल की उम्र में ही शारीरिक या हार्मोनल बदलाव आने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? गलत खानपान से, मोबाइल व टीवी की आदतों से, या तनाव व सामाजिक डर से। पर सच यह है ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे समझने और सही दिशा देने की जरूरत है।

0: आज की कहानी हमें सिखाती है कि अगर माता पिता शिक्षक व समाज मिलकर समझ दिखाएं, तो हर बच्चा ये बदलाव बिना डर और लज्जा के स्वीकार कर सकता है। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी में सौंधी खुशबू है पर सोच अब भी पुरानी है।
1: राधा बेटा, सुबह से फिर वही कार्टून लगा लिया, थोड़ा बाहर भी खेल लिया कर, धूप भी जरूरी होती है।
2: माँ बाहर बहुत गर्मी है, मैं बाद में जाऊंगी, अभी मैं वीन देख रही हूँ, फिर चिप्स खाकर स्कूल जाऊंगी।
1: पर रोज वही टीवी मोबाइल और बाहर खेलने से परहेज, फिर कहती है सिर दर्द करता है, ना फल खाना है ना दूध पीना है, बस बिस्किट चिप्स नमकीन और कुरकुरे और नूडल्स यही खिलाओ।
2: अरे माँ, स्कूल में भी ना सब यही खाते हैं और मुझे भी ना यही अच्छा लगता है। माँ जल्दी आओ।
1: क्या हुआ राधा बेटा, गिर गई क्या? ये खून कहाँ से आया?
2: माँ मुझे नहीं पता, मैं तो बस बाथरूम गई थी, पर कपड़ों पे ही ये लाल निशान, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ।
1: हे ईश्वर, ये तो मुझे वो बात लगती है, पर इतनी छोटी उम्र में, बस 9 साल में ही।
2: कौन सी बात माँ, मैं क्या बीमार हूँ?
1: नहीं बीमार नहीं, बस अब ना तो बड़ी हो गई है, अब बाहर खेलने मत जाना और किसी को बताना मत।
2: पर माँ मैं गंदी क्यों हो गई हूँ? कल तक तो सब ठीक था, आज ऐसा क्या हो गया?
1: अरे गंदी नहीं हुई बेटा, पर अब कुछ बातें बदल गई हैं। तू स्कूल मत जाना कुछ दिन, मैं सविता दीदी से पूछती हूँ कि क्या करना है। कौन है?
3: मैं हूँ सविता।
1: आओ सविता दीदी, अंदर आओ। बस राधा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, स्कूल भी नहीं भेजा मैंने।
3: अरे क्या हुआ राधा को, बुखार तो नहीं है?
1: वो असल में राधा को ना वो बस हो गई है, मतलब पीरियड। पर दीदी ये तो बहुत जल्दी है ना, अभी तो वो 9 साल की है।
3: हाँ मैं समझ सकती हूँ आपकी चिंता, इसे कहते हैं अर्ली प्यूबर्टी, समय से पहले यौवन आना, आजकल बालिकाओं में ये देखने को मिल रहा है।
1: पर इतनी जल्दी कैसे, हमारे समय में तो 14-15 साल में होते थे।
3: बिल्कुल सही, पर वक्त बदल गया है दीदी, हमारे बच्चों का खान पान, जीवन शैली, माहौल सब कुछ बदल गया है। बच्चे अब बाहर कम खेलते हैं, मोबाइल टीवी ज्यादा देखते हैं, जंक फूड चिप्स बर्गर नूडल्स बस यही इनकी जिंदगी है। बस इसी वजह से जो उनमें केमिकल होते हैं वो शरीर को जल्दी बड़ा कर देते हैं, मतलब ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा बढ़ा देते हैं।
1: तो इनके खाने से बदलाव जल्दी आता है?
3: हाँ सिर्फ खाना ही नहीं, कई बार शारीरिक गतिविधि की कमी, तनाव, नींद की कमी, ये सब भी असर डालती हैं। टीवी या मोबाइल की रोशनी से भी शरीर के हॉर्मोन्स प्रभावित होते हैं, और परिवार में अगर किसी को जल्दी पीरियड्स हुए हैं तो ये आनुवांशिक कारण भी हो सकता है।
1: हे ईश्वर, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतनी बड़ी बात है, राधा तो हमेशा घर पर ही रहती है, बाहर खेलने भी नहीं जाती है, बस मोबाइल कार्टून चिप्स यही सब पसंद है उसे।
3: कोई बात नहीं सीमा जी, आप अब समझ गई ना, जो सुधार करना है वो अब हो सकता है, जब समझ जाते हैं तो सुधार करना भी आसान होता है। राधा को डराने की नहीं समझाने की जरूरत है, उसे बताइए ये बीमारी नहीं है बल्कि उसके शरीर में प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं।
1: और दीदी मैंने तो उसे कह दिया कि मंदिर मत जाना, गलत कहा क्या मैंने?
3: सीमा जी ये सब पुरानी बातें हैं, लड़कियां गंदी नहीं होती, उस समय बस उन्हें साफ सफाई, सैनिटरी पैड का सही इस्तेमाल और संतुलित आहार की जरूरत होती है। और हाँ राधा को दूध, हरी सब्जियां, फल, सुबह शाम थोड़ा खेल कूद ये सब करना बहुत जरूरी है, आप समझाएं उसे।

0: सही कहा दीदी, मैं खुद डरी हुई थी।
1: माँ अगर समझेगी तो बेटी डरेगी नहीं, गर्व से बढ़ेगी।
2: क्या बात है सीमा, आजकल राधा दिखाई नहीं दे रही है, कहीं स्कूल से भागने की आदत तो नहीं पड़ गई इसको?
0: नहीं नहीं काका, वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है उसकी।
2: छोटी सी उम्र में बीमारी, अब राधा बड़ी हो गई है।
1: गोपाल काका, ऐसी बातों का मजाक नहीं उड़ाया करते, ये कोई हंसी की बात नहीं है, समझ की बात है।
2: अरे सविता बेटी, मैं तो यूं ही मजाक में बोल देता हूँ, मुझे क्या पता कि बात इतनी गंभीर है।
1: गांव में जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा बदलाव होता है तो लोग चुप रहते हैं या मजाक उड़ाते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा उस बच्ची पर क्या बीतती होगी?
2: ये बात तो आप सही कह रही हैं। हम तो हंसी में कह देते हैं, पर बच्ची को तो

0: है तो लोग चुप रहते हैं या मजाक उड़ाते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा उस बच्ची पर क्या बीतती होगी?
1: ये बात तो आप सही कह रही हैं। हम तो हंसी में कह देते हैं, पर बच्ची को तो डर लगा रहता होगा।
0: बिल्कुल, राधा सिर्फ 9 साल की तो है। ये बदलाव प्राकृतिक है, पर उम्र से पहले आए तो हर किसी को डर लगता है। इसकी वजह कोई किस्मत नहीं, हमारी जीवन शैली है।
1: जीवन शैली मतलब?
0: मतलब आजकल के बच्चे जो बाहर खेलते नहीं हैं, बस दिन भर घर पे रहते हैं, मोबाइल टीवी यही इनकी जिंदगी बन गई है। पूरे समय बाहर का खाना खाते हैं, फैक्ट्री वाला खाना खाते हैं जिनमें रसायन होते हैं, और वो हमारे हॉर्मोन्स को जल्दी बढ़ा देते हैं जिससे हमारा शरीर जल्दी बड़ा दिखने लगता है।
1: अरे ये तो हमें कभी बताया ही नहीं गया। हम तो सोचते थे ये ईश्वर का खेल है।
0: ईश्वर ने शरीर बनाया है, पर हमें दिमाग तो दिया है ना काका, समझने के लिए। अगर समय से पहले ये बदलाव दिखे तो डरना नहीं चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है।
2: मैं भी डर गई थी पहले, मुझे लगा कुछ अब शगुन हो गया, पर दीदी ने समझाया तो अब मन शांत हुआ है।
1: बेटा तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं किसी भी लड़की के साथ ऐसा मजाक नहीं करूंगा, बल्कि गांव की और लोगों को भी बताऊंगा। यह शर्म की बात नहीं, ज्ञान की बात है।
0: यही तो चाहिए था काका, अगर गांव में बड़े लोग समझ जाएं, तो लड़कियां भी बिना डर के जी पाएंगी। नमस्ते भाई और बहनों, आज हम सब यहाँ एक बहुत जरूरी विषय पर बात करने आए हैं। समय से पहले यौवन, जिसको हम अर्ली प्यूबर्टी भी कहते हैं। आप सबने देखा होगा कई बच्चियाँ जो 8-9 साल की उम्र की है, उनमें ऐसे बदलाव आने लगते हैं। शरीर का बढ़ना, स्तनों का विकास, मासिक धर्म शुरू हो जाना। पहले ये 13 से 14 साल की उम्र में होता था, पर अब जल्दी हो रहा है। आप जानते हैं क्यों?
3: क्यों
4: क्यों
3: क्यों
4: क्यों?
0: क्योंकि हमारे बच्चों की जीवन शैली, खान पान, दिनचर्या पहले से बहुत बदल गई है।
5: दीदी इसका इलाज क्या है?
0: देखिए, इलाज से ज्यादा जरूरी है सही जानकारी और समय पर सलाह। अगर आपकी बच्ची जल्दी बड़ी होने लगे या उसके शरीर में जल्दी बदलाव दिखे, तो सबसे पहले डरिए नहीं, शर्माइए भी नहीं, बल्कि डॉक्टर या आशा से बात करिए। साफ सफाई रखिए, पौष्टिक खाना दीजिए और भावनात्मक सहारा दीजिए।
1: अगर दीदी कोई मजाक करे
0: तो उसे समझाइए काका, ये बीमारी नहीं है, शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। लड़कियों को शर्म से नहीं, आत्मविश्वास से जीना सिखाइए। अगर हर घर में माँ बाप खुलकर बात करेंगे तो कोई राधा फिर ना डरेगी और ना रोएगी।
6: दीदी मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ।
0: हाँ बेटा जरूर बोलो।
6: जब मुझे वो पहले हुआ था तो मुझे बहुत डर लगा था। माँ ने कहा बाहर नहीं जाना, बाहर मत खेलना, पर मैं अब जाती हूँ। मैं गंदी नहीं हूँ, मैं बस बड़ी हो रही हूँ, और बड़ी होकर मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि दूसरी लड़कियों को भी डरना ना पड़े।
2: राधा मेरी बेटी है और मुझे तुम पर गर्व है। मैं भी हर माँ को यही बताऊंगी कि बेटी को डराए नहीं, समझाए।
1: अरे भाई अब तो मैं भी गांव में सबको बताऊंगा कि वो कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि जीवन का नियम है।
0: यही तो असली बदलाव है, जब एक माँ, एक बच्ची और एक काका तीनों मिलकर सोच बदल दें, तो पूरा गांव बदल जाता है। हर माँ बाप, हर काका, हर बहन, हर भाई से मेरी यह गुजारिश है, अगर आपके पास कोई बच्ची या बच्चा उम्र से पहले बदलाव से गुजर रहा है, तो उन्हें डराए नहीं, उन्हें छुपाए भी नहीं, पर समझाएं और अपनाएं। बच्चों को ये खुलकर बताइए कि यह बदलाव प्राकृतिक है और उनका शरीर सुंदर व सामान्य है।
2: अब मैं राधा को हर बात खुले दिल से बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर माँ अपनी बेटी से ऐसे ही बात करे, प्यार से, विश्वास से।

0: मुझे अब शर्म नहीं आती है, क्योंकि अब मुझे पता है बड़ी होना कोई गलती नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है।
1: और हाँ, अब मैं गांव में किसी भी बच्ची पर हंसूंगा नहीं।
2: दोस्तों, राधा की कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं, उन हजारों की है जो अचानक हुए बदलाव से घबरा जाते हैं, क्योंकि हमने उन्हें पहले से तैयार ही नहीं किया। अर्ली पुबर्टी यानी शरीर का जल्दी बदलना कोई डर की बात नहीं, बल्कि समझ की मांग है। जब किसी बच्चे में 8-9 साल की उम्र में ही शारीरिक या मानसिक परिणाम आने लगते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम डरे नहीं, बल्कि समझे और संभाले। हमारे खान पान में रसायन, हमारी भाग दौड़ की दिनचर्या में बदलाव, बच्चों का टीवी व मोबाइल पर रहना और तनाव भरा माहौल, ये सब मिलकर इस बदलाव को जल्दी ला सकते हैं। पर अगर माता पिता ध्यान दे तो यही बदलाव स्वस्थ और सामान्य बन सकता है। याद रखिए, बच्चे तब नहीं डरते जब शरीर बदलता है, वे तब डरते हैं जब बड़ों की चुप्पी उन्हें अकेला कर देती है। अगर हम अपने बच्चों से प्यार से खुलकर बात करेंगे तो वो हर सवाल हर डर हमसे साझा करेंगे, और यही है असली शिक्षा। तो आइए आज से ही एक नया प्रण ले कि हर घर में समझ की बात होगी, शर्म की नहीं। हर बच्चा अपने शरीर को डर से नहीं, सम्मान से देखेगा, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को समझ देंगे तो उनका बचपन नहीं छिनेगा, बल्कि मजबूत और आत्मविश्वास से भरा भविष्य बनेगा। बदलाव रुक नहीं सकता, पर समझ उसे सुंदर बना सकती है।
3: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो वक्त जाया ना करें, अपना फोन उठाएं और हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो श्रोताओं, मुझे एना कर्मा को दीजिए अनुमति, आपसे हम जल्द मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: दीदी अभी हमने सब सुन लिहल प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। और दीदी हमने के किसान भाई इंतजार कर रहे थे कि हमने सब आज का जानकारी देवे। देखा किसान लोगन खेती बाड़ी के संगे संगे पशुपालक भी होवे थीन। पशुपालक लोग लोग दूध उत्पादन ला एगो महत्वपूर्ण काम कर थीन।
1: एकदम।
0: हाँ
1: और बचपन से ही हम लोग भी सुनते आए हैं और हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि दूध पीने से
0: हाँ
1: शरीर तो स्वस्थ
0: एकदम
1: रहता है भी है और दिमाग भी
0: स्वस्थ रहता
1: स्वस्थ रहता है और
0: हाँ
1: दिमाग खुलता है। इसीलिए हमेशा अपने खाने में दूध को जरूर शामिल
0: एकदम।
1: करें।
0: कहे कि दूध जो होवे एगो संपूर्ण आहार होवे है। आ दूध में हमने के कई तरह के विटामिन भी मिल जाए है, जैसे कि हमने के विटामिन डी रहे, हमने B12 रहे, फास्फोरस रहे, कैल्शियम रहे।
1: कैल्शियम, प्रोटीन।
0: हाँ
1: और कहते हैं ना कि जैसा कि आपने कहा कि दूध में एक जो हमारे शरीर के लिए जो पोषक तत्वों की जरूरत होती है
0: हाँ
1: उसमें भरपूर मात्रा में पाए
0: एकदम
1: जाते हैं। तो आज हम लोग दूध की बात कर रहे
0: हाँ
1: हैं और किसान भाई जो हैं पशुपालक हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्यों आज खास क्यों है आज का
0: एकदम
1: दिन?
0: हाँ एकदम दीदी आज के दिन तो खास ही रहे कि आज 1 जून है और विश्व भर में आज मनावल जाए विश्व दुग्ध दिवस।
1: और निमिषा बहन, विश्व दुग्ध दिवस हमेशा हर साल एक कोई विषय लेकर या कोई थीम लेकर
0: हाँ
1: काम
0: हाँ
1: करता है। तो इस वर्ष का जो विषय है वह है महिला किसानों का
0: सम्मान।
1: सम्मान। ये विषय डेयरी क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करता है और विश्व भर में जो लाखों महिलाएं जो पशुपालन करती हैं,
0: हाँ
1: दुग्ध
0: हाँ
1: उत्पादन करती हैं, पशुओं की देखभाल करती
0: एकदम
1: हैं, परिवार के पोषण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उन्हीं को सम्मान देने का आज ये दिन है।
0: हाँ
1: इस वर्ष का विषय उनके परिश्रम, नेतृत्व और योगदान को सम्मानित करने के लिए चुना गया है।
0: एकदम सही कहा दीदी। आज जैसे कि दूध उत्पादन जो है ये एगो उत्सव ही नहीं बल्कि ये एगो आंदोलन है जे अरबों लोगों के पोषण के संगे संगे एगो देश पूरा देश के समुदाय के संगठन के एकजुट करे है
1: बिल्कुल।
0: ताकि मिलके ये कृषि आर्थिक विकास और वैश्विक स्वास्थ्य पे दुग्ध क्षेत्र के

0: भाव के पहचान जाए और बढ़ावा जा सके।
1: बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत कब हुई इसके बारे में अगर बताएं निमिषा बहन, तो 2001 में FAO यानी कि फूड
0: हाँ,
1: एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर दूध और डेयरी उत्पादों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है।
0: एकदम दीदी। और दीदी देखा, हमने की देश के बात करी तो हमने के जो देश है भारत देश, विश्व भर में दूध के सबसे बड़ा उत्पादक
1: उत्पादक है। हाँ
0: ये भारत जो है देश, हमने की विश्व दूध उत्पादन में लगभग 25% हिस्सा अकेले उत्पादित करे हैं, जो हमने की अर्थव्यवस्था और रोजगार में ई डेयरी क्षेत्र जो होवे है खास योगदान देवे है।
1: सही बात
0: ई
1: है।
0: क्षेत्र से 8 करोड़ से ज्यादा लोगों के, किसान लोगों के सीधे सीधे रोजगार मिल जाए है।
1: सही बात है। और हम लोगों ने दूध में पाए जाने वाले जो पोषक तत्वों के बारे में तो बात की, और साथ ही साथ दूध पीने से हमारी जो हड्डियां हैं और दांत
0: हाँ
1: हैं वो काफी मजबूत होता है, और किसानों की आय का जो साधन है डेयरी उद्योग, जिससे लाखों किसानों और पशुपालकों की ये आजीविका का एक प्रमुख स्रोत भी है।
0: एकदम सही है।
1: स्वास्थ्य जागरूकता ये दिवस लोगों को संतुलित आहार में, अपने रोजमर्रा के खान पान में दूध के महत्व को समझने का अवसर भी प्रदान करता है।
0: एकदम। और देखा दीदी, ई दिवस के मुख्य उद्देश्य है कि वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को उजागर कर जाए, डेयरी क्षेत्र और किसान के आजीविका के प्रति आभार प्रव्यक्त कर जाए, और मानव स्वास्थ्य और पोषण में दूध की भूमिका के बारे में लोगों के जागरूकता के बढ़ावा
1: सही
0: जाए।
1: बात है। और
0: हाँ
1: ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाता है ये, और साथ ही साथ दूध उत्पादन जो है ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दूध उत्पादन से जुड़े किसान और पशुपालकों का जो योगदान है क्षेत्र में, उनको सम्मान देने का ये दिन है।
0: हाँ
1: तो दूध है पोषण का आधार, स्वस्थ जीवन का ये है उपहार।
0: उपहार
1: तो
0: तो
1: चलिए
0: एगो
1: ये
0: उपहार और भेंट कर जाए हमने श्रोता सवन के,
1: हाँ
0: एगो गीत सुना के।
1: एकदम
0: और लोकगीत में आज हम अपने सुना लिए एगो बहुत बढ़िया गीत अजीत कुमार अकेला से।

0: हम लोग सुन रहे थे अजीत कुमार अकेला जी से ये लोकगीत।
1: हाँ, और
0: और
1: ये के संग देखा गीत नाद के समय हमने के समय उड़िया भी रह लेती थी और चले के समय हो गए।
0: तो
1: तो
0: चले हम लोग।
1: हाँ, प्रणाम सम्मान दीदी।
0: नमस्कार निमिषा बहन।

0: प्रादेशिक समाचार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000,
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधान परिषद की रिक्त 10 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 8 जून तक भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज और केंद्रीय बजट की घोषणाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का अधिकारियों को दिया निर्देश। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज से शुरू हुआ राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान। और आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में कल से सहयोग शिविर की हो रही है शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 10 सीटों के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आज जिन 10 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हुई है उनमें से 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई 1 सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून तक निर्धारित है। प्रत्याशी 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। गौरतलब है कि डॉ कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस और सुनील कुमार सिंह समेत 9 विधान पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज और केंद्रीय बजट की घोषणाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। पटना में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री चौधरी ने सभी परियोजनाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इधर हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग की भी समीक्षा बैठक की।
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समाज कल्याण विभाग की बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के खाते में सुनिश्चित रूप से भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाओं की तकनीकी माध्यम से निगरानी करने और बच्चों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने और आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़

0: करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभाग की सभी योजनाओं के प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। समाचार कक्ष से नंदिनी।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि अभियान एक महीने तक चलेगा।
2: एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: इस अवसर पर पटना के कृषि भवन में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किसानों को रासायनिक खाद की जगह हरित खाद के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा।
4: हम सब बिहारी माँ भारती के संतान इस अभियान को पर्यावरण के लिए, आने वाले भावी पीढ़ी के लिए हम खेत बचाने का अभियान में सम्मिलित हों। हर व्यक्ति अपने जमीन के एक चौथाई में कम से कम प्राकृतिक खेती करे, ये हमने आह्वान किया है।
1: सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कंप्यूटर आधारित माध्यम से कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर पुनर्परीक्षा ऑनलाइन आयोजित करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने कहा कि परीक्षा रद्द होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से कई चुनौतियों का सामना कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में कल से सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। इसमें लोगों से प्राप्त आवेदन के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। कल ही राज्य की पंचायतों में भी सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। सहयोग शिविर से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश में सरकारी बसों से सफर आज से महंगा हो गया है। परिवहन विभाग ने बस किराए में 10-15% तक की बढ़ोतरी की है। सिटी बसों के किराए में भी 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 53.50 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब पटना में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 3,414.50 रुपये में मिलेगा। वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने गर्मी को देखते हुए आमजनों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और सभी खराब पड़े चापाकलों को 15 जून तक चालू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में पेयजल संकट के समाधान और चापाकलों की मरम्मति को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सभी जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। श्री अमृत ने भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में संवेदनशील मामलों को देखते हुए जिलाधिकारियों को विशेष रूप से चौकस रहने के निर्देश दिए। उन्होंने ज्ञान भारत मिशन के तहत चल रहे सर्वेक्षण की प्रगति की भी समीक्षा की। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार।

0: आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। जेईई एडवांस्ड 2026 में कयाजी के शुभम कुमार ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों, अभिभावक और कड़ी मेहनत को दिया है।
1: टॉप करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक है कि हम जितना कर सकते हैं, जितना भी हमने पढ़ा हो, जितना भी हमारी पोटेंशियल है, उसको एटलीस्ट 80-90% रिफ्लेक्ट करना अपने फाइनल पेपर में, आई थिंक वही काफी होता है। बिकॉज अगर अपने आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन तभी होगा जब हम जितना कर सकते हैं हमने अपनी पूरी जी जान लगा दी हो, तो उसके लिए तो आई थिंक अपना विल पावर पूरा होना चाहिए कि अगर करना है तो करना है, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुभम कुमार को इस सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। केंद्रीय मंत्री और कया के सांसद जीतन राम मांझी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने शुभम कुमार को बिहार का गौरव बताते हुए इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद और पटना समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर आज हल्की से मध्यम बारिश हुई है। उत्तरी भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की खबर है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सिवान के हुसैनगंज में सबसे अधिक 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।
2: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
0: जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की 21 जून को पटना में बैठक होगी। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि बैठक का मुख्य एजेंडा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार के निर्वाचन पर परिषद की औपचारिक मुहर लगना है।
3: राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर 25 जनवरी को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। इस निर्वाचन की औपचारिक पुष्टि के लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक आगामी 21 जून को पटना में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित किया जा रहा है। 21 जून को अन्य कई बैठकें भी आयोजित की जाएंगी।
0: नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में रवि संगम की पुस्तक रामायण परिपथ बिहार का लोकार्पण किया। इस शोध पुस्तक में प्रभु श्री राम की बिहार यात्रा से जुड़े स्थलों का जिक्र है। इस अवसर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय कुमार, राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बिहार संग्रहालय की ओर से पटना में कल से 7 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप में अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को टेराकोटा कला, मुखौटा निर्माण कला तथा कहानी लेखन कला का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैंप का उद्घाटन महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह करेंगे। खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार आज कटिहार के विकास भवन में 20 सूत्री और आपदा की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राकृतिक आपदा से मरने वाले लोगों के परिजनों को राहत अनुदान राशि अब स्थानीय जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में ही दी जाए। मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा रोड में अपराधियों ने कुख्यात गोविंद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि गोविंद शर्मा के फ्लैट में पहले से घात लगाए अपराधियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मुजफ्फरपुर के तत्कालीन मेयर समीर कुमार और जमीन कारोबारी आशुतोष शाही हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 83 लीटर शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का उद्घाटन किया। बिहार के एथलीट पीयूष राज ने 22वीं

0: जूनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। चीन के हांगकांग में आयोजित 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य के रूप में पीयूष ने यह उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीयूष राज की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए उन्हें बधाई दी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में सोनपुर के रितेश रंजन ने स्वर्ण पदक जीता है। पटना में संपन्न राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शेखपुरा के खिलाड़ियों ने 21 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधान परिषद की रिक्त 10 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 8 जून तक भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज और केंद्रीय बजट की घोषणाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का अधिकारियों को दिया निर्देश। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज से शुरू हुआ राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान। और आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में कल से सहयोग शिविर की हो रही है शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नवादा जिले की हलचल। नवादा जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक कुमार प्रियदर्शी।
3: नवादा जिले में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस चरण के तहत मकानों की गणना, मकान सूचीकरण तथा अन्य आवश्यक जानकारियां एकत्र की गई है। इससे पहले ऑनलाइन स्व गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों ने पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज की। जिले के प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात में सैलानियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रतिदिन अधिकतम 8,000 पर्यटकों के प्रवेश की सीमा निर्धारित कर दी है, साथ ही प्रवेश शुल्क में भी वृद्धि की गई है। सोमवार से शुक्रवार तक 10 रुपए की जगह अब 100 रुपए तथा शनिवार और रविवार को 20 रुपए की जगह 200 रुपए प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। नवादा जिले के रजौली प्रखंड की पश्चिमी

0: पंचायत की मुखिया सुभद्रा सिंह को पंचायत स्तर पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें 3 जून को नई दिल्ली में आधारभूत संरचना विकास, जल संरक्षण, पौधारोपण तथा जनहित से जुड़े विभिन्न कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। इस उपलब्धि से पंचायत क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मुखिया सुभद्रा सिंह ने कहा, यह सम्मान पूरे पंचायत परिवार और पंचायतवासियों की उपलब्धि है।
1: हमको बहुत खुशी है कि महिला मुखिया के सरकार यह सम्मान दिया कि हमको दिल्ली बुलाया गया, इससे हम और अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं।
0: जिले में किसानों को डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए फार्मर आईडी अभियान के तहत पंजीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी अजीत प्रकाश ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 1,86,000 लाभार्थी हैं, जिनमें से अब तक 1,00,000 किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। यह कुल लाभार्थियों का 54.23% है। उन्होंने बताया कि फार्मर आईडी बनाने के मामले में नवादा जिला राज्य में 5वें स्थान पर है। फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, खाद बीज पर अनुदान तथा फसल बीमा जैसी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इधर जिले में खरीफ फसल की बुआई को लेकर किसान धान का बिचड़ा डालने के लिए खेत तैयार करने में जुटे हैं। कृषि विभाग ने इस वर्ष जिले में 8500 हेक्टेयर क्षेत्र में बिचड़ा डालने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इधर रोहिणी नक्षत्र के दौरान हुई मूसलाधार बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी आ गई है, जिससे किसानों ने खेतों की जुताई का कार्य तेज कर दिया है। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिले में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने इस पहल को सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाना और उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराना है। श्री सुमन ने कहा कि सबका सम्मान सबका आसान हो कार्यक्रम के तहत सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि पूर्व में सूचना का अधिकार, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार तथा शिकायत निवारण अधिनियम के माध्यम से समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया था। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को लागू किया गया है, जिससे आम लोग अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान करा सकेंगे। नवादा सांसद विवेक ठाकुर की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय में दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की गई। सांसद विवेक ठाकुर ने बताया कि विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई तथा जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
2: प्रशासन और जनप्रतिनिधि के बीच में एक अच्छा संवाद हुआ और समीक्षा हुई केंद्र और बिहार सरकार की सभी योजनाओं की और नवादा के विकास में अच्छा योगदान आज के बैठक कर रहे हैं।
0: नवादा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। मई माह में हाथियों के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 45 दिनों के दौरान हाथियों के उत्पात में कुल 4 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है।
3: अभी आप सुन रहे थे नवादा जिले की हलचल। नवादा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता अशोक कुमार प्रियदर्शी।
4: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से, आइए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में चक्रपाणि मिश्रा से आपको भजन सुनवाते हैं, मेरा कृत ये भजन।

0: है जल जीवन मिशन का। टैप वाटर ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे, खास करके भारत देश में, सीजनल रेन्स एंड ऑल यू नो एंड वाटर बोर्न डिजीजेस, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता था। जल जीवन मिशन एक ऐसा एक स्कीम, मतलब ये लेकर आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जहां पर कि हर घर नल योजना की शुरुआत की गई। कैसे देखते हैं आप, खास करके अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात करें तो?
1: ये बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, जिसके तहत सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एक हाउस होल्ड की महिला को, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे हाउस होल्ड्स ऐसे थे रूरल एरियाज़ में, ये रूरल हाउस होल्ड्स को जोड़ने की स्कीम है ज़्यादातर, और इतने सारे हाउस होल्ड्स थे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते थे, पढ़ते थे। आज तक ऐसी खबरें छप रही थी कि 8-8, 9-9 घंटे तक लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, या बहुत किलोमीटर्स का सफर तय करके दूर दराज इलाकों में लोगों को जाना पड़ता है, जो हिली टेरेन्स हैं उसमें पानी की बहुत ज्यादा

0: ये बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, जिसके तहत सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एक हाउस होल्ड की महिला को, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे हाउस होल्ड्स ऐसे थे रूरल एरियाज़ में, ये रूरल हाउस होल्ड्स को जोड़ने की स्कीम है ज़्यादातर, और इतने सारे हाउस होल्ड्स थे कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते थे, पढ़ते थे। आज तक ऐसी खबरें छप रही थी कि 8-8, 9-9 घंटे तक लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, या बहुत किलोमीटर्स का सफ़र तय करके दूर दराज इलाकों में लोगों को जाना पड़ता है। जो हिली टेरेन्स हैं उसमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, जो डेजर्ट एरियाज़ हैं खासकर जैसलमेर, राजस्थान और गुजरात, कच्छ के साइड में बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहाँ पानी की समस्या इतने साल बाद भी आज़ादी के, मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है, कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा, जैसे आप पावर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या पानी की बात कर लीजिए, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई। और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से, तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इम्प्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इम्प्रूव हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेस गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था। और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी, मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था, वो अब और चीज़ों में वो व्यस्त हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है, क्योंकि उसके पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है।
1: जी, अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ें। शुभ, मैं सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद, पता नहीं, इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी। सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। शुभ, मैं क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
2: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट। आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ओपन डिफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मानसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए। इसमें जो अभी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के जब डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं। अभी आप, मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए एक जो कॉमन साइट था ओपन डिफिकेशन का, वो करीब एकदम वैनिश हो गया, और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े, लोगों को बहुत सारे हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रह का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया, इधर उधर की जिसे कहते हैं शॉर्टकमिंग्स भी आई, लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है। और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसलिए है कि ये एक सॉर्ट ऑफ एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में, बहुत सारे इलाकों में। अब जिस जिन सारी चीजों की बात करें, जैसे ओपन डेफिकेशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन के साथ उज्ज्वला, या उसके पहले जब जैम ट्रिनिटी, इन सब के चलते लोगों में जो एक नया वार्तालाप का एक सिस्टम आ गया, एक नया जैसे कहते हैं आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि ये सारी चीजें तो जिंदगी में होनी चाहिए, इनका ना होना ही आज आश्चर्य की बात लगता है बहुत काफी जगह पे। ये जिसे कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एक बहुत बड़ा चीज है डेमोक्रेसी के लिए, बहुत बड़ा चीज है लोगों में अपना भरोसा बनाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि हम इससे आगे चल सकते हैं, ये सारी चीजों के लिए हमें दिल्ली का जो लड़ाई

0: And so that's about it. Here, a person is daily selling his ware, services, manufactured products, whatever it is, and earning income and keeping a track of it. And then also being able to sustain it and being able to pay repay loans. And then, because the mudra loan, as you can see, is of three stages, Shishu, then Kishore, and then Tarun. So there are three stages in which, so you graduate from one to another. To be able to do that sort of a thing, you need a considerable amount of financial, what I should say, architecture in place. And that is a very interesting innovation that has been created. Obviously, compared to, say, Ujwala or Sakshatkar Mission or missions like the Swachh Bharat Mission, this is relatively more recent. So it'll start showing its effect later. But already you can see from the PLFS survey, the Periodic Labor Force survey, that about 50% of Indians are now reporting self-employment. And that self-employment is not distress employment. It is employment, self-employment that is being made possible for a large number percentage of them because they are confident that they can take on these enterprises and can take on capacity building, expansion of their products and services, which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we are talking about a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, with being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, there we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success that it is being envisaged.
1: Right, Shubh. Diti, abhi Shubh ne self-employment ki baat ki, Stand-up India scheme bhi ek aisi scheme hai, jiske tahat 15,000 प्लस करोड़ लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं. इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं. और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है. कैसे देखते हैं आप इसे?
2: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है. वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान. जून 2020 में ये शुरू की गई थी. उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे.
1: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
2: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं. तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं. तो तब से इतनी इंपॉर्टेंट बन गई स्कीम और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला. सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीजें कर सकते हैं. तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है. और ना सिर्फ ये किया गया है, तीन लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को. पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20 से 25,000 कर दिया गया है और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है. और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं. प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम. तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है. 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के.
1: राइट आदिति, लेट्स टॉक ऑफ द वुमेन फोक. लखपति दीदी अभियान, ये लगभग 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है. कुछ बताएं इसके बारे में.
2: जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की. और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है,

0: उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है जो 6,000 की रकम तय की गई है। ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा, इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी। पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की। ये 4 स्तंभ हैं, जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाएं, जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है। करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1 लाख रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे ड्रोन दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं ड्रोन दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीज़ें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज़ की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी, जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज़ हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहाँ मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और यूएस का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने एक लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट, एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पावर्टी, जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घटके 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज, जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी, अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी। अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में है, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक। वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है। राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच शोमा, आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
0: थैंक यू।
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharjee, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: ये आकाशवाणी पटना है, आइए अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: से सुन जाओ, उसे बताऊं क्या तुम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
2: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से

खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले

0: वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-2371-7117 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
5: 21 जून से 31 अक्टूबर

0: पीएम कृषि सिंचाई योजना एंड द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हैव स्ट्रेंथन इरिगेशन एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। सिंस 2014-15 नियरली 26 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड हैव बीन इशूड टिल मार्च दिस ईयर। द फसल बीमा योजना हैज हेल्प्ड नियरली 23 करोड़ फार्मर्स विद क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम्स वर्थ 1,92,000 करोड़ रुपीज। द प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इज प्रोवाइडिंग ए मंथली अश्योर्ड पेंशन ऑफ 3,000 रुपीज टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, ए बेनिफिशियरी ऑफ उत्तर प्रदेश हेल्ड द स्कीम सेइंग दैट इट इज बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स एज इट विल सपोर्ट देयर लाइवलीहुड।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
0: द मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैज बिकम अ लाइफलाइन फॉर फार्मर्स एज द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द एमएसपी एट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज इंक्रीज फ्रॉम 265 मिलियन टन इन 2013-14 टू अराउंड 358 मिलियन टन इन 2024-25। इंडिया हैज ऑल्सो बिकम द वर्ल्ड

0: India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लांग ने नई दिल्ली में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने एक दूसरे के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर जोर दिया। भारत ओमान जामे इक्तिसादी शराकत दारी के माहदे पर अमल आवरी शुरू हो गई है। ओमान की टेरिफ लाइन के 98% पर भारतीय बरामदकारों को ड्यूटी फ्री रसाई मिल गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मुस्तकबिल पर मबनी टेक्नोलॉजी तहकीक में दिफाई सनती शराकत दारी को फरोग देंगे। मलेशिया उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। और राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहिली आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज चमक और तेज आंधी के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लांग ने आज बाहमी उमूर के तमाम मामलात पर तफसीली मुज़ाकरात किए, जिनमें तिजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात, दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात, सरहदों का बंदोबस्त, तरक्की में तआवुन, सकाफती तबादले और इलाकाई सूरत हाल शामिल हैं। दोनों लीडरों के दरमियान मुजाकरात के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों मुल्कों ने करीबी तआवुन को फरोग देने में दिलचस्पी का इजहार किया, बिलखसूस तजारत और सरमायाकारी, तरक्याती तआवुन, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में तआवुन को बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की गई। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि वज़ीर आज़म ने म्यांमार की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहत भारत की हिमायत की तौसीक की और दोनों मुल्कों ने ऐसी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत को उजागर किया जो दोनों के सिक्योरिटी मफादात के लिए नुकसानदेह हों। जनाब मिश्री ने कहा कि म्यांमार के सदर ने इस यकीन दहानी को दोहराया कि म्यांमार की सरजमीन को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जनाब मिश्री ने कहा कि म्यांमार एक अहम मुल्क है और एक ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ भारत की सरहद 1643 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये भारत की पड़ोसी को अव्वलियत देने एक्ट ईस्ट, नीज महासागर और भारत बहरुल काहल पॉलिसियों में मरकजी हैसियत रखता है। भारत और म्यांमार के दरमियान बाहमी तिजारत तकरीबन $2 अरब पर मुश्तमिल है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारत की पड़ोस पहले एक्ट ईस्ट और महासागर जैसी पॉलिसियों में म्यांमार अहम शराकतदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लांग का खैर मकदम करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि भारत और म्यांमार के सकाफती, तहजीबी और रूहानी ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। भारत से म्यांमार के गहरे रिश्ते की निशानदही करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और म्यांमार के दरमियान मुश्तरक सरहद होने की वजह से म्यांमार जुनूब मशरक़ी एशिया में रसाई का जरिया भी है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान जामे इक्तिसादी शराकत दारी माहिदा CEPA जिस पर 6 महीने कबल दस्तखत किए गए थे आज से नाफिजुल अमल हो गया है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि CEPA सिर्फ कोई तिजारती माहिदा नहीं है बल्कि ये तहजीबी रिवायतों पर एतमाद का एक बयानिया है। जनाब गोयल ने कहा कि ये जामे माहिदा ओमान के साथ भारत के ताल्लुकात को नई रफ्तार अता करेगा। मरकजी वजीर ने मुतल्ला किया कि पहले ही दिन भारत को ओमान के टैरिफ खतूत के 98% तक ड्यूटी फ्री रसाई हासिल हो जाएगी और ये ओमान के लिए भारत की 99% बरामदात का अहाता करते हैं। वजीर मौसूफ ने इत्तला दी कि मुख्तलिफ साजो सामान पर मुश्तमिल कई खेप मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से आज पानी के जहाज से रवाना हो रही हैं जो कि इस माहदे पर अमल आवरी की अलामत है। CEPA के तहत कई अहम हसूलियाबियों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि USFDA, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी या UKMHRA से मंजूर शुदा भारत की जेनरिक दवाओं को अब 90 दिन के अंदर ओमान में मार्केट ऑथोराइजेशन मिल जाएगी। जनाब गोयल ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ओमान माहिदा भारत के 9 आज़ाद तिजारती माहिदों का हिस्सा है जो 38 ममालिक का अहाता करता है और जिसे पिछले

0: तीन साल में कतई शक्ल दी गई है। हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल के खातिरख्वाह स्टॉक की दस्तियाबी की बात को फिर दोहराया है। मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल के बारे में नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी खुर्दा आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल की हसब मामूल फराहमी बरकरार रखने के लिए सभी तेल मार्केटिंग कंपनियां सरगर्म तरीके से पेट्रोल और डीजल के जखीरे को पूरा कर रही हैं। एलपीजी सप्लाई पर मोहतरमा शर्मा ने बताया कि गुज़िश्ता तीन दिन के दौरान 1,21,00,000 से ज़्यादा बुकिंग हुई हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले तीन दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: मुल्क भर में होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबारी इदारों के इस्तेमाल में आने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई है। अलबत्ता घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस की कीमत में कोई कमी नहीं की गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में दिल्ली में 42 रुपये का इजाफा हुआ है और अब ये सिलेंडर 3,113.50 रुपये का हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में पिछले 12 साल के दौरान भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नज़रिए के तहत काबिल ज़िक्र अक्सर तब्दीली के दौर से गुजरा है। इस अरसे में मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई फ्लैगशिप इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 साल के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर खसूसी फीचर पेश कर रहा है। इसके तहत आज किसानों की बहबूद के तहत हुकूमत के इकदाम पर रोशनी डाली जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 12 साल के दौरान किसानों की फलाह व बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफे के लिए कई इकदाम किए हैं। इन फैसलों में सबसे अहम फैसला पीएम किसान स्कीम का आगाज है, जो कि मुल्क में फलाह व बहबूद का सबसे बड़ा कदम है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में फराहम किए जाते हैं। इसके तहत तकरीबन 9.5 करोड़ किसान कुंभों को 4,28,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम मुंतकिल की गई है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: मुख्तलिफ जराए के जरिए किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना और मवेशी परवरी के कौमी मिशन जैसी स्कीमों का आगाज किया गया। पीएम कृषि सिंचाई योजना और सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम जैसी कोशिशों ने सिंचाई को मुस्तहकम किया और मिट्टी की पैदावारियत में इजाफा किया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदा ने स्कीम की तारीफ करते हुए इसे किसानों के लिए फायदेमंद बताया, क्योंकि ये उनके गुजर बसर में मदद कर रही है।
4: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपये की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
2: फसलों की कम से कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है, क्योंकि हुकूमत ने पैदावारी लागत का 1.5 गुना MSP मुकर्रर की है। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए 154 मिलियन टन से ज्यादा चावल की रिकॉर्ड पैदावार के साथ चावल उगाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: सुप्रीम कोर्ट ने आज उस अर्जदाश्त की समाअत से इनकार कर दिया जिसमें नीट UG 2026 के दोबारा होने वाले इम्तिहान को मौजूदा कागज कलम फॉर्मेट की बजाय कंप्यूटर पर मबनी जाँच के तर्ज पर मुनाकिद करने की दरख्वास्त की गई थी। जस्टिस PC नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की एक बेंच ने कहा कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को कंप्यूटर पर मबनी जांच CBT मोड में मुनाकिद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इम्तिहान की मनसूखी के बाद पहले ही मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना कर रही है। अलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है कि तलाक के सिलसिले में डिक्रीज जारी करना लोक अदालतों और जिला लीगल अथॉरिटीज के दायरे इख्तियार में नहीं आता। हाईकोर्ट ने मजीद कहा कि शादी को मनसूख करने का इख्तियार पूरी तरह से फैमिली कोर्ट्स के पास है। एक खातून की जानिब से उन्नाव की जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA के साथ

2018 के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्त की समाअत के दौरान अलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये बात कही। अर्जीगुजार का इल्ज़ाम था कि उसके शौहर ने सेटलमेंट रिकॉर्ड को DLSA के सामने तलाक डिक्री के तौर पर पेश किया और इसे दोबारा शादी करने की बुनियाद बनाया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज इलाकाई पार्टनरों के साथ तावुन को फ़रोग देने की अहमियत की तौसीक की है ताकि एक आज़ाद, खुले, पुरम, मुस्तहकम और खुशहाल भारत बहरुल कहल को बरकरार रखने में मदद मिल सके। नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वुजराए दिफा मुजाकिरात के दौरान दोनों मुल्कों ने नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आज़ादी और खित्ते में बिला रुकावट तिजारत के लिए अपनी मजबूत हिमायत और बैनुल अक्वामी कानून के मुताबिक समंदर के दीगर कानूनी इस्तेमाल की अहमियत को उजागर किया। इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस ने की। एक बयान में वजारत दिफा ने बताया कि दोनों मुल्कों ने समंदरी सरहद की सिक्योरिटी के बाहमी तआवुन में पेशरफ्त और समंदरी सरहद की सिक्योरिटी इश्तराक के मुश्तरक लाहे अमल को कतई शक्ल देने के मामलों पर तबादला ख्याल किया। वजरा ने ऐलान किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दिफाई सनती शराकत दारी को मुस्तहकम करने के अगले कदम के तौर पर दिफाई आर्टिकल और दिफाई सर्विसेज की शिकों के मुतालिक एक मफाहमत नामे की तैयारी शुरू करेंगे। दोनों वजीर सेंसर टेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजी के नए शोबों में मुस्तकबिल की दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी की तहकीक में तआवुन को आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। मगरबी बंगाल काबीना में 35 नए वजीरों की शमूलियत के साथ आज तौसी की गई। इस सिलसिले में कोलकाता में लोकभवन में आज हलफबरदारी की तकरीब मुनद हुई। गवर्नर RN रवि ने वजरा की काउंसिल में शामिल होने वाले नए अराकीन को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी समेत दिगर सियासी लीडरों के साथ इस तकरीब में मौजूद थे। आज काबिनी वजरा के तौर पर हलफ लेने वाली शख्सियात में स्वप्नदास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तपस रॉय, शंकर घोष और दीगर शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने अपने दो कानून साजों संदीपान साहा और रितब्रता बनर्जी को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों, अहम मीटिंगों से गैर हाजिर रहने और पार्टी क्यादत के मुतालिक नुकताचीनी करने वाले अवामी बयान देने के सिलसिले में पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। साल 2026 के मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में TMC की शिकस्त के बाद अंदरूनी खलफशार के दौरान ये फैसला सामने आया है। मलेशिया बच्चों के जरिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उम्र पर मबनी पाबंदियां आयद करने वाला नया मुल्क बन गया है। आज से नाफिज होने वाले नए जाब्तों के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने की इजाज़त नहीं होगी और प्लेटफॉर्म्स को उम्र की तस्दीक से मुतालिक निज़ाम और बच्चों की तहफ़ की खसूसियात पर अमल करना होगा। इन इकदाम का मकसद बच्चों को नुकसान पहुँचाने वाले मशमूलत, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन डिज़ाइन की लत लग जाने से महफूज रखना है। वो कंपनियां जो इस जाब्ते पर अमल आवरी नहीं करेंगी उन्हें 1 करोड़ रिंगिट तक के जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। अब तक ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया ने सोशल मीडिया तक बच्चों की रसाई पर पाबंदियों को मुतारिफ कराया है, जबकि ब्राज़ील ने वालिदैन की सख्त तरीन निगहदाश्त और उम्र की तस्दीक से मुतालिक इकदामात पर अमल शुरू कर दिया है। भारत की सनअती पैदावार में अप्रैल 2025 के मुकाबले अप्रैल 2026 में 4.9% की तरक्की हुई है। ये तरक्की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उम्दा कारकर्दगी की वजह से हुई। आदाद व शुमार और प्रोग्राम पर अमलावरी की वजारत ने बताया कि यह आदाद व शुमार सनअती पैदावार के नजरसानी शुदा इशारे IIP सीरीज़ पर मबनी है, जिसका बुनियादी साल 2022-23 है। इसमें कहा गया है कि इस माह के दौरान 6.2% तरक्की रिकॉर्ड की गई। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल तक राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहली आंध्र प्रदेश में गरज चमक और तेज़ आंधी की सूरत हाल के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने वस्ती कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और कराईकल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सिक्किम में गरज चमक, बिजली गिरने और तेज़ हवाएँ चलने की भी पेशगोई की है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर मिन ऑंग हलैंग ने नई दिल्ली में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने एक दूसरे के सिक्योरिटी के खिलाफ अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर जोर दिया। भारत ओमान जामे इक्तसादी शराकत दारी के माहदे पर अमलावरी शुरू हो गई है। ओमान की टेरिफ लाइन के 98% पर भारतीय बरामदकारों को ड्यूटी फ्री रसाई मिल गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मुस्तकबिल पर मबनी टेक्नोलॉजी तहकीक में दिफाई सनअती शराकत दारी को फरोग देंगे।
मलेशिया

0: या उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को ममनू करार दिया है, और राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहली आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज चमक और तेज आंधी के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, गर्मी का मौसम चल रहा है। ये मौसम जहां अपने साथ रसीले आम, तरबूज, लीची, खरबूज जैसे स्वादिष्ट फल लाता है, वहीं लू का प्रकोप भी। देश के कई हिस्से इस समय लू यानी हीट वेव से जूझ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बारिश होने से गर्मी से राहत भी मिलती है। भीषण गर्मी के मौसम में लू कई बार जानलेवा भी साबित होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम लू से बचाव के लिए सावधानियां बरतें। हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। लू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लू लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331048128, 2371717117, 2371710 और 2331444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप इस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। आप हमारे एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली से। जी रमाशंकर जी,
1: नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि लू से बड़ी पुरानी सुनते रहे हैं, लू में प्याज बहुत ही बचाव करता है और अन्य कोई भी साधन जिस तरह से लू से बचा जा सके वो कृपया बताएं।
2: रूपाली जी, जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि लू के समय में प्याज से बहुत बहुत ही बचाव मिलता है, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, बट फिर भी जो हम पुराने समय से ये जो धारणाएं चलती आ रही हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। तो आप प्याज जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक यानी कि पीने की जो तरल पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी लू के समय में बचने के लिए है एक एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक यानी कि तरल पदार्थ का सही मात्रा में आपको आपको लेना है, और इसके अलावा आपको गर्म जगह से बचना है। मतलब अगर घर से बाहर जितना हो सके उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, घर जितना हो सके घर के अंदर रहना है, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। खाने पीने में आपको जो भी आपको अभी मौसमी फल जो मैडम ने अभी बताए, तरबूज, लीची, आम, इनका सेवन करना है और तरल पदार्थ का आपको पर्याप्त मात्रा में सेवन करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है।
0: डॉक्टर रूपाली, आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लिक्विड लेना चाहिए, तो किस तरह के तरल पदार्थों को लेना ठीक रहेगा ताकि जो शुगर का जो लेवल है वो बॉडी में वो कंट्रोल रहे?
2: आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप आम रस, आम पन्ना जो कि बहुत गर्मी के समय में बहुत ही एक कॉमन एक कूल ड्रिंक माना जाता है, बेल का रस, इस तरह के जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए, आप उनको लीजिए और आप नॉर्मल अपना पानी लीजिए। और अगर आपको डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स जैसी अगर फीलिंग आती है तब आप ORS का जो मेडिकल ORS जो अवेलेबल है उसका सेवन भी कर सकते हैं।
0: श्रीकांत झागड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी क्या पूछना चाहते हैं आप?
3: हेलो
0: जी,
3: नमस्कार।
0: नमस्कार,
3: मैं श्रीता जाफर बोल रहा हूँ पुणे महाराष्ट्र से। मेरा मेरे दो सवाल है। ये बहुत अधिक गर्मी में जैसे थकान है, चिड़चिड़ापन है, बेचैनी लगती है, तो उसी

0: में क्या करना चाहिए, और दूसरा ये था कि ऐसे में मतलब ब्लड प्रेशर वालों ने क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खासकर ना हाई बीपी वालों ने अपने।
1: हाँ जी, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जो हाई बीपी के जो मरीज़ होते हैं वो बहुत समय इस तरह की कुछ दवाइयों पे होते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एंड वो जो लोग होते हैं दे आर प्री डिस्पोज टू हैव हीट स्ट्रोक, मतलब उनको हीट स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और आपको बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, कोई भी क्रॉनिक आपको डिजीज़ है, COPD, एस्थमा, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को धूप से, गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कार्डियो रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म्स हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह के मरीज को खास ध्यान रखना है।
2: डॉक्टर पटनायक, आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हीट वेव यानी लू क्या है?
3: देखिए, ये हीट वेव जो लू बोलते हैं बहुत बड़ा भाषा में, तो हमारा जो समर टाइम में जो ज़्यादातर कि अप्रैल में, जून, थोड़ा सा जुलाई पार्ट में भी, तो क्या टेम्परेचर जो तापमान है, ये तापमान है उसका साधारणतः नॉर्मल से कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है तो टेम्परेचर साधारणतः ज़्यादा रहता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी 30 साल का एवरेज जो उसको नॉर्मल बोलते हैं, उससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है, कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए प्रिवेल करता है, तो वो हम उसको एक हीट वेव डिफाइन करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो 40 डिग्री से अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो, एंड उसका जो नॉर्मल से 4.5 से 6.4 तक अगर हो गया तो हीट वेव हम बोलेंगे। अगर वो 6.4 से भी ज़्यादा डिपार्चर जो कि नॉर्मल से ज़्यादा इतना हो गया तो सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन के हिसाब में हम जैसे कि नॉर्मल से अगर इतना डायरेक्ट है तो करते हैं। और एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर 45 डिग्री हो गया तो हम उसको हीट वेव कर देंगे।
2: लेकिन क्या ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग होता है? जैसे कोस्टल एरियाज के लिए अलग होगा, प्लेन्स के लिए अलग होगा।
3: हाँ, कोस्टल एरिया के लिए थोड़ा सा है कि कोस्टल एरिया में 37 डिग्री होने के बाद भी हमने हीट वेव करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी का थोड़ा प्रभाव रहता है ना, तो इससे कारण ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो अगर तापमान बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन जो ह्यूमिडिटी जो एयर का ह्यूमिडिटी होता है कोस्टल एरिया में उसको मिलता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कोस्टल एरिया जो 40 डिग्री 37 डिग्री से ज़्यादा होना वो कोस्टल एरिया है।
2: और प्लेन्स के लिए?
3: प्लेन्स के लिए 40 डिग्री से ज़्यादा होना।
2: एक और श्रोता है हमारे साथ, राजू लवानिया, आगरा उत्तर प्रदेश से। राजू जी।
4: जी, मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब को, दीदी आपको भी
2: नमस्कार।
3: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे घरेलू नुस्खों में तो खैर जैसे आम का पना है, बेल का शरबत है, या नींबू पानी है, ये तो खैर पुराने जो नुस्खे हैं वो तो है ही, लेकिन मेडिकल साइंस में हीट वेव का परमानेंट ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है?
1: ये देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आप जो गर्मी वाली जगह है उससे दूर रहें। तो अगर कोई किसी को भी इस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को फटाफट से गर्मी वाली जगह से दूर मूव करना है। उसके बाद हमें उनको ठंडे पानी की पट्टी करनी है, और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक पंखा करना है, आप थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके और पंखा करें। पंखा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे इवेपोरेशन से जब हीट उड़ती है तो उससे और ज़्यादा आपका हीट लॉस होता है, ज़्यादा देर की अगर आप खाली उस पर ठंडा कुछ रख देंगे। उसके अलावा आपको पंखा भी ऊपर से करना है, तो पंखे के आगे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के थोड़ी ठंडी पट्टी करना। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है जो कहीं भी किया जा सकता है।
2: लू लगने पर क्या लक्षण दिखते हैं?
1: देखिए, लू के लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं। माइल्ड लक्षण हो सकते हैं जिसमें कि आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकते हैं, जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम प्रिकली हीट बोलते हैं या घमोरियां बोलते हैं। तो उसमें आपको आपको थोड़ा पाउडर डाल लेना है, कुछ एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक दवाई जैसे कि सिट्रोजीन वगैरह है उसका आप यूज कर सकते हैं, और पानी आपको अच्छे से पीना, और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, और हल्के रंग के हल्के कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो आपको पहनने हैं। तो ये हुआ हीट रैश के लिए। हीट क्रैम्प्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा अकड़न जकड़न महसूस हो, आपको हाथ पैर सीधा करने में दिक्कत लगे, मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो, तो इस स्थिति में आपको

0: फ्लूइड्स का ध्यान रखना, ये डिसइलेक्ट्रोलीमिया जो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है हीट के वजह से, वो उससे होता है। तो उस समय आपको मेडिकल जो ORS है, आप ना केवल जो बाकी तरल पदार्थ जो कि हम रूटीनली लेते हैं, उसके अलावा आप मेडिकली जो ORS मिलते हैं, मेडिकल ORS, आप उनका सेवन करें अगर आपको हीट क्रैम्प जैसा सिस्टम हो।
1: गंभीर लक्षण क्या होते हैं?
0: गंभीर लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सबसे सीवियर वैरायटी है, जिसमें कि आपको बेहोशी, आपका एक तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर, जो कि आपका रेक्टल टेम्परेचर आइडियली होना चाहिए, ना कि सरफेस सतह वाला नहीं, कोर बॉडी जिसमें कि रेक्टल टेम्परेचर आइडियल माना जाता है, वो 40 डिग्री से ज्यादा अगर आपका है तो वो, प्लस आपको कुछ भी बेहोशी का लक्षण, ऑल्टर्ड सेंसोरियम जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह का कोई भी लक्षण है, तो ये आप सबसे सीवियर फॉर्म जो होता है हीट स्ट्रोक का, उसमें गिना जाता है।
1: अगर ऐसी स्थिति हो तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले तुरंत उपलब्ध कराई जा सकती है,
0: फटाफट आप उनको ठंडी जगह, तो हल्के कपड़े, ढीले कपड़े और गीला करके, कपड़ा गीला करके पंखा उसके ऊपर करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन अस्पताल में भी जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाएगा यही दिया जाएगा। हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, क्लासिकल और एक्सर्शनल। तो क्लासिकल में आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है, जो एक्सर्शनल होता है उसमें बहुत बार हम इमर्शन भी बोलते हैं कि आप उसको ठंडे पानी में इमर्स कर दो, कि कपड़े सब हटा के किसी ठंडे पानी के टब में ले जाना, वो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में होता है। बट जो आजकल जो मिलता है उसमें क्लासिकल हीट स्ट्रोक है, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, अगर कोई बाहर हैवी वर्क कोई कर रहा है तो उसमें क्लासिकल और एक्सर्शनल दोनों तरह का हीट स्ट्रोक हो सकता है।
1: चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी महेंद्र जी।
2: जी कनक जी नमस्कार।
1: नमस्ते।
2: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
0: धन्यवाद
2: जी। मैं चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना पानी पिए और कितना पानी जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति पानी की पूर्ति हेतु बोतल लगवाता है, यानी डिस्टिल वाटर कहें या कुछ भी कहें उसे, तो आवश्यक है या नहीं?
0: ये देखिए, एक किसी भी अडल्ट व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसका 70-80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पानी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जो अडल्ट व्यक्ति है, कम से कम उसको 8-10 ग्लास पानी डेली पीना है। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है, लगभग एटलीस्ट कम से कम आपको 8 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि आपका 70-80% जो आपका बॉडी का वेट है वो उसमें वाटर है, तो उसका जो रिप्लेनिश करने के लिए आपको कम से कम 2 लीटर आपको पानी पीना है। बट अगर हम आज के समय की बात करें, जब हम लू लगने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पीना ही है। इसके अलावा डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, वहाँ कितनी गर्मी है, अगर आपको लगता है बहुत पसीना आ रहा है, बहुत वाटर लॉस है, तो आप इसके अतिरिक्त भी पानी पी सकते हैं। बट नॉर्मल स्थिति में 3-3.5 लीटर से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरना उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
1: और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पानी पीने के नाम पर या लस्सी पीने के नाम पर बहुत ज्यादा मीठी चीजें
0: बिल्कुल मीठा तो अतिरिक्त बिल्कुल ना लें, और पैक्ड इसलिए जूसेस जो है वो अवॉइड करें, नेचुरल अगर आप लें वो फिर भी
1: जो हमारे पुराने लस्सी, छाछ, बेल का शरबत, ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी होती है। नींबू पानी
0: बिल्कुल।
1: डॉक्टर पटनायक, कई बार वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट की भी चेतावनी जारी की जाती है, तो ये कब किया जाता है और इसका क्या मतलब क्या होता है?
3: देखिए ज्यादातर क्या होता है, तो दिन का तापमान तो हमेशा समर में हाई रहता ही है, तो उससे जो हम हीट वेव का डेफिनेशन करते हैं, दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, हीट वेव हुआ, उसके बाद नाइट जब आता है तो नाइट में भी क्या होता है, जो नाइट का टेम्परेचर तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर में रहते हैं ये दिन का भी गर्मी झेल लिया, उसके बाद जब नाइट का भी टेम्परेचर, अगर उनके पास एसी नहीं है जो यूज नहीं करते, तो उसको हम वार्म नाइट कहते हैं। तो उसमें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है आपका नाइट का टेम्परेचर वो भी अगर 4.5 to 6.4 हो गया तो उसमें वार्म नाइट कर दे। तो वार्म नाइट जो है नाइट टेम्परेचर में, समर के टाइम में, लेकिन नाइट टेम्परेचर में अगर अधिक हो गया तो उसको वार्म नाइट कहे,
1: और वो भी

0: खतरनाक
1: वो भी खतरनाक होता है।
0: धर्मवीर लाइन पर है हमारे साथ दिल्ली से। जी धर्मवीर जी।
2: हेलो नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गांधीनगर मार्केट में रहते हैं और दुकान हर प्रत्येक दुकान में एसी चलते हैं, एक एक दो दो, तो एक तो उनकी भी हीट निकलती है। मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बस्ती से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग सावधानी क्या बरते हैं, जाना भी जरूरी होता है। और दूसरा मेरा ये पूछना है कि डायबिटीज मरीजों को सिकंजी और ओआर का घोल लेना ठीक है कि नहीं। और तीसरा एक और पुरानी एक बात याद आती है, बुजुर्ग कहते थे, जैसे कहते थे कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जो गर्मी गर्मी को मारती है, बैलेंस बराबर करती है। अगर जितनी ज्यादा गर्मी हो आप चाय पी लें कॉफी पी लें तो बैलेंस बना रहता है, कोल्ड ड्रिंक लेना ठीक रहता है कि नहीं, कृपा करते।
3: हाँ जी देखिए, कोल्ड ड्रिंक लेना तो नहीं ठीक है ना, बट जो आप नेचुरल जो चीज़ें हैं जो आपको वैसे ठंडक प्रदान करती हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप बेल रस पी सकते हैं या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं, तो जो नेचुरल चीज़ें, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, तो जो तरल चीज़ें हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। इसका मतलब कोल्ड ठंडा लेने से आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लेने से आपकी शरीर को कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें नहीं अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है, वो अवॉइड करनी है। और जो आपने कहा शुगरी ड्रिंक, क्या डायबिटीज़ के मरीज़ को हम दे सकते हैं? नहीं, वो अवॉइड करनी है। नींबू पानी अगर आप देंगे उनको तो आप बिना चीनी के दीजिए, नमक वाला नींबू पानी दे सकते हैं, सॉल्टेड नींबू पानी दे सकते हैं, या आप उनको लस्सी दीजिए, छाछ वाली जो होती है, जो कि नमकीन लस्सी होती है, तो उनको कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं।
0: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम लू से सुरक्षा और सावधानियों पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित उपाध्याय बिहार से। अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी
4: हाँ हाँ जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ अमित उपाध्याय। मैं मेरा ये सवाल था कि जैसे कि पिछले हम लोग देख रहे हैं तुलना करें और पिछले साल के हर एक साल से तुलना करें तो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जैसे कि पहले टेम्परेचर हाई, अभी जैसे मई में ही टेम्परेचर इतना 45 प्लस जा रहा है, 48 तक आ जा रहा है। तो हम ये मेरा ये प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर जो जिसका शरीर में कुछ नहीं है जांच करने पर भी, वो भी चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं अचानक से, उनका भी बेहोशी कुछ वैसे हो जाता है, तो हम लोग इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं? जैसे कि खूब पानी पीना, जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब हम लोग करते हैं, इसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके? जी
3: कि जब भी आप बाहर निकलें कुछ एक आप छतरी लें या कपड़ा लें, गमछा जैसा कि कहा जाता है, गीला करके लें तो और भी अच्छा है। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए नॉर्मल व्यक्ति में भी ये चीज़ हो सकती है, जिसको पहले से कोई बीमारी है वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है, क्योंकि उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एंड स्पेशली जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो लेते हैं, खास तौर से वो लोग बहुत ही प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उसमें पूरा टेम्परेचर रेगुलेशन उनका डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो लोग खास ध्यान रखें। और जो नॉर्मल व्यक्ति है तो बाहर निकलते समय ये सब प्रिकॉशंस लें, फ्लूइड्स लें, तो इतना ही है आप कर सकते हैं। और अगर कोई सिम्टम आपको लगता है हीट एग्जॉशन का या हीट स्ट्रोक का, तो इमिडिएटली ठंडी जगह पे मूव करके गीला कपड़ा रख के आप हवा कर सकते हैं।
0: तो हीट वेव किसी को भी प्रभावित कर सकता है, पर जैसा कि आपने बताया कि जिनको शुगर है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें इसका ज्यादा खतरा रहता है। और कौन कौन से ऐसे वर्ग है, मतलब कैटेगरी क्या क्या है जिनके लोगों को इसका खतरा?
3: किसी भी क्रॉनिक डिजीज का अगर कोई मरीज है, कोई अस्थमा है, कोई COPD है, कोई हार्ट डिजीज का पेशेंट है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, ये सब भी प्रीडिस्पोज्ड है। बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ये सभी जो हाई रिस्क ग्रुप्स में ही आते हैं।
0: तो प्रेग्नेंट लेडीज के जो आपने बात की, उसमें क्या असर पड़ता है उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर हीट वेव का?
3: देखिए जब आप हीट, अगर आप हीट से एक्सपोज्ड हैं तो आपको पेरिफेरल वेज़ो डायलिटेशन होता है, यानी कि आपकी जो पेरिफ्रीज की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट आपके बॉडी से बाहर निकल सके। उसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम जो है आपका बाकी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई

0: के लिए ब्लड कम हो जाता है, तो ऐसे में जो बच्चा है उसका ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम कोशिश करें ऐसी गर्मी की जगह से बचा कर रखें, और फ्लूइड फिर से वही बात है, तरल पदार्थ का जितना हो सके सेवन करें।
1: महाराष्ट्र से कोल्हापुर से विजय कुमार
2: हाँ
1: स्वामी है हमारे अगले श्रोता
2: हाँ जी
1: जी।
2: हाँ कनक दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते
2: हाँ दीदी को भी नमस्ते सर नमस्ते। हाँ
1: नमस्ते।
2: विजय कुमार स्वामी गांव बस्तवा तहसील शिवर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं।
1: जी,
2: हाँ मेरा
1: बताइए।
2: सवाल यह है कि अभी दिन रात पंखे जो चालू हैं
1: जी
2: इसका हमारे पर को शरीर पर कुछ असर हो सकता है क्या?
1: पंखे का असर तो नहीं,
2: गलत नहीं
1: पंखे
2: होगा।
1: नहीं, पंखे से फायदा है, बट अगर 40 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर है तब केवल पंखा चलाने से फायदा नहीं है। तब आप एसी चला के एसी का टेम्परेचर 27 डिग्री रख के साथ में आप पंखा चलाएंगे तो उससे और आपको 4 डिग्री कम महसूस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसी का टेम्परेचर 15, 20, 22, 21 नहीं रखना है, 27 रखना है ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉसिबल। और साथ में आप थोड़ा फैन तब चलाएंगे तो वो और मदद करेगा। और जैसे कि पहले वो मैं पूछ रहे थे कि हम सब जगह एसी चल रहा है, इतना गर्म है, तो और हम क्या कर सकते हैं? आपको जितना हो सके अपने छतों पे ग्रीन प्लांटेशन करना चाहिए, चाहिए
0: उससे थोड़ा सा आपका जो है
1: घर
0: तापमान
1: का तापमान थोड़ा
0: जो
1: ठीक
0: है
1: बनेगा,
0: कंट्रोल रहेगा
1: कंट्रोल
0: बाकी।
1: रहेगा
0: हाँ जी
1: और घर के आसपास भी पौधे लगाने चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: हमारे एक श्रोता ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा है डॉक्टर पटनायक कि आईएमडी की एडवाइजरी और मौसम संबंधी अपडेट आम लोग कहाँ से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
3: नहीं आईएमडी जो
1: ये मयंक शेखर जी, मैं आपको नाम बता दूं, मयंक शेखर मिश्रा है, ये वाराणसी से उन्होंने पूछा है।
3: हाँ वाराणसी भी बहुत गर्मी जगह है और वहाँ भी बहुत लस्सी ये सब जो इसलिए भी चलता है। तो देखिए जो हम जो आईएमडी जो देता है सूचना जो हीट वेव का अर्ली वार्निंग जो बोलते हैं हम वो बहुत सारे मैकेनिज्म में हम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला तो एक है कि हम हमारा वेबसाइट में देते हैं लेकिन बहुत सारे लोग वेबसाइट नहीं करते अपडेट मान लीजिए वेबसाइट नहीं देते। दो देन दूसरा हमारा जो ऐप वगैरह है उसमें भी हमारे इसका जानकारी देते हैं। ऐप के साथ साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं हर दिन एक वीडियो बनाते हैं हम वीडियो बनाते हैं उसको अपलोड किया जाता है तो उसमें आपका पुरका जानकारी जो यूट्यूब में अपलोड किया जाता है तो जो जो लोग उसको भी एक्सेस करते हैं उसमें से मिल रहे हैं। आपको ऐप से मिलेगा व्हाट्सएप में मिलेगा देन सोशल मीडिया फेसबुक आईएमडी का अगर कोई है जिनका अकाउंट अगर करेंगे तो उसमें तो मिलेगा। तो ये तो ऑल इंडिया लेवल में भी है और हमारे जो रीजनल सेंटर वगैरह जैसे कि वाराणसी से हमने बताया भाई साहब तो लखनऊ में हमारा जो रीजनल मेट सेंटर्स है वहाँ से जो रीजनल और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन उनका वेबसाइट एक अलग होता है उनका जो डाटाबेस है जहाँ जहाँ के मैसेज जाता है उनका सारा सब उन्होंने रखा है। तो हर तरह का मीडियम से हम लोगों को प्रेरित करते हैं।
1: इन्होंने ये भी पूछा है कि दिन के कुछ वो विशेष समय क्या है जब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इतनी भीषण गर्मी में?
3: देखिए ये दिन में जब टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग अराउंड 2:33 के आसपास 3:30 इसी में होता है दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन सुबह से गर्मी शुरू हो जाता है गर्मी टेम्परेचर भी बढ़ता है और दूसरी बात क्या होता है कि जब नीचे का ज़मीन भी गर्म हो जाता है वहाँ से भी टेम्परेचर ऊपर रेडिएट होता है। तो ये दोनों का जब ये होता है तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है तो आपका इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग उसी टाइम में 2:30 के बाद आता है जबकि पहला 12 बजे 2 बजे नहीं आता है दो दो दो 2:30 के बाद 3 बजे अराउंड उसमें आता है कि जब दोनों तरफ से रेडिएशन आता है। तो इसलिए उसी टाइम में नेचुरली जब डायरेक्ट सनलाइट है 11 बजे के बाद एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा तेज है उस टाइम अवॉइड करना चाहिए। एंड जब मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है जब गर्मी धरती के नीचे गर्मी हो गया गर्म हवा भी नीचे से फेंक रहा है तो वो भी 3-4 बजे तक तो
1: चार
3: आपका
1: बजे तक
3: एवॉइड करना
1: मतलब
3: चाहिए।
1: 11 से 4 तक
3: हाँ
1: अवॉइड करना चाहिए
3: यस
1: जहां तक हो सके।
3: हाँ
1: अगला सवाल है रवि जवालिया जी का हरिद्वार से। नमस्कार
4: हाँ जी नमस्कार मैम जी। जी मैं रवि जवालिया जगदीरपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ और सभी सभी विशेषज्ञ को और आपको भी नमस्कार बोल रहा हूँ जी। और आप सभी को और मेरे सभी श्रोता गणों को भी अभिभावक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी।
1: जी आपको भी।
4: हाँ ये मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कोरगेटन मशीन से जट्टा कंपनी में

0: बताओ वो मशीन थोड़ी हीट जनरेट करती है, तो मुझे वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी शायद गर्मी का एहसास होता है सभी को। तो मैं अपने माध्यम से वैसे तो मुझे पता है, मैं श्रोता उससे भी जान मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या मुझे उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैम जी।
1: ये जहाँ काम करते हैं वो मशीन से गर्मी निकलती है काफी, तो क्या सावधानी इनको बरतनी चाहिए?
2: तो जितना हल्का कपड़ा हो सके आप उतना हल्का कपड़ा पहने, और फिर वही अगर एक गीला कपड़ा आप सिर के आसपास लगा सकते हैं तो वो आई थिंक आपको थोड़ा मदद करेगा, और लिक्विड चीजें लेते
1: रहें। तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार बता रही हैं कि आपको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लिक्विड लेना है,
2: और आसपास कहीं पंखा है तो आप पंखा
1: बीच बीच में आप जा सकते हैं वहाँ। डॉक्टर रूपाली, बहुत छोटे बच्चे जो अभी अपनी स्थिति नहीं बता सकते हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावक कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को लू लग गई है?
2: जी बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि तो बच्चों को गर्मी के समय जैसा सर ने बताया 11 से 4 के बीच में आप घर से बाहर ना भेजें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा लू लगने का रिस्क होता है। और बच्चों को हमें बहुत इंश्योर करना है कि वो कम से कम 8 ग्लास पानी ज़रूर पिए, क्योंकि इस समय हो सकता है बच्चा पानी कम पी रहा है, तो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों का फ्लूइड इनटेक ठीक रहे, 11 से 4 के समय वो बाहर ना निकले। और बाकी अगर लगता है कि बच्चा कुछ भी सुस्तीपन दिखा रहा है,
1: जैसे बहुत छोटा बच्चा,
2: बिल्कुल बहुत
1: का बच्चा
2: बिल्कुल
1: है,
2: बिल्कुल
1: उसके लिए
2: सुस्तीपन, दूध नहीं पीना अगर बच्चे इतना छोटा, बिल्कुल अगर दूध नहीं पीना या बुखार होना तो इमीडिएटली आपको किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करना है और उनकी मदद लेनी है। और बच्चों को भी ढीले कपड़े, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हल्के फुल्के हवादार ढीले कपड़े।
1: अगला सवाल है राकेश जी का शिमला से।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, और कितना घातक है? और दूसरा सवाल मेरा ये कि जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी भी बढ़ रही है, तो इसमें मैदानी क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा? ये मेरे दोनों सवाल है।
1: जब हिल स्टेशन से गर्मी बढ़ने लगी है तो प्लेन्स पे और भी गर्मी होगी, इनका ये पूछना है कि क्या असर पड़ेगा प्लेन्स पे?
4: देखिए, जैसा कि हिल स्टेशन में थोड़ा सा हमारा ये है कि हिल स्टेशन में थोड़ा तापमान प्लेन स्टेशन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो इसलिए जैसा कि प्लेन स्टेशन से भी लोग जाते रहते हैं, तो बट आजकल क्या होता है, क्लाइमेट चेंज है, तो हिल एरिया में भी जो जैसे कि पहला इतना गर्मी नहीं होता था, आजकल हिल एरिया में भी गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए तो हिल स्टेशन के लिए तो गर्मी आपका धीरे धीरे भी हो रहा है, पहले जो इतना नहीं हो रहा था इसलिए, लेकिन प्लेन एरिया में तो आपका उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लेन एरिया में तो थोड़ा गर्मी का ज़्यादा पकड़ेगा, क्योंकि वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज थोड़ा सा ज़्यादा है हिल स्टेशन के ऊपर, तो इसलिए हिल स्टेशन में जब हो रहा है तो उसका प्रभाव प्लेन में नहीं है, लेकिन उसका प्लेन में भी रहेगा, जब हिल में हो रहा था तो प्लेन में भी रहेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, हीट एक्शन प्लान्स क्या है?
4: हाँ, हीट एक्शन प्लान क्या होता है कि पहला क्या हो रहा था, जब ये एक्शन प्लान नहीं होता था तो हीट क्या धीरे धीरे धीरे धीरे किल करता है, तो हीट वेव के कारण भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेथ जो है नंबर ऑफ डेथ बढ़ता गया, तो गुजरात साइड में पहला ये महसूस हुआ कि बहुत सारे जो हीट रिलेटेड डेथ बढ़ रहा है, तो देखा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत अनजान के कारण लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं जानते थे, इसलिए बहुत एक्सपोजर होता था, क्या एक्शन लेना है उनको पता नहीं था, तो इसलिए लोग थोड़ा डेथ 2010-12 में ऐसा हुआ। तो उसमें हीट एक्शन प्लान जब स्टार्ट हुआ उसमें क्या होता है, एक जो जो भी राज्य में जहाँ हीट रिलेटेड ये सब इफेक्ट रहता है तो उन्होंने वन बाय वन थोड़ा हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो पहला मान लो गुजरात में हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो हीट एक्शन प्लान में क्या होता है, ये बहुत सारे म्यूनसिपल लोग जो होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, आईएमडी के जो वार्निंग अर्ली वार्निंग देते हैं, और ये बाकी जो जो जो एडवाइजरी इशू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी, ये सारे जो है एक तरीके से रहता है, तो पहला उनको क्या होता है, एक हमारे डिपार्टमेंट से अगले 5 दिन अगले 7 दिन के लिए तापमान कैसा रहेगा वो एक पहला इन्फॉर्मेशन हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद फिर म्यूनसिपल जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर ज़्यादा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग ये हो जाएंगे तो उनको फिर मेडिकल अटेंशन देना जाता है।
1: डॉक्टर पटनायक, अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन

0: कॉन्फ्रेंस और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डीआर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी पटना है। अब आइए सुनिए सोमवासरीय संगीत सभा। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं तबला वादन चंदन कुमार से।

0: संपन्न हुआ शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्स पर, ये आकाशवाणी पटना है। अगला कार्यक्रम के साथ अभी हाजिर होते हैं।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 10:30 हुए हैं। वक्त है फिल्म संगीत का। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को नमस्कार। कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं जया। कार्यक्रम शुरू करते हैं मनहर और सुमन कल्याणपुर का गाया इस गीत के साथ, फिल्म विश्वास। गुलशन बावरा के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन की धुन, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़, फिल्म का नाम बेटी बेटी, सुनिए ही गीत।

0: ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
1: आज और कल इस फिल्म का ये आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी के बोल, संगीत दिया था रवि ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म जब जब फूल खिले।

आओ प्यार करें इस फिल्म का गीत सुनिए, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोल और उषा खन्ना का संगीत।

0: ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म पाकीज़ा से लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ओरिएंट अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

21 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पटना है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो गए हैं। इसी के साथ आज की हमारी ये सभा संपन्न होती है। हम पुनः आपके लिए कार्यक्रमों के साथ कल सुबह 5:43 पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।